എന്താ

Sí.

짜짜짜짜 짜짜짜짜짜

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm. The Lovey Dovey Show, driving you home, a melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto, Canada, Monday to Friday.
2: क्या आप सुन रहे हैं?
3: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
3: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवर्टाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए।
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
4: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो।

Oh, Canada, call 416-303-3639. It's 416-303-3639.

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
0: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
0: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
2: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। It's 416-303-3639.

नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, खुश आमदीद। मैं हूं शिवानी, आपके साथ मेरे साथ हैं आमिर, और आमिर और शिवानी के साथ शुरू हो चुका है लवी डवी शो। मंडे की बड़ी खूबसूरत सी सुबह है। कुछ दबी हुई सी ख्वाहिशें, कुछ मंद मुस्कुराहटें, कुछ खोए हुए से सपने तो कुछ अनसुनी आहटें, कुछ सुकून भरी यादें तो कुछ दर्द भरे लम्हात, कुछ थमे हुए तूफान तो कुछ मध्यम सी बरसात, कुछ अनकहे अल्फाज तो कुछ ना समझ इशारे, कुछ ऐसे मझदार हैं जिनके मिलते नहीं किनारे, कुछ उलझने हैं राहों में कुछ कोशिशें बेहिसाब, कुछ उलझने हैं राहों में कुछ कोशिशें बेहिसाब, बस इसी का नाम है जिंदगी। चलते रहिए जनाब, चलते रहिए जनाब, चलते रहिए जनाब।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
0: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
0: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
2: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। It's 416-303-3639.
3: Sirf mortgages. That's Rajiv Talwar, the mortgage superstar. Mortgage residential, low, or commercial. For customized mortgage solutions, choose Rajiv Talwar. Mushkil se mushkil mortgage ho, last minute deal ho, ya phir credit issues ho. Rajiv Talwar ka wasi ilm aur tajurba aapka kaam aasan kar dega. To yaad rakhiye, mortgage unse mat lijiye jo mortgage bhi karte hain, balki mortgage sirf unse lijiye jo mortgage hi karte hain. Call Rajiv Talwar of leading edge mortgage experts 905-819-1001. 905-819-1001. License number 12374.
4: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर।
5: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
4: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
6: मम्मा, व्हाई डोंट यू गो टू वर्क नाउ?
7: बेटा, तुझे क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी ही रुक गई है। एक महीने से काम पर नहीं गई और अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर रही है।
8: जिंदगी रुकती नहीं, बस रास्ता बदलना पड़ता है। कॉल सैयद एम रजा, आर कम्युनिटी इंजरी लॉयर, इंजरी लॉ के एक्सपर्ट लॉयर।
7: क्या वो मदद करेंगे?
8: मदद करेंगे, उन्होंने एक क्लाइंट को $2 मिलियन की एग्रीगेट सेटलमेंट दिलवाई। तुम्हारे लिए भी लड़ेंगे, इनके पास 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस and no fee until victory.
9: Car accident ya slip and fall? Don't call any third party agent. Directly call Sayyed M. Raza of Sayyed Law. Sayyed Law se Sayyed M. Raza.
8: Jahan sirf vaade nahi, result mile.
9: Call Sayyed M. Raza 416-937-5046. That is 416-937-5046.
10: Koi

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: लवी डेवी शो शिवानी और आमिर के साथ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक अच्छी जो नींद है, आप सभी मंडे की सुबह में अपने अपने काम पर निकल चुके होंगे, निकलने वाले होंगे, या फिर अगर मंडे ऑफ लिया है तो शायद अभी सो भी रहे होंगे। सोना बड़ा ज़रूरी है, नींद पूरी करनी बेहद ज़रूरी है। अगर नींद हमारी पूरी नहीं होती है, स्लीप डिसऑर्डर के हम शिकार होते हैं, तो ना सिर्फ स्लीप रिलेटेड बल्कि दूसरी बॉडी में जो और सारे ऑर्गन्स हैं वो भी काम करने में थोड़ी सी अनअवेलेबिलिटी शो कर देते हैं। लिहाजा हमें और बहुत सारी होस्ट ऑफ अदर हेल्थ इश्यूज जो हैं वो आने लगते हैं, इंक्लूडिंग हार्ट प्रॉब्लम्स। डीप स्लीप के फायदे हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि अगर जो सबसे अच्छी नींद होती है बिटवीन द आवर्स ऑफ 10 PM एंड 2 AM, रात में 10 से सुबह 2 बजे तक, हमारी जो बॉडीज हैं वो प्रोड्यूस करती है, हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ मेलाटोनिन। और हम सभी जानते हैं मेलाटोनिन ट्रिगर्स द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हॉर्मोन्स, जिसको हम HGH कहते हैं, विच रिपेयर सेल्स एंड प्रिवेंट प्रीमेच्योर एजिंग। सो मेलाटोनिन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है। इट गोज अराउंड एंड मॉप्स अप फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द डे एंड प्रिवेंट्स सेलुलर एंड DNA डैमेज। और ये जो मेलाटोनिन है जो स्लीप के लिए, अच्छी नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसके सप्लीमेंट्स हमें ओवर द काउंटर भी मिलते हैं, लेकिन ये हमें नींद से भी मिलते हैं। और अगर 3-4 घंटे की डीप स्लीप हम लेते हैं, प्रेफरेबली जो टाइम बताया गया है स्पेशलिस्ट ने वो रात में 10 से सुबह 2 बजे के बीच में, तो इस दौरान तो सबसे अच्छा है। लेकिन अगर 10 बजे के बाद आप थोड़ा सा लेट सो रहे हैं, तो जब भी सोएं आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। उस सारी चीज़ों की कोशिश ज़रूर आप कीजिए जो अच्छी नींद आपको देने में मददगार साबित हो। और इसी के साथ 416-303-3639 इज द नंबर टू कॉल, 416-303-3639। और कॉल कर सकते हैं इसी नंबर पर, डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन कोर्स का। अपने बिजनेस को खुद प्रमोट कीजिए, या किसी को अगर हायर भी कर रही हैं तो ये ज़रूर आपको कारूर आना चाहिए, तभी आप जिसको हायर करते हैं उनको आप बता कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लोकल लेवल पर, रीजनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर आप प्रमोट कर सकते हैं खुद। बेसिक से ये कोर्स शुरू होता है, सिर्फ आपको कंप्यूटर अगर ऑन करना आता है या फिर वो भी नहीं आता है तो भी कोई टेंशन नहीं है। आप बस एक इरादा लेकर आइए कि मुझे अपने सपनों को पूरा करना है। तो ये जो कोड बहुत आसानी से सिर्फ एक महीने में, 4 महीने के 8 दिन आपको आना है, सैटरडे और संडे, कन्वीनियंटली सैटरडे 1 से 6 बजे तक दोपहर में, संडे भी 1 से 6 बजे तक। और इसमें पोस्टर क्रिएशन, आर्ट वर्क, प्रेजेंटेशन, वीडियो मेकिंग, और इसके बाद आउटडोर और इनडोर वीडियोस कैसे बनाते हैं, लाइटिंग का क्या ख्याल रखा जाता है, टैग लाइन्स कैसे लिखी जाती हैं, आपको गवर्नमेंट से जो फंडिंग रखी हुई है आपके लिए कैसे, कौन से पेपर वर्क से आप उसको हासिल कर सकते हैं, अपना यूट्यूब चैनल कैसे बना सकते हैं, एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, स्पॉन्सर्ड ऐड क्या होते हैं, और जो स्पॉन्सर्ड ऐड नहीं होते हैं वो कौन कौन से ऐड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आप महज 1 महीने में, वो भी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन आकर सीख सकते हैं। नंबर घुमाइए, 416-303-3639। ये है लवी डवी शो। और अगला गाना आपके लिए,

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: शगन का दिन चढ़ेगा, सजना घर आएंगे, टोली लेकर जाएंगे, दुल्हन सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।
5: क्या आप अपनी बढ़ती मॉर्गेज पेमेंट से परेशान हैं और आपको मॉर्गेज पेमेंट के लिए फाइनेंशियल हेल्प चाहिए? तो गौर से सुनिए, मॉर्गेज रिलीफ प्रोग्राम में एनरोल कीजिए। आप हर माह $500 से $1500 तक की फाइनेंशियल एड हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 50 साल से 65 साल है, अच्छा क्रेडिट स्कोर है और पिछले 5 सालों में आपने अपना घर रीफाइनेंस नहीं कराया है और आपको मॉर्गेज पेमेंट में वाकई मुश्किल हो रही है, तो ये प्रोग्राम आप ही के लिए है। आज ही हमारे लोकल प्रोग्राम काउंसलर राज से बात कीजिए। राज 416-605-2584, 416-605-2584।
6: The Lovey Dovey Show, driving you home, a melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto Canada, Monday to Friday,

0: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
1: दर्द कमर का हो या जोड़ों का, परेशानी डायबिटीज की हो या शियाटिका पेन हो, जोरों का स्ट्रेस और एंजाइटी की दिक्कत हो या मसला बे औलाद जोड़ों का, बात करें आयुर्वेदा एंड हर्ब्स गुरुजी के साथ, क्योंकि ये 8 जनरेशन से सिर्फ आयुर्वेदा में आपको सेवाएं दे रहे हैं। इंडिया से खालिस हर्ब्स लाकर आपके लिए ऐसी दवा तैयार करते हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आयुर्वेदा एंड हर्ब्स गुरुजी, शियाटिका पेन, नेक पेन, लो स्पर्म काउंट, स्ट्रेस, स्किन डिजीजेस या किसी भी तरह के जनरल हेल्थ इशू के लिए कॉल कीजिए आयुर्वेदा एंड हर्ब्स गुरुजी 437-438-3399। इट्स 437-438-3399।
2: आप रिश्ते को चलाना चाहते हैं या फिर घर बसाना चाहते हैं, लेना है कोई बहुत बड़ा फैसला या करना है कारोबार, स्ट्रेस और एंजाइटी ने जिंदगी को हिला के रख दिया है, या फिर शादीशुदा लाइफ में बहुत सी परेशानियों का सामना है, तो ये सब सितारों की वजह से भी हो सकता है। आप सबसे बात करके डिसअपॉइंट हो गए हैं तो अब घबराने की जरूरत नहीं, बात कीजिए 5th जनरेशन एस्ट्रोलॉजर मास्टर धनिक महाराज से 437-829-6023। इट्स 437-829-6023। मास्टर धनिक महाराज,
3: द लवी डवी शो, ड्राइविंग यू होम, अ मेलोडी अबव एंड बियॉन्ड, ब्रॉट टू यू बाय रेडियो टोरंटो कनाडा, मंडे टू फ्राइडे।
4: बड़े मुख्तसर से हरूफ में कोई गहरी बात सुना गया, बड़े मुख्तसर से हरूफ में कोई गहरी बात सुना गया। किसी ख्वाब सा कोई शख्स था जो शहर से पहले चला गया। हमें आसमां से गिला नहीं, तेरी रहमतों पे यकीन है, जिन्हें जिंदगी ने शिकस्त दी, किसी मौत से ने बचा लिया। किसी मेहरबान की दुआओं से ये सफर नसीब हुआ मुझे, जिन्हें रहबरी का गुरूर था, उन्हें रास्तों ने मिटा दिया। सदा हंसते रहने का हौसला तेरी आरजू ने अता किया, बड़े गहरे जख्म थे वक्त ने जिन्हें रफ्ता रफ्ता भुला दिया। तेरी दोस्ती की ये पेशकश बड़ी दिल फरेब लगी मगर, तेरी दोस्ती की ये पेशकश बड़ी दिल फरेब लगी मगर, ये जो एतबार का वस्फ था कहीं दिल से दूर चला गया। कोई वक्त था कि ये नाम भी बड़ा मोतबर था जहान में, वो जो तेरे इश्क का दौर था हमें बाकमाल बना गया।

0: रहे हैं।
1: क्या सुन रहे हैं?
0: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवर्टाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
0: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
2: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। It's 416-303-3639.
3: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर।
4: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
3: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।

0: अपनी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: लवी रवि शो आप एंजॉय कर रही हैं आमिर और शिवानी के साथ। 4163033639 हमसे रابطے का नंबर है। एक बार फिर से बता दूं, 4163033639। दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर हमेशा से ही कुछ ना कुछ शेयर करते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, अपने वीडियो शेयर करते हैं और बड़े इंटरेस्टिंग से कई बार वीडियोज बहुत बार ऐसे शेयर करते हैं कि लोग दीवाने हुए जाते हैं। उन्होंने लेटेस्ट जो अपना वीडियो डाला है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने 32 साल बाद वो उस स्टेशन पर पहुंचे जहां दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, यानी DDLJ का क्लाइमैक्स शूट हुआ था। है ना इंटरेस्टिंग? दोस्तों, ये जो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं इंडियन सिनेमा की, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो कुछ फिल्में ऐसी हैं जो वक्त के साथ पुरानी नहीं होती बल्कि और भी हसीन हो जाती हैं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे उन्हीं में से एक है। हाल ही में इस फिल्म के दिग्गज एक्टर अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। वीडियो शेयर करते ही उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से एक बहुत बड़ी मांग भी कर डाली। क्या था ये वीडियो? 32 साल के लंबे गैप के बाद महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में आपटा रेलवे स्टेशन पर वो पहुंचे। ये वही हिस्टोरिक रेलवे स्टेशन है जहां ये इस फिल्म का मशहूर क्लाइमैक्स शूट हुआ था, जिसमें शाहरुख खान चलती ट्रेन से हाथ बढ़ाकर काजोल यानी सिमरन को खींच लेते हैं। अनुपम खेर ने अपनी इस यात्रा का, अपनी इस जर्नी का एक्सपीरियंस, अनुभव, तजुर्बा शेयर करते हुए लिखा कि 30 सालों बाद उसी जमीन पर कदम रखना मेरे लिए किसी जादू से कम नहीं था। उन्होंने बताया कि जब वो आपटा रेलवे स्टेशन पर खड़े थे तो उन्हें बिल्कुल भी उनको महसूस नहीं हुआ कि फिल्म की शूटिंग को इतना लंबा वक्त बीत चुका है। वक्त उनके लिए मानो ठहर सा गया था। उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट भी किया कि जब 1995 में वो इस फिल्म की, इस सीन की शूटिंग कर रहे थे, तब यूनिट के किसी भी मेंबर ने ये इमेजिन भी नहीं किया था कि ये जो सीन है ये इंडियन सिनेमा के सबसे प्रेस्टिजियस और सबसे मेमोरेबल और यादगार पलों में से एक पल हो जाएगा। उन्होंने आगे लिखा, उस वक्त शूटिंग करते हुए कभी सोचा भी नहीं था कि शाहरुख खान और काजोल का वो सीन इंडियन सिनेमा के सबसे यादगार पलों में शामिल होगा। लेकिन शायद जिंदगी की खूबसूरती भी यही है, आपको उस पल की वैल्यू का एहसास बहुत बाद में होता है। कितनी सही बात बोली है। उन्होंने सरकार से एक मांग भी की। उन्होंने कहा, मेरी दिल से इच्छा है कि महाराष्ट्र सरकार इस जगह को एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप करे। दुनिया भर की फिल्मों की एक ऐसी लोकेशंस लोगों के लिए यादों और फीलिंग्स का एक हिस्सा बन जाती हैं। हमारे यहाँ भी सिनेमा की इस विरासत को उसी सम्मान के साथ सहेजना चाहिए। जादू सिर्फ फिल्मों में नहीं होता, कुछ जगहों में भी होता है। यश चोपड़ा जी की गर्मजोशी, सादगी, उदारता, उनकी काइंडनेस, रिश्तों को बनाए रखने के उनके एहसास और उनकी पंजाबी झप्पियों को बहुत मिस किया। बताते चलें कि 1995 में आदित्य चोपड़ा की डायरेक्शन में बनी ये फिल्म आज भी उतनी ही नई और उतनी ही रेलेवेंट, प्रासंगिक लगती है जितनी 30 सालों पहले लगती थी। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का क्रेज हर जनरेशन के लोगों के सर चढ़कर बोलता है और हमें बैक टू मेमोरी और डाउन द मेमोरी लेन ले जाता है। कोयल कूके हु कुठाए घर आजा परदेसी। दिस इज लवी डवी शो। 4163033639।

0: दिस इज लवी डवी शो. मैं हूँ शिवानी, मेरे साथ हैं आमिर और हम दोनों के साथ हैं आप सारे लिसनर्स. और ये है डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन कोर्स. जाना पहचाना ये कोर्स है. अरसे से ये जो लवी डवी शो रेडियो टोरंटो कनाडा की जानिब से आपको दिया जा रहा है. कितने ही ऐसे प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स हैं जो अपना अपना बिजनेस जो है इससे करने के बाद शुरू कर चुके हैं, जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं और अपना बिजनेस अब खुद प्रमोट करना चाहते हैं, खुद के बॉस बनना चाहते हैं. हायरिंग के लिए किसी को हायर करके जिंदगी भर पेमेंट करने से अच्छा एक छोटे अमाउंट देके आप जिंदगी भर के लिए अपना खुद प्रमोशन कर सकते हैं ए टू जी. और उसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिजिटल मीडिया कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आफीफ अली. आफीफ, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
1: गुड मॉर्निंग, आई एम वेल, हाउ आर यू?
0: बिल्कुल ठीक ठाक, ऑल गुड, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग. और डिजिटल मीडिया कोर्स के हवाले से सबसे पहले तो हमारे लिसनर्स जो नए नए लिसनर्स रोज जुड़ते हैं तो सबसे पहले ये आपसे जानना चाहेंगे कि ये डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन कोर्स क्या है.
1: ओके, सो ये डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन एक कोर्स है विच इज कल्बिनेशन ऑफ काफी डिफरेंट जो है ना फील्ड ऑफ मीडिया. इसमें कंटेम्प्रेरी मीडिया भी आ जाती है, जैसे फिल्म एंड टेलीविजन हो गई, एंड सोशल मीडिया भी आ जाती है. राइट, तो इसमें हम सिखाते हैं काफी चीजें.
0: अच्छा.
1: सबसे पहले आपको कंटेम्प्रेरी मीडिया में सिखाते हैं डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शन, कैमरा कैसे यूज करना है, उसके बेसिक्स, ISO वगैरह क्या होते हैं, लाइटिंग क्या होती है. राइट, उसके बाद अगर हम डिजिटल साइड पे आए तो हम पढ़ाते हैं सोशल मीडिया में क्या क्या चीजें होती हैं, सच एज कि आपको अपनी, क्योंकि सोशल मीडिया इज अ वर्टिकल फील्ड मोर ऑफन, तो उसमें कैमरा जो है वो स्ट्रेट होता है, हॉरिजॉन्टल नहीं होता, तो उसकी डिफरेंट चीजें सिखाते हैं. बहरहाल ये सिखाते हैं कि उसमें आप किस तरह रील्स बना सकते हैं, क्योंकि टाइम स्पैन भी छोटा होता है, 30 सेकंड्स के अंदर अंदर आपको अपना मैसेज देना है, वो आप कैसे करेंगे, स्टोरी बोर्डिंग कैसे होती है, स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं. उसके बाद पोस्टर डिजाइनिंग सिखाते हैं, एनिमेटेड पोस्टर्स होते हैं आपको, फिर सिखाते हैं कि पोस्टर रील्स कैसे बनाते हैं, काफी सारी चीजें. और उसके बाद आखिर में आता है कि एडिटिंग, आखिर में तो नहीं लेकिन जो थर्ड स्टेप होता है प्रोसेस का, कि आपने एडिटिंग कैसे करनी है. राइट, और एडिटिंग के लिए हम सबसे जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है अडोबी प्रीमियर प्रो, वो सिखाते हैं.
0: एंड
1: उसके बाद हम, जब आपका एक वीडियो बन गई या आपका एक प्रोडक्ट बन गया, तो आपने वो अपलोड कैसे करना है, मार्केट कैसे करना है, ये सारी चीजें सिखाते हैं इस कोर्स में. एंड दिस कोर्स इज फॉर लाइक 4 वीक्स का.
0: अच्छा,
1: कोर्स है,
0: ठीक है,
1: सैटरडे एंड संडे फ्रॉम 1 PM टू 6 PM.
0: जी, 1 PM टू 6 PM, महज 4 हफ्तों में, वो भी सैटरडे और संडे जब मसरूफियत नहीं होती है, उसमें आप ये आइए कोर्स कीजिए और सिर्फ 4 हफ्तों में आप प्रोफेशनल बन जाएंगे. जिंदगी भर के लिए आपके पास एक ऐसा हुनर होगा जो आप खुद अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं. कॉन्टेंट क्रिएशन और जो पंच लाइन होती है, जो टैग लाइन होती है, वो सब भी कुछ इसमें पढ़ाया जाता है, इंक्लूडिंग फंडिंग.
1: जी बिल्कुल, पंच लाइन, टैग लाइन, ये भी हमारे जो राइटिंग के अंदर आता है ना, उसमें आ जाता है.
0: अच्छा, ठीक है.
1: कि आपको फॉर एग्जांपल, अगर आपका एक ब्रांड है तो आप उसकी जो है ना एक टैग लाइन क्या बनाएंगे, या फिर आपके एड की पंच लाइन क्या होगी, ये सारा भी सिखाया जाता है. एंड फंडिंग जहाँ तक आ जाता है तो फंडिंग भी सिखाते हैं, क्योंकि कैनेडा में काफी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो फिल्म या फिर डॉक्यूमेंट्री को फंड करती हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, आपका सबसे पहले आइडिया होना चाहिए फॉर एग्जांपल, उसके बाद आपको किस तरह की डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, ये सारा सिखाया जाता है.
0: जी बिल्कुल, और उसके लिए नंबर एक ही घुमाना है आपको, एक छोटा सा अमाउंट, वेरी वेरी रीजनेबल अमाउंट एज कम्पेयर टू व्हाट यू विल बी टॉट इन द कोर्स. बहुत रीजनेबल अमाउंट है, जिंदगी भर के लिए सिर्फ वन टाइम फी है ये. 416-303-3639, आई रिपीट द नंबर 416-303-3639. हफीफ, इससे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ.

0: आप सुन रहे हैं
1: क्या आप सुन रहे हैं
0: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवर्टाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
0: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
2: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा, कॉल 416-303-3639। It's 416-303-3639.
3: सिर्फ मॉर्गेजेस, दैट्स राजीव तलवार द मॉर्गेज सुपरस्टार। मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल, फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस चूज राजीव तलवार। मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो, लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो, राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा। तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं। कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 9588191001 9588191001, license number 12374.
4: मम्मा, व्हाई डोंट यू गो टू वर्क नाउ?
5: बेटा, तुझे क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी ही रुक गई है। एक महीने से काम पर नहीं गई और अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर रही है।
6: जिंदगी रुकती नहीं, बस रास्ता बदलना पड़ता है। कॉल सैयद एम रजा, आर कम्युनिटी इंजरी लॉयर, इंजरी लॉ के एक्सपर्ट लॉयर।
5: क्या वो मदद करेंगे?
6: मदद करेंगे, उन्होंने एक क्लाइंट को $2 मिलियन की एग्रीगेट सेटलमेंट दिलवाई। तुम्हारे लिए भी लड़ेंगे। इनके पास 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, and no fee until victory.
7: Car accident या slip and fall? Don't call any third party agent. Directly call Sayyed M. Raza of Sayyed Law. Sayyed Law से Sayyed M. Raza.
6: जहाँ सिर्फ वादे नहीं, result मिले.
7: Call Sayyed M. Raza 416-937-5046. That is 416-937-5046.

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: The Lovey Dovey Show, driving you home, a melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto, Canada. Monday to Friday,

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवर्टाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: शगन का दिन चढ़ेगा, सजना घर आएंगे, टोली लेकर जाएंगे, दुल्हन सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।
5: भाई मैनू कहना भी पैना ते तुहानू सुनना भी पैना। डिजाइनर फ्रेम ते ब्रांडेड सनग्लासेस दे बथेरे स्टोर देखे, पर जिन्नी वैरायटी कांडा ऑप्टिकल दे कोल है ओदा तां जवाब ही नहीं।
6: सोहणे फेस वालीए, उच्ची हील वालीए, गुच्ची वाला सच पावे दिल ते थवारीए।
5: फॉर अमेजिंग डिजाइनर फ्रेम्स एंड डिजाइनर सनग्लासेस विजिट kandaoptical.com और कॉल 416-922-5263। कांडा ऑप्टिकल, द नेम यू कैन ट्रस्ट।

0: दिस इज लवी डवी शो. मैं हूँ शिवानी, मेरे साथ हैं आमिर और हम दोनों के साथ हैं आप सारे लिसनर्स. और ये है डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन कोर्स. जाना पहचाना ये कोर्स है. अरसे से ये जो लवी डवी शो रेडियो टोरंटो कनाडा की जानिब से आपको दिया जा रहा है. कितने ही ऐसे प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स हैं जो अपना अपना बिजनेस जो है इससे करने के बाद शुरू कर चुके हैं, जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं और अपना बिजनेस अब खुद प्रमोट करना चाहते हैं, खुद के बॉस बनना चाहते हैं. हायरिंग के लिए किसी को हायर करके जिंदगी भर पेमेंट करने से अच्छा एक छोटे अमाउंट दे के आप जिंदगी भर के लिए अपना खुद प्रमोशन कर सकते हैं ए टू जी. और उसके लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं डिजिटल मीडिया कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आफीफ अली. आफीफ, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं?
1: Good morning. I'm well. How are you?
0: बिल्कुल ठीक ठाक, all good. Thank you so much for asking. और डिजिटल मीडिया कोर्स के हवाले से सबसे पहले तो हमारे लिसनर्स जो नए नए लिसनर्स रोज जुड़ते हैं तो सबसे पहले ये हमसे जानना चाहेंगे कि ये डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन कोर्स क्या है.
1: ओके, सो ये डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन एक कोर्स है विच इज कल्मिनेशन ऑफ काफी डिफरेंट जो है ना फील्ड्स ऑफ मीडिया. इसमें कंटेम्प्रेरी मीडिया भी आ जाती है जैसे फिल्म एंड टेलीविजन हो गई एंड सोशल मीडिया भी आ जाती है. राइट, तो इसमें हम सिखाते हैं काफी चीजें.
0: अच्छा.
1: सबसे पहले आपको कंटेम्प्रेरी मीडिया में सिखाते हैं डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शन, कैमरा कैसे यूज करना है, उसके बेसिक्स, ISO वगैरह क्या होते हैं, लाइटिंग क्या होती है. राइट, उसके बाद अगर हम डिजिटल साइड पे आए तो हम पढ़ाते हैं सोशल मीडिया में क्या क्या चीजें होती हैं, सच एज कि आपको अपनी, क्योंकि सोशल मीडिया इज अ वर्टिकल फील्ड मोर ऑफन, तो उसमें कैमरा जो है वो स्ट्रेट होता है, हॉरिजॉन्टल नहीं होता, तो उसकी डिफरेंट चीजें सिखाते हैं. बहरहाल ये सिखाते हैं कि उसमें आप किस तरह रील्स बना सकते हैं क्योंकि टाइम स्पैन भी छोटा होता है, 30 सेकंड्स के अंदर आपको अपना मैसेज देना है, वो आप कैसे करेंगे, स्टोरी बोर्डिंग कैसे होती है, स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं. उसके बाद पोस्टर डिजाइनिंग सिखाते हैं, एनिमेटेड पोस्टर्स होते हैं आपको, फिर सिखाते हैं कि पोस्टर रील्स कैसे बनाते हैं, काफी सारी चीजें. और उसके बाद आखिर में आता है कि एडिटिंग, आखिर में तो नहीं लेकिन जो थर्ड स्टेप होता है प्रोसेस का, वो कि आपने एडिटिंग कैसे करनी है. राइट, और एडिटिंग के लिए हम सबसे जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है अडोबी प्रीमियर प्रो, वो सिखाते हैं.
0: एंड
1: उसके बाद हम, जब आपका एक वीडियो बन गई या आपका एक प्रोडक्ट बन गया तो आपने वो अपलोड कैसे करना है, मार्केट कैसे करना है, ये सारी चीजें सिखाते हैं इस कोर्स में. एंड दिस कोर्स इज फॉर लाइक 4 वीक्स का कोर्स है,
0: ठीक है,
1: सैटरडे एंड संडे फ्रॉम 1 PM to 6 PM.
0: जी, 1 PM to 6 PM, महज 4 हफ्तों में, वो भी सैटरडे और संडे जब मसरूफियत नहीं होती है, उसमें आप ये आइए कोर्स कीजिए और सिर्फ 4 हफ्तों में आप प्रोफेशनल बन जाएंगे. जिंदगी भर के लिए आपके पास एक ऐसा हुनर होगा जो आप खुद अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं. कंटेंट क्रिएशन और जो पंच लाइन होती है, जो टैग लाइन होती है, वो सब भी कुछ इसमें पढ़ाया जाता है, इंक्लूडिंग फंडिंग.
1: जी बिल्कुल, पंच लाइन, टैग लाइन, ये भी हमारे जो राइटिंग के अंदर आता है ना उसमें आ जाता है.
0: अच्छा, ठीक है.
1: कि आपको फॉर एग्जांपल अगर आपका एक ब्रांड है तो आप उसकी जो है ना एक टैग लाइन क्या बनाएंगे या फिर आपके एड की पंच लाइन क्या होगी, ये सारा भी सिखाया जाता है. एंड फंडिंग जहाँ तक आ जाता है तो फंडिंग भी सिखाते हैं क्योंकि कैनेडा में काफी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फिल्म या फिर डॉक्यूमेंट्री को फंड करती हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, आपका सबसे पहले आइडिया होना चाहिए फॉर एग्जांपल, उसके बाद आपको किस तरह की डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, ये सारा सिखाया जाता है.
0: जी बिल्कुल, और उसके लिए नंबर एक ही घुमाना है आपको, एक छोटा सा अमाउंट, वेरी वेरी रीजनेबल अमाउंट एज कम्पेयर टू व्हाट यू विल बी टॉट इन द कोर्स. बहुत रीजनेबल अमाउंट है जिंदगी भर के लिए, सिर्फ वन टाइम फी है ये. 416-303-3639, आई रिपीट द नंबर 4163033639. हफीफ, इससे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूं, कुछ और ऐड करना चाहेंगे?
1: या मैं ये कहना चाहूंगा कि इट इज, ये जो कोर्स है ये हमने बनाया इसलिए है कि वो लोग जो खुद अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहे या फिर वो खुद अगर फॉर एग्जांपल अगर उनको शौक है कि उनको जो है ना एक इन्फ्लुएंसर बनना है या फिर उनको वीडियोस बनाने का शौक है तो ये स्पेशली हमने उन लोगों के लिए बनाया है.
0: Amazing.
1: तो मेक श्योर यू कम टू दिस कोर्स एंड जब आप आएंगे आपको खुद सीखेंगे आपको बहुत मजा आएगा इस कोर्स लेने में.
0: क्या बात है. तो बस मजे मजे में प्रोफेशनल बनिए और बहुत जल्दी से 4 हफ्तों में प्रोफेशनल बन जाइए इस कोर्स को करके. 416-303-3639. हफीफ बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए. प्लेजर हैविंग यू विद अस. थैंक यू
1: सो मच.

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। It's 416-303-3639.
4: मम्मा, why don't you go to work now?
5: बेटा, तुझे क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी ही रुक गई है। एक महीने से काम पर नहीं गई और अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर रही है।
6: जिंदगी रुकती नहीं, बस रास्ता बदलना पड़ता है। कॉल सैयद एम रजा, आर कम्युनिटी इंजरी लॉयर, इंजरी लॉ के एक्सपर्ट लॉयर।
5: क्या वो मदद करेंगे?
6: मदद करेंगे, उन्होंने एक क्लाइंट को $2 मिलियन की एग्रीगेट सेटलमेंट दिलवाई। तुम्हारे लिए भी लड़ेंगे। इनके पास 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है एंड नो फी अंटिल विक्ट्री।
7: कार एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल, डोंट कॉल एनी थर्ड पार्टी एजेंट, डायरेक्टली कॉल सैयद एम रजा ऑफ सैयद लॉ। सैयद लॉ से सैयद एम रजा,
6: जहां सिर्फ वादे नहीं रिजल्ट मिले।
7: कॉल सैयद एम रजा 416-937-5046, दैट इज 416-937-5046।
8: आप रिश्ते को चलाना चाहते हैं या फिर घर बसाना चाहते हैं? लेना है कोई बहुत बड़ा फैसला या करना है कारोबार? स्ट्रेस और एंजाइटी ने जिंदगी को हिला के रख दिया है या फिर शादीशुदा लाइफ में बहुत सी परेशानियों का सामना है, तो ये सब सितारों की वजह से भी हो सकता है। आप सबसे बात करके डिसअपॉइंट हो गए हैं तो अब घबराने की जरूरत नहीं। बात कीजिए 5th जनरेशन एस्ट्रोलॉजर मास्टर धनिक महाराज से। 437-829-6023। इट्स 437-829-6023। मास्टर धनिक महाराज।
9: लवी डवी सॉन्ग ऑफ द डे इज ब्रॉट टू यू बाय रूहानी कॉलेज। आंखों में बसा है डॉक्टर बनने का सपना या सोच रहे हैं मसाज थेरेपिस्ट का शानदार करियर हो अपना, तो बस आपको है रूहानी कॉलेज ही चुनना। बेहतरीन पढ़ाई से शानदार कमाई वाले करियर के सफर में आपका हम सफर, रूहानी कॉलेज। रूहानी कॉलेज, यहाँ सपने सच में सच होते हैं। 905-731-2555, 905-731-2555, रूहानी कॉलेज।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
0: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
0: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
2: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
3: दर्द कमर का हो या जोड़ों का, परेशानी डायबिटीज की हो या शियाटिका पेन हो, जोरों का स्ट्रेस और एंजाइटी की दिक्कत हो या मसला बे औलाद जोड़ों का, बात करें आयुर्वेदा एंड हर्ब्स गुरुजी के साथ, क्योंकि ये 8 जनरेशन से सिर्फ आयुर्वेदा में आपको सेवाएं दे रहे हैं। इंडिया से खालिस हर्ब्स लाकर आपके लिए ऐसी दवा तैयार करते हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आयुर्वेदा एंड हर्ब्स गुरुजी, शियाटिका पेन, नेक पेन, लो स्पर्म काउंट, स्ट्रेस, स्किन डिजीजेस या किसी भी तरह के जनरल हेल्थ इशू के लिए कॉल कीजिए आयुर्वेदा एंड हर्ब्स गुरुजी। 437-438-3399। इट्स 437-438-3399।
4: शगन का दिन चढ़ेगा, सजना घर आएंगे, टोली लेकर जाएंगे, सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।
5: क्या आप अपनी बढ़ती मॉर्गेज पेमेंट से परेशान हैं और आपको मॉर्गेज पेमेंट के लिए फाइनेंशियल हेल्प चाहिए? तो गौर से सुनिए, मॉर्गेज रिलीफ प्रोग्राम में एनरोल कीजिए। आप हर माह $500 से $1500 तक की फाइनेंशियल एड हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 50 साल से 65 साल है, अच्छा क्रेडिट स्कोर है और पिछले 5 सालों में आपने अपना घर रीफाइनेंस नहीं कराया है और आपको मॉर्गेज पेमेंट में वाकई मुश्किल हो रही है, तो ये प्रोग्राम आप ही के लिए है। आज ही हमारे लोकल प्रोग्राम काउंसलर राज से बात कीजिए। राज 416-605-2584, 416-605-2584।
6: भई मनु कहना भी पैना ते तो अनु सुनना भी पैना। डिजाइनर फ्रेम ते ब्रांडेड सनग्लासेस दे बथेरे स्टोर देखे, पर जिन्नी वैरायटी कांडा ऑप्टिकल दे कोल है, ओदा ता जवाब है नहीं।
7: सोने फेस वाली है, उच्ची हील वाली है, गुच्ची वाला सच पावे दिल ते थवारी है।
6: फॉर अमेजिंग डिजाइनर फ्रेम्स एंड डिजाइनर सनग्लासेस, विजिट kandaoptical.com और कॉल 416-922-5263। कांडा ऑप्टिकल, द नेम यू कैन ट्रस्ट।
8: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
9: बाहर से कोई अंदर ना आ

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। It's 416-303-3639.

0: राजधानी राजधानी
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट राजधानी स्वीट्स.ca।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
0: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
0: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
2: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
3: सिर्फ मॉर्गेजेस। दैट्स राजीव तलवार, द मॉर्गेज सुपरस्टार। मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल, फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस, चूज राजीव तलवार। मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो, लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो, राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा। तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं। कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 905-819-1001 license number 12374।
4: शगन का दिन चढ़ेगा, सजना घर आएंगे, डोली लेकर जाएंगे, दुल्हन सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।
5: दर्द कमर का हो या जोड़ों का, परेशानी डायबिटीज की हो या शाटे का पेन हो, जोरों का स्ट्रेस और एंग्जाइटी की दिक्कत हो या मसला बे औलाद जोड़ों का, बात करें आयुर्वेदा एंड हर्ब्स गुरुजी के साथ, क्योंकि ये 8 जनरेशन से सिर्फ आयुर्वेदा में आपको सेवाएं दे रहे हैं। इंडिया से खालिस हर्ब्स लाकर आपके लिए ऐसी दवा तैयार करते हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आयुर्वेदा एंड हर्ब्स गुरुजी, शाटे का पेन, नेक पेन, लो स्पर्म काउंट, स्ट्रेस, स्किन डिजीजेस या किसी भी तरह के जनरल हेल्थ इशू के लिए कॉल कीजिए आयुर्वेदा एंड हर्ब्स गुरुजी। 437-438-3399। इट्स 437-438-3399।
6: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून-अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लिए एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद ए मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं। और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील, कॉल 905-946-1000 for Midland and Sears and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere or visit mymechanicauto.ca।
0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
0: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
0: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
2: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
7: लवी रवि शो, और इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। नमस्कार।

0: हम तो क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।

0: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर,
1: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
0: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
2: बेस्ट साउथ एशियन क्लोथिंग के लिए एक ही स्टोर जहां पर आपको मिलेंगे एक छत तले बेस्ट फैशंस, बेस्ट स्टाइल्स एंड बेस्ट प्राइसेस। एशियंस पॉपुलर साउथ एशियन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल स्टोर नियर मार्कम रोड एंड लॉरेंस एवेन्यू इन स्कारब्रो, 3601 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट, यूनिट नंबर 23, स्कारब्रो। नोन फॉर देयर साड़ीज, लहंगा, सलवार सूट्स, ब्राइडल वेयर, मेन्स ट्रेडिशनल क्लोथिंग, ज्वेलरी एंड गिफ्ट आइटम्स। एशियंस 416-438-6568, ईस्ट और वेस्ट। एशियंस is the best.

0: मलाबू ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं सीजन, तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपनी सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स द केयर इट डिजर्व्स।
1: कैशपॉइंट, वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर मनी ट्रांजैक्शन नीड्स। हम प्रोवाइड करते हैं ऑनेस्ट और रिलायबल सर्विसेज फॉर ऑल योर फाइनेंशियल नीड्स, जैसे कि वर्ल्ड वाइड मनी ट्रांसफर, चेक कैशिंग, करेंसी एक्सचेंज एंड बायबैक गोल्ड लोन एट एक्सेप्शनली लो रेट्स। दुनिया के किसी भी कोने से सेंड और रिसीव मनी ट्रांसफर्स, रिलायबल, कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल। दैट्स व्हाट कैशपॉइंट मनी ट्रांसफर सर्विसेज गिव यू। कैशपॉइंट ऑफर करता है टॉप डॉलर्स फॉर योर गोल्ड। अनवांटेड और यूज्ड गोल्ड के लिए कैशपॉइंट देगा फेयर मार्केट वैल्यू। लोकेटेड at 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000. 416-284-7000.

0: आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लिए एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 905-946-1000 फॉर मिडलैंड एंड सील्स एंड 416-757-1000 फॉर मिडलैंड एंड एल्समियर और विजिट mymechanicauto.ca।
1: कैशपॉइंट वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर मनी ट्रांजैक्शन नीड्स। हम प्रोवाइड करते हैं ऑनेस्ट और रिलायबल सर्विसेज फॉर ऑल योर फाइनेंशियल नीड्स, जैसे कि वर्ल्ड वाइड मनी ट्रांसफर, चेक कैशिंग, करेंसी एक्सचेंज एंड बायबैक गोल्ड लोन एट एक्सेप्शनली लो रेट्स। दुनिया के किसी भी कोने से सेंड और रिसीव मनी ट्रांसफर्स, रिलायबल, कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल। दैट्स व्हाट कैशपॉइंट मनी ट्रांसफर सर्विसेज गिव यू। कैशपॉइंट ऑफर करता है टॉप डॉलर्स फॉर योर गोल्ड। अनवांटेड और यूज्ड गोल्ड के लिए कैशपॉइंट देगा फेयर मार्केट वैल्यू। लोकेटेड 3852 Finch Avenue, Easton Scarborough, Unit GO3. आज ही कॉल करें 416-284-7000, 416-284-7000.
2: Your business on CMR at 11. Reach the South Asian community.

0: बेस्ट साउथ एशियन क्लोथिंग के लिए एक ही स्टोर जहां पर आपको मिलेंगे एक छत तले बेस्ट फैशंस, बेस्ट स्टाइल्स एंड बेस्ट प्राइसेस। एशियंस पॉपुलर साउथ एशियन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल स्टोर नियर मार्कम रोड एंड लॉरेंस एवेन्यू इन स्कारब्रो, 3601 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट, यूनिट नंबर 23, स्कारब्रो। नोन फॉर देयर साड़ीज, लहंगा, सलवार सूट्स, ब्राइडल वेयर, मेन्स ट्रेडिशनल क्लोथिंग, ज्वेलरी एंड गिफ्ट आइटम्स। एशियंस 416-438-6568, ईस्ट और वेस्ट। Asians is the best.
1: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर,
2: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
1: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।

You're tuned into CMR 11.

0: आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं सीजन, तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30-point इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें, कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स द केयर it deserves.
1: Toronto, ready!
2: Advertise your business on CMR at 11. Reach the South Asian community.

0: नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सनी जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, जहां न्यूज, व्यू, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट की खबरें होती हैं बेसिकली एब्सोल्युटली अनलिमिटेड। स्टूडियो का नंबर 416-593-0005 और किशोर कुमार साहब की आवाज में इस भजन से हमने दिन की शुरुआत की है। दिस इज प्रॉब्ली दी ओनली भजन जो किशोर कुमार ने अपने करियर में गाया होगा, एंड दिस वॉज फॉर नन अदर देन राजेश खन्ना। बाहर का तापमान एट प्रेजेंटली 19 डिग्री सेल्सियस एंड फील्स लाइक 19। मैक्सिमम टेम्परेचर्स विल हिट अबाउट 22 एंड देन टुमारो विल बी अ हॉट वन, 28 डिग्रीज, वेंसडे 26 और थर्सडे से फिर से टेम्परेचर्स थोड़े से बेहतर होंगे, 20 डिग्री सेल्सियस 10 मिनिमम। सो दिस इज द काइंड ऑफ वेदर वी आर लुकिंग एट, बट इट्स नाइस, सनी, ब्यूटिफुल। वीकेंड वॉज ऑल रेन रेन रेन, काफ़ी रेन जो है आपकी ग्रास को मिला है एंड इट वॉज जस्ट क्रेजी वीकेंड। UV will be very high, increased from yesterday, और sunset होगा 8:46 पर, 8:46 PM होगा sunset, and 12:15 हमारी headlines हैं और sponsors के messages, आपकी song requests will be played all the way till 2 PM, and express shuttle buses are running to Pearson Airport from Union Station, ये खबर आई है सामने, और दूसरी तरफ coyote attack जो हुआ है वो खबर भी सामने आई है। इन अ मैटर ऑफ फ्यू डेज 2 कायोटी अटैक्स, पहले 16 साल के टीनेजर को कायोटी ने अटैक किया मार्कम, एंड नाउ यंगर चाइल्ड गॉट अटैक्ड एज वेल बाय अ कायोटी इन अ मार्कम पार्क। सो कई बार वही होता है कि वाइल्ड लाइफ से दूर रहे वही अच्छा है, इन्हें फीड करना जो है इज प्रॉबली द वर्स्ट थिंग वी कैन डू, बिकॉज देन वी आर इन्वाइटिंग देम close to where we live. And provincial workers receive wave of rejection letters in response to work from home accommodations World Cup ke liye. Ontario ke provincial workers ne Doug Ford sarkar se ye request ki thi ki they can do work from home in the next couple of months because of FIFA, but all those letters have been rejected. Warm and sunny conditions in the forecast this week after heavy rainfall that we received this weekend, or more so on when we talk about Saturday. Mayor Olivia Chow seeking re-election officially registers to run in October election. So finally, wo jo रहस्य था, मिस्ट्री थी, एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ लड़ेगी नहीं लड़ेगी मेयर, फाइनली शी इज आउट इन द ओपन एंड शी सेड यस आई एम बैक, एंड इट वाज वेरी मच एक्सपेक्टेड। आई गेस शी वाज जस्ट वेटिंग फॉर दैट राइट डे, एंड वो राइट डे आज है जहां पर उन्होंने अपना नाम जो है रजिस्टर कर लिया है। सो लेट्स सी अब क्या होता है आने वाले दिनों में। बहुत ही छोटी सी यहाँ पे ब्रेक लेंगे, 12:15 की हेडलाइंस हमारी बिल्कुल रेडी है, और ikracenter.ca ईद उल अदा की प्रेयर्स जो है वेंसडे को मई 27 को होंगी। फर्स्ट प्रेयर 8 सुबह, सेकंड 10 AM, सेपरेट अरेंजमेंट फॉर लेडीज, फ्री पार्किंग है, एंड इसके अलावा जो है मिराज बैंक्वेट हॉल एंड कन्वेंशन सेंटर, 1917 एल्बियन रोड इटोबिको आपने पहुंचना है, एंड दिस इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय आवर स्पॉन्सर ऑल दैट सॉल्यूशंस से, सिद्दीक भाई, मोहम्मद सिद्दीक, 416-671-0577 All That Solutions, and ज़्यादा जानकारी के लिए आप मिराज बैंक्वेट हॉल पर भी कॉल कर सकते हैं, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन 416-744-2099। दिस इज़ फॉर द प्रेयर्स फॉर ईद उल अदा, एंड वील टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, आते हैं बहुत ही जल्द वापस 12:15 हेडलाइंस लेकर।
1: ये वो टाइम ऑफ द ईयर है जिसका आप वेट कर रहे थे, डेमोन्स्ट्रेटर इवेंट एट डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस, May 16th तक lease rates as low as 2.9% up to 24 months. Select demo vehicles for savings up to $4,989 included. Best selection ke liye Don Valley North Lexus jaldi visit kare. Jaldi kare. Offer ends May 16th. Visit DonValleyNorthLexus.com today. A proud member of Vane's Auto Group.

0: रानी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: काव्य होम्यो केयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस, हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्य होम्यो केयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779.
3: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
4: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?
5: Yes.

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hi अंजू, कैसी हो? How's your son doing?
2: निशा, पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
1: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
3: शी इज राइट, चाहे बच्चे हो या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव, ब्रैम्पटन, 905-457-3232. Clear Optical by Varun Kanda.
4: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive. चाहे हो daily commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care, Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें wayneautogroup.com.

Welcome back, friends. And the headlines are brought to you by Don Valley North Hyundai, Clear Optical by Varun Kanda, Kavya Home Your Care, McQueen Dental Care, Rajdhani Sweets and Restaurant, Win Lifetime Trading, and Brampton TV and Appliances. Shuru karte taza tareen headlines. Report ke anusar, Iran ne Dubai ke route ka istemal kiya to smuggle Chinese military technology. US Iran breakthrough ke liye Pakistan ke CDF Asim Munir aur Prime Minister Sharif ne Cheen se madad mangi. India ke External Affairs Minister S. J. Shankar ne US Secretary of State Marco Rubio se visa policies mein kiye gaye changes पर चिंता जताई। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ वॉर और ओपनिंग ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर निगोशिएशंस काफी तेज हैं, सोल्यूशन जल्द निकलेगा। रशिया ने न्यू हाइपरसोनिक वेपन को डिप्लॉय किया। यूक्रेनियन ऑफिशियल्स के अनुसार 600 ड्रोन्स प्लस 90 मिसाइल्स वर फायर्ड इन द अटैक। आइस लॉस एंजलिस ने 26 साल के परमिंदर पाल सिंह को अरेस्ट किया ओवर थेफ्ट एंड वैंडलिज्म, स्टिल इन आइस कस्टडी। फिलीपींस में अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कलैप्स हुई, 21 लोग लापता हैं, 24 वर्कर्स वर रेस्क्यूड। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ पर शार्क अटैक में शख्स की मौत हुई। और मार्को रूबियो ने 4-day इंडिया विजिट के दौरान एस जयशंकर से कहा, यूएस और इंडिया सिर्फ एलाइज नहीं है, वी आर स्ट्रेटेजिक एलाइज। एंड मुश्ताबा खमैनी इन हाइडिंग यूजिंग कोरियर नेटवर्क टू कम्युनिकेट। लोकल समाचारों में कैरोलाइन मेलरूनी अगले महीने फोर्ड कैबिनेट से रिजाइन करेंगी और एमपीपी की सीट को भी इस्तीफा देंगी। स्कारब्रो अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर हुई असॉल्ट और रॉबरी के बाद मैन फाइटिंग फॉर हिज लाइफ। टोरंटो मूविंग एक्स्ट्रा फास्ट टू पैच अप सिटी अहेड ऑफ फीफा। एंड स्कारब्रो क्रैश से 3 लोग पहुंचे अस्पताल। ब्रूनो मार्स कॉन्सर्ट सैटरडे को रेन की वजह से हुआ पोस्टपोन। एंड मार्कम पार्क में एक कायोटी ने बच्चे को किया बाइट। एंड नॉर्थ यॉर्क के इंडस्ट्रियल वेयरहाउस में लगी आग। भारतीय समाचारों में असम यूनिफॉर्म सिविल कोड ने लिव इन रिलेशनशिप रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी कर दिया है। जमात इस्लामी को टारगेट करते हुए एंटी टेरर एजेंसी ने कश्मीर भर में रेड्स कंडक्ट किए। तेलंगाना में हीट स्ट्रोक से 16 लोग मारे गए, 4 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन अनाउंस किया गया। इबोला वायरस को लेकर आंध्रा गवर्नमेंट ऑन हाई अलर्ट, एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग शुरू हुई। असम के गुवाहाटी में हुए हॉरिफिक बाइक कोलिजन में 4 लोग मारे गए। नीट पेपर लीक केस अक्यूज्ड को 6 जून तक जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। चीफ मिनिस्टर हेमंत शर्मा का कहना है कि असम अब काउंटर रेडिकलाइजेशन सेल को सेटअप करेगा टू प्रोटेक्ट द यूथ। और कर्नाटका नीट एस्पायरेंट डाइज बाय सुसाइड, बोर्ड एग्जाम में मिले थे 92%। डाउरी हरासमेंट केस में सेकेंड ऑटोप्सी के बाद त्रिशा शर्मा का अंतिम संस्कार किया गया, बॉडी हैंडेड ओवर टू द फैमिली। इलीगल इमिग्रेंट्स को रखने के लिए बंगाल टू सेटअप होल्डिंग सेंटर्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। जम्मू कश्मीर के बारामूला में टेरर हाइड आउट बस्टेड, अम्यूनिशंस रिकवर्ड। और वाराणसी घाट पर सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ हुई फाइट के बाद 17 साल के टूरिस्ट की मौत हुई, 4 लोगों को डिटेन किया गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस प्लेन टू केरला हिट लाइट्स, सस्टेन्ड हैवी डैमेज इन ओमान। एन ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी स्कैम ने लोगों से 60 लाख रुपए लूटे। पाकिस्तान की खबरों से इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अथॉरिटीज को बार किया फ्रॉम इविक्टिंग 1 कंस्ट्रक्शन एवेन्यू अपार्टमेंट ओनर्स। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का कहना है कि नो कंप्लीशन सर्टिफिकेट येट इशूड फॉर द बिल्डिंग। पाकिस्तान में रेलवे ट्रैक के पास हुए धमाके में 24 लोग मारे गए, बलोच ग्रुप क्लेम्स अटैक, ट्रेन पर पाकिस्तानी सोल्जर्स सवार थे। प्रिंस आगा खान ने केपी चीफ मिनिस्टर अफरीदी को प्रोविंस में इन्वेस्टमेंट की अश्योरिटी दी है। एंड चाइनीज लीडरशिप के साथ हाई लेवल टॉक्स के लिए पीएम शरीफ पहुंचे बीजिंग, जहां चाइनीज प्रेसिडेंट से भी होगी मुलाकात। प्राइम मिनिस्टर ने अलीबाबा हेडक्वार्टर्स को भी विजिट किया, कई एमओयूज पर हस्ताक्षर भी किए गए। जियो न्यूज पर पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर ग्रेट डिबेट का आगाज हुआ, एक्सपर्ट सेट टू डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेसिंग बिटवीन प्रेगनेंसीज। एंड आईएसपीआर के अनुसार नॉर्थ वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 11 टेररिस्ट को मार गिराया, ऑपरेशन पार्ट ऑफ आईबीओज कंडक्टेड ओवर पास 48 आवर्स। बन्नू के सेपरेट ऑपरेशन में 16 आतंकी भी मारे गए थे। पीएम शरीफ को उम्मीद है टू होस्ट द न्यू राउंड ऑफ ईरान यूएस टॉक्स वेरी सून। इस पूरे प्रोसेस के दौरान सीडीएफ मुनीर के टायरलेस एफर्ट्स की प्राइम मिनिस्टर ने जमकर तारीफ की। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने मिडिल ईस्ट मीडिएशन में पाकिस्तान के कंस्ट्रक्टिव रोल की तारीफ की है। पीएम शरीफ बोले, पाकिस्तान बैक्स प्रेसिडेंट शीज 4-point एजेंडा फॉर पीस। चाइना माइंड डेथ्स पर पीएम ने शोक भी जताया। केपी में मिलिटेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल को ब्लो अप किया।
sports jagat se. No Pat Cummins, Josh Hazlewood, Mitchell Stark for the Pakistan ODIs. Cricket Australia ne tino pacers ke workload management ke chalte ye faisla liya hai. Focus hai 2027 World Cup for all the three pacers. Rajasthan Royals ne Mumbai Indians ko 3 run se beat kiya to enter playoffs. Punjab aur KKR eliminated. Dusri aur Rohit Sharma equals all-time unwanted IPL record after duck against Rajasthan Royals. Aur sutron ke anusar Pakistan ki Bangladesh ke khilaf 2-0 haar ke baad head coach Sarfaraz Ahmed ne team ki jamkar phatkar lagai. Bollywood khabron se Dawn 3 se Ranveer Singh ke walkout ke baad director Farhan Akhtar ne actor se 45 crore rupees ki mang ki hai. Jalsa ke bahar mahanayak Amitabh Bachchan ko dekhne aaya fan behosh hua scorching heat mein lambe waqt wait ke baad middle aged fan faint hua. David Dhawan ne kaha I made chashme baddur out of anger. Aajkal ke actors mein koi loyalty nahi dikhti. Superstar Akshay Kumar to feature in alien action film Samukh. Described as India's biggest alien action spectacle, 2027 mein ye film release hogi. Film mein horror aur thriller ka blend dekha jayega. Akki ne kaha, main bahut hi excited hoon. Emotional David Dhawan ka kehna hai ki everyone should have a son like Varun Dhawan. And film main wapas aaunga par director Imtiaz Ali bole, the film is inspired by real life stories. Ye thi South Asian Unlimited Radio ki taza tareen headline. Studio ka number 416-593-0055 और आज as always मंडे के दिन Skylake Immigration से मनन गुप्ता जी हमारे साथ होते हैं. 12:45 he'll be with us, we'll talk to him as well. और आज मैंने सोचा थोड़ा सा किशोर कुमार स्पेशल कर लेते हैं. एक के बाद एक किशोर कुमार हिट्स प्ले करेंगे. कुछ आपकी रिक्वेस्ट भी प्ले की जाएंगी. राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट 30 प्लस लोकेशन से सर्व करते हैं 100% प्योर वेजिटेरियन फूड. जबरदस्त मिठाइयों का दूसरा नाम राजधानी. एशियंस एक बहुत ही पॉपुलर साउथ एशियन क्लोथिंग और टेक्सटाइल स्टोर है मार्कम और लॉरेंस के इलाके में स्कार्ब्रो में 3601 लॉरेंस एवेन्यू स्कार्ब्रो. और जहां पर हम शादी ब्याह के सीजन की बात करते हैं तो आपको चाहिए लेटेस्ट खासकर लेडीज को बहनों को 2026 के लेटेस्ट फैशन स्टाइल्स. सो एशियंस पर पहुंचिए साड़ीज लहंगा सलवार सूट्स ब्राइडल वेयर मेन्स के ट्रेडिशनल क्लोथिंग ज्वेलरी गिफ्ट आइटम्स आपका कर रहे हैं इंतजार. एशियंस 416-438-6568 एशियंस पर पहुंचिए इन स्कार्ब्रो. Enjoy the song, Chala Jata Hoon, Kisi Ki Dhun Mein, Kishore Kumar Saab Ki Awaaz Mein.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940 6478631940.
1: डॉन वैली नॉर्थ हंडे पे हो रही है जबरदस्त हंडे संडे की अल्टीमेट सेविंग सेल ऑन May 24th. इन्वेंटोरी पर ह्यूज बोनस ऑफर्स. डील्स इतनी जबरदस्त की मिस नहीं कर सकते. संडे May 24th को अपने कैलेंडर में मार्क कर लो. डॉन वैली नॉर्थ हंडे पर हमारी टीम बात करती है हिंदी, उर्दू, पंजाबी और तमिल में. विजिट करिए DonValleyNorthHyundai.com. Woodbine Ave और Denison Street, Markhamper.
2: Doing business your way.
1: Member of Wayne's Auto Group.
3: 10 meter. बस इन्ना को याद रखो. तुहानू ऊपरों लंघ दिया बिजली दिया पावर लाइन्स तो घट्टो घट 3 meter दूर रहना चाहिदा है. ओंटारियो विच बिजली तो होण वाली मौतां दा एक प्रमुख कारण पावर लाइन्स हन अते बिना छुए भी तुहाडी मौत दा कारण बन सकदियां हन. जेकर तुसीं बाहर काम कर रहे हो तां उपरों लंघदियां पावर लाइन्स वल ध्यान दिओ. अपने आप नूं अते अपने उपकरणां नूं इन्हां तों घट्टों घट 3 meter दूर रखो. इलैक्ट्रिकल सेफ्टी अथॉरिटी वल्लों सुनेहा ESASafe.com/stoplooklive ते होर जाणो.

0: जी हाँ, यहाँ त्योहार पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर, मूर्तियाँ, हवन सामग्री, फेंग शुई वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलेनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 905-458-6808
1: और विजिट पूजाहट.com।
0: जय श्री राम।
2: बेस्ट साउथ एशियन क्लोथिंग के लिए एक ही स्टोर जहां पर आपको मिलेंगे एक छत तले बेस्ट फैशंस, बेस्ट स्टाइल्स एंड बेस्ट प्राइसेस। एशियंस पॉपुलर साउथ एशियन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल स्टोर नियर मार्कम रोड एंड लॉरेंस एवेन्यू इन स्कारब्रो, 3601 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट, यूनिट नंबर 23, स्कारब्रो। नोन फॉर देयर साड़ीज, लहंगा, सलवार सूट्स, ब्राइडल वेयर, मेन्स ट्रेडिशनल क्लोथिंग, ज्वेलरी एंड गिफ्ट आइटम्स। एशियंस 416-438-6568, East or West, Asians is the best. This part of the program is brought to you by Win Lifetime Trading. पिछले 15 सालों से successfully online trading से बहुत से परिवारों को side income provide करते आ रहे हैं, जिसमें आप हर महीने $2,000 से $6,000 US कमा सकते हैं। Flexible schedule है, surety with full confidence के साथ minimum $2,000 to $6,000 आप कमा सकते हैं। Free seminars attend करें हर Saturday afternoon. Make sure please make your appointment. Walk in ना करें। 12:30 PM to 3:30 PM होता है seminar, and call करके अपनी seat reserve करवा लें। 905-206-1008 905-206-1008। Mittal CPA Professional Corporation, for all your tax related matters, 289-748-4040 289-748-4040।
3: He's breaking through the midfield.
4: Don Valley North Hyundai आपको दे रहा है मौका FIFA World Cup 2026 के टिकट्स जीतने का। कोई भी व्हीकल बाइकर के घर ले जाए और पाए डबल एंट्रीज। Winter tires या extended warranty ले और हर एक के साथ पाएं एक extra entry. आज drive करें, कल जीते. Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
5: यार दोस्त बिछड़ गए सारे, वो जो कभी शान हुआ करते थे, शान क्या साली जान हुआ करते थे, जिनके साथ होने से महफिल आबाद रहती थी, जिनके साथ अच्छी खासी जिंदगी भी मजे से बर्बाद होती थी, वो दोस्त जो परवाह नहीं करते थे, वो दोस्त जो हमेशा साथ देते थे। अब न जाने कहां बिछड़ गए हैं, मोबाइल के कॉन्टेक्ट लिस्ट में हैं तो सही, पर बात नहीं करते यार।

0: Lifetime. Learn to earn at Win Lifetime. Call 905-206-1008.
1: काव्या होम्यो केयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस, हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्यो केयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779.

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर. और हम पहुंच चुके हैं काव्या होम्यो केयर गोल्ड मेडलिस्ट होम्योपैथ मीता ओजा पिनाकोजा जी, 10 कॉट्रेल बुलेवार्ड यूनिट 104 ब्रैम्पटन से आपको सर्व करते हैं. नॉर्थ पार्क और एयरपोर्ट रोड का मेजर इंटरसेक्शन है एंड द क्लिनिक फॉर योर कन्वीनियंस इज ओपन 6 डेज अ वीक, मंडे टू सैटरडे 10 AM इन द मॉर्निंग टू 6 PM. नंबर टू कॉल 6477602779. मीता जी आपका स्वागत है.
1: थैंक यू सनी जी. गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैम छो
0: जी, मजामा. गुड आफ्टरनून मीता जी. एंड मीता जी, आज स्पेशल हेल्थ सेगमेंट में मंडे के दिन हम किस टॉपिक को लेकर करेंगे बातचीत?
1: वैसे वेदर करके आजकल जो काफी पाई जाती है प्रॉब्लम, वो है साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम एंड ड्राई कॉफ वाली प्रॉब्लम. कि पिछले टाइम आप देखे कि कोल्ड एंड फ्लू चल रहा था, जुखाम या रनी नोज स्नीजिंग से स्टार्ट होके अभी का जो स्टेज चल रहा है वो है गले में इरिटेशन या टिकलिंग होके खांसी स्टार्ट हो रही है. और यूजली ये ड्राई कॉफ होता है और उसके साथ साथ समटाइम्स आप देखोगे कि खांसी करते करते चेस्ट में पेन हो जाना या सिर में दर्द रहा है, इतने लगातार बाउट्स आ रहे हैं कॉफ के. एंड थोड़ा सा भी आप कुछ खा पी लेते हो, थोड़ी देर सही जाना, वापस वो ड्राइनेस या बोलने के साथ आपकी खांसी ट्रिगर हो रही है. और इसके साथ साथ साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम, जिसमें आपके साइनसिस में इंफ्लेमेशन होने के साथ आप देखोगे कि आंखों के ऊपर का एरिया है, आंखों के नीचे का एरिया है, तो वहां पे पेन, प्रेशर फील होना, हेडेक की प्रॉब्लम है. और यूजली ये वन साइडेड होता है, जिस साइड के साइनस में आपको इन्फ्लेमेशन ज्यादा हुई है वहां पे ये प्रॉब्लम आएगी. और कई बार जब लोअर आपके आंखों के नीचे वाले एरिया में साइनस जो चिक्स एरिया में होते हैं वहां पे इन्फ्लेमेशन है, तो वो पेन आपके चेहरे में या दांतों तक जाती है. उसके साथ आपको फील होता है कि अंदर कोई नेजल पैसेज में बर्निंग वाली सेंसेशन है, हेवीनेस है, प्रेशर बन रहा है. एंड यहाँ पे म्यूकस प्रोडक्शन साइनस इसमें बढ़ जाने के साथ आपको फील होता है कि रात के टाइम जो म्यूकस आपके साइनस इसमें पीछे की ओर जमा होता है वो स्टफी नोज क्रिएट कर देता है, या इनसाइड की लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन होने से आपको नेजल ब्लॉकेज की प्रॉब्लम रहती है. तो ऑलरेडी जिनको नेजल पॉलिप्स या एडेनोइड्स, छोटे बच्चों को जिनको ये प्रॉब्लम है, तो उनको इन्फ्लेमेशन बढ़ने के साथ वहां पे भी वो ग्रो कर जाते हैं और उनकी परेशानी बढ़ जाती है. और ऐसे में क्या होगा कि नाइट टाइम में नेजल ब्लॉकेज की प्रॉब्लम, के नाक बंद होना, जोर से खर्रांटे आ रहे हैं, मुंह खुला छोड़ के आप ब्रीथ करते हैं एंड मुंह में ड्राइनेस भी फील होती है. और फिर सुबह उठने के साथ या तो जो नेजल डिस्चार्ज है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा या वही म्यूकस आपके थ्रोट में ड्रिपिंग होती है, जिसको हम पोस्ट नेजल ड्रिप कहते हैं. और ये म्यूकस कई बार इतनी थिक हो जाती है कि खींच के आपको वो बलगम निकालनी पड़ती है और उसके साथ मिक्स होके ब्लड भी थोड़ा बहुत ही आ जाना. सो ये नेजल ब्लॉकेज या पोस्ट नेजल ड्रिप की प्रॉब्लम कुछ लोगों को देखें कि सालों से इससे परेशान है. जब आपको किसी चीज से एलर्जी है, कि एनवायरमेंटल एलर्जी है या खाने की कोई चीज से एलर्जी है, कई बार हम सुनते हैं ना कि बनाना खा लिया या योगर्ट खा लिया तो उसके साथ म्यूकस बढ़ जाना, तो ये चीजों के साथ आपको होता है अक्सर. आपकी तस्वीर इस तरह है तो वो म्यूकस ज्यादा बढ़ा देता है आपकी बॉडी में और फिर लगातार क्रोनिक ये प्रॉब्लम चलती रहती है. और यही म्यूकस जब इन्फेक्टेड होकर आपके गले में ड्रिप होती है तो थ्रोट इन्फेक्शन करेगी और चेस्ट में जाके वो लंग्स में भी ब्रोंकाइटिस या इन्फेक्शन कर सकती है. और ये केसेस आजकल काफी चल रहे हैं, थ्रोट इन्फेक्शन है, कानों में फुलनेस या ईयर इन्फेक्शन हो जाना, साइनस में इन्फ्लेमेशन करके साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम या खांसी. कि जुखाम तो एक बार आपका फीवर सही हो गया, कोल्ड सही हो गया, लेकिन उसके बाद ये स्टार्ट हो गया जो लगातार 4-6-8 महीने से आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है और एक चेन में आप फंसते जा रहे हैं. तो ऐसे में ये मेडिकेशन है आपको काफी हेल्प करेगी एंड ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करते ही आपके सिम्टम्स में तो रिलीफ मिलेगी, लेकिन ये जो लगातार चेन चल रही है तो ऐसे में आपकी इम्यूनिटी बढ़ा के, चाहे एलर्जी है तो उसको सही करने में हेल्प करेगी और अगर इन्फेक्शन हो रहे हैं उसको इम्प्रूव करने में ये हेल्प करेगी. एंड कुछ एक टाइम का ही कोर्स लेने से आप देखोगे कि आपको काफी रिलीफ मिली है. सो फील फ्री टू कॉल अस. आपके नाक में मास बढ़ा हुआ है, नेजल पॉलिप से सफर कर रहे हैं, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, रिपीटेड सोर थ्रोट या थ्रोट इन्फेक्शन हो रहे हैं, ईयर इन्फेक्शन हो रहे हैं या चेस्ट के इन्फेक्शन, तो काव्या होम्यो केयर से आप मेरा कॉन्टेक्ट जरूर कर सकते हैं. और इसके साथ हम लेके आए हैं मसाज थेरेपी. सो बॉडी में कहीं पे भी आपको पेन्स रहे हैं, बैक पेन है, थकावट ज्यादा फील होना, फाइब्रोमाइल्जिया वगैरह की परेशानी है, स्ट्रेस में ज्यादा रहते हो, रिलैक्स होने के लिए आपने मसाज कराना है, हेडेक वगैरह की प्रॉब्लम है, सो उसके लिए वी डू हैव मसाज थेरेपी एज वेल। लोकेशन है हमारी 10 Cottrell Boulevard, यूनिट 104 इन ब्रैम्पटन। मंडे टू सैटरडे वी आर ओपन 6 days a week, 10 AM to 6 PM। ऑल ओवर कैनेडा, US एंड UK में, यूरोप में मेडिकेशन हम मेल करते हैं, शिप करते हैं, एंड कुछ एक इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो होम्योपैथी का कवरेज भी प्रोवाइड करती हैं, इसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। और इसके अलावा अपनी प्रिस्क्रिप्शन रीफिल करवानी हो, होम्योपैथिक मेडिकेशन चाहिए, या फिर कोल्ड खांसी फ्लू के लिए 1 week 2 weeks की मेडिकेशन चाहिए, अपने लीवर को हेल्दी बनाना चाहते हैं, लीवर क्लिंजिंग टिंचर्स आर अवेलेबल, एनर्जी कम हो रही है तो उसके लिए वी डू हैव मेडिकेशन। सो ये सारी एज अ ओवर द काउंटर मेडिकेशन, किडनी क्लिंजर है या हार्ट टोनिक है, तो वो आप जरूर आके ले सकते हैं।
0: बिल्कुल दोस्तों, काव्या होम्यो केयर, गोल्ड मेडलिस्ट होम्योपैथ, मीता ओझा, पिनाक ओझा, 10 Cottrell Boulevard, यूनिट 104, ब्रैम्पटन से आपको सर्व करते हैं। नॉर्थ पार्क और एयरपोर्ट रोड का मेजर इंटरसेक्शन है। एंड इफ यू आर आल्सो गोइंग थ्रू एनी ऑफ दीज सिम्टम्स, आप जल्द से जल्द जो है काव्या होम्यो केयर पर विजिट करें, अपॉइंटमेंट भी बना सकते हैं, वॉक इन भी कर सकते हैं। अगर दूर रहते हैं तो फिक्र ना करें, फोन पर कंसल्टेशन की जाएगी मंडे टू सैटरडे 10 AM to 6 PM, दवाई आपके घर पहुंच जाएगी। ऑल अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका it's shipped out. 6477602779, 6477602779, Kavya Homeo Care. Meeta ji, bahut bahut shukriya.
1: Thank you so much, Sunny ji.
0: Thank you ji. 6477602779 is the number. Agla geet Kishore Kumar sahab ki awaaz mein, ye lal rang, beautiful song, enjoy kare. Brought to you by Brampton TV and Appliances.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940, 6478631940.
1: Genesis Markham, यहाँ मिले लग्जरी का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट डीलरशिप और आपकी अपनी लैंग्वेज में एक्सपर्ट सर्विस. लीज करें ब्यूटिफुली डिजाइन 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज करें 2026 GV70 सिर्फ 4.9% से. आज ही बुक करें टेस्ट ड्राइव. विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट Woodbine Avenue एंड John Street, Markham. Genesis Markham, doing luxury your way. A proud member of Wayne's Auto Group.
0: मॉर्गेज का कोई भी काम, याद रखें एक ही नाम, मॉर्गेज आर्किटेक्ट्स के सनी जोशी. फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज, होम इक्विटी, रिन्यूअल्स, बैड क्रेडिट, इनकम इश्यूज के लिए लेट्स टॉक. बेस्ट रेट्स, बेस्ट सर्विस एंड बेस्ट मॉर्गेज प्रोफेशनल सनी जोशी. 6478631940, 6478631940.
2: सुनो, आज मेरे भाई की फ्लाइट है इंडिया से.
3: अच्छी, याद है. अच्छा, उसको कहना कि आते हुए एक प्लेट छोले भटूरे पैक करा के ले आए इंडिया से.
2: अजी, इंडिया जैसे स्वाद वाले छोले भटूरे खाने के लिए इंडिया के सपने ना लो, सीधा choleBhature.ca पे चलो.
4: choleBhature.ca, बेस्ट पंजाबी रेस्टोरेंट इन ब्रैम्पटन. छोले भटूरे, पतीले वाले मटर कुलचे, पाव भाजी, अमृतसरी कुलचे और भी कई डिलीशियस ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल फूड के लिए पहुँचे choleBhature.ca. कॉल 9054582448.
0: सर्विंग फ्रॉम 4 डाइन इन लोकेशंस, 2 इन ब्रैम्पटन, 1 इन मिसागा and won by Vaughan Mills.
5: क्रेडिट कार्ड, जीएसटी या कर्जों की समस्या, हम दिलवा सकते हैं 80% कर्जों से माफी और फीस लेंगे अप्रूवल के बाद. क्रेडिट बिल्डिंग में भी करेंगे मदद. सर्विंग यू फ्रॉम 4 लोकेशंस ऑल अक्रॉस जीटीए. ऑल डेट सॉल्यूशंस, मोहम्मद सिद्दीक, 4166710577, 4166710577, alldebtsolutions.ca.
1: ये वो टाइम ऑफ द ईयर है जिसका आप वेट कर रहे थे. Demonstrator event at Don Valley North Lexus, May 16th tak. Lease rates as low as 2.9% up to 24 months. Select demo vehicles per savings up to $4,989 included. Best selection ke liye Don Valley North Lexus, jaldi visit kare. Jaldi kare. Offer ends May 16th. Visit DonValleyNorthLexus.com today. A proud member of Wayne's Auto Group.
6: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
7: जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना. वाकई जिंदगी बहुत ही सुहाना सफर है और कल क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता. एक सुझाव मैं आपको देता हूँ कि किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस के लिए, जैसे ऑटो, होम, लाइफ एंड कमर्शियल इंश्योरेंस, एक भरोसेमंद नाम पूजा गुप्ता जी को कॉल करें. 6476280040, 6476280040.

0: इमिग्रेशन
1: कम्युनिटी का जाना बचाना और भरोसेमंद नाम मनन गुप्ता आपके लिए लाए हैं कैनेडियन इमिग्रेशन की प्रोफेशनल सर्विसेज। कॉल मनन गुप्ता 416-451-0040, दैट इज 416-451-0040, और विजिट स्काई लेक

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर। और स्काईलेक इमिग्रेशन से मनन गुप्ता जी हमारे साथ हैं, एज ऑलवेज मंडे के दिन 12:45 होते हैं, और एंड में आपको इमिग्रेशन की अपडेट आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले लोकल प्रोविंशियल फेडरल जो कुछ बहुत अहम चीज़ें टॉपिक्स जो हैं उसको लेकर मनन जी से कुछ टिप्पणी भी लेंगे, कुछ उनके विचार भी आप तक पहुंचाएंगे। कोई दोस्तों आपका सवाल होता है 416-593-0055 स्टूडियो के नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, मनन जी को डायरेक्टली पूछ सकते हैं सवाल। मनन जी आपका स्वागत है।
1: थैंक यू वेरी मच सनी जी फॉर हैविंग मी, और प्रोग्राम सुन रहे सभी लिसनर्स और परिवारों को बहुत प्यार भरी नमस्कार, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, नमस्कार, थैंक यू सो मच
0: जी। आपको भी गुड आफ्टरनून, और लेट्स गेट डाउन टू रियल बिजनेस। और मनन जी, मेजर सिक्योरिटी लैप्सेस और ऑर्गेनाइज क्राइम फाउंड ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन एट टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट, व्हाट क्या कहानी है इसके पीछे?
1: ये हाल ही में ऐसा हो रहा है सनी जी कि पिछले हफ्ते से ये खबर काफी फ्लैश कर रही है, और ये इसी के लिए हमने ये चर्चा अपने आज के सेगमेंट में इंक्लूड किया है, क्योंकि दिस लाइकली इज एन ऑन गोइंग थिंग। और जब कनाडा का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इस तरह के मेजर सिक्योरिटी लैप्सेज हो, ऑर्गेनाइज क्राइम ने अपनी गिरफ्त में लिया हो, तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि हाउ सेफ और हाउ अनसेफ वी आर। सीटीवी की जो W5 इन्वेस्टिगेशन टीम है उसने रिवील किया है ये सारा ऑर्गेनाइज क्राइम, खासकर के जो बैगेज हैंडलर्स जो रैंप वर्कर्स होते हैं वो क्या करते थे कि आपके लगेज के टैग्स को हटाकर, आपने यहां से दिल्ली का सफर करना है, आपने बिल्कुल सेफली सिक्योरली अपना लगेज फॉर एग्जांपल यू नो जमा कराया, लेकिन ये नहीं पता कि वो जब बैगेज हैंडलर्स ने जब आपका सामान बिहाइंड द सीन देखना है तो उसका लगेज टैग चेंज कर देना है, आपके सामान की जगह उसमें ऐसा यू नो जॉनसन सूटकेस के साथ लगा देना है जिसमें अनवांटेड इलीगल ड्रग्स हो या इस तरह की यू नो गोरख धंधे वाली जॉनसी जो मटेरियल होता है। सो बहुत सारे कैनेडियंस को अपनी छुट्टियां यू नो बेकार करनी पड़ी जब वो इन देशों में पहुंचे, चाहे वो फिलीपींस था, चाहे वो कैरेबियन था, चाहे वो जर्मनी था, जहां पर जाकर उन्होंने देखा कि उनके लगेज की जगह किसी और सूटकेस के ऊपर उनका नाम का टैग लगा हुआ है, और फिर जब उनको सारी चीजें समझ आई इट वॉज टू लेट। सो ये सारा सिलसिला इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये जॉनसन सिक्योरिटी क्लियरेंस है कुछ एक ऐसे लोगों को मिल चुकी है जिनका क्रिमिनल नेक्सस है, क्रिमिनल नेटवर्क के साथ उनका यू नो बहुत ही यू नो खास संबंध है। सो वी जस्ट होप कि इस तरह की जॉनसी अब्यूज हो रहे हैं, जो लैप्सेस हो रहे हैं सिक्योरिटी में, वो जल्दी से जल्दी बंद हो, क्योंकि ना सिर्फ लगेज टैग्स का मामला है, कल को भगवान ना करे कोई एक्सप्लोजिव मटीरियल अगर इन जहाजों में लगेज के जरिए चला जाए तो फिर लेने के देने पड़ सकते हैं। वी स्टिल आर यू नो हॉन्टेड बाय व्हाट हैपेंड विद कनिष्का 41 years ago।
0: Absolutely. मनन जी, ओंटारियो ने बैन किया है गवर्नमेंट यूज ऑफ चाइनीज मेड ड्रोन्स। ये सेकंड टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस करना है। साथ ही साथ हमारे एक लिसनर का मैसेज आया है कि भैया टिकटॉक को कब बैन किया जाएगा, मनन जी ये भी बता दें।
1: देखिए कई चीजें सिर्फ नाम को ही होती हैं कि बैन कर दो, और जो लोग उसको खुलासा करते हैं, जो फोटो ऑफ हेडलाइंस देते हैं पॉलिटिशियन, वो खुद ही उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो टिकटॉक की तो वही कहानी है। लेकिन जहां तक चाइनीज मेड ड्रोन्स की बात है, पिछले दिनों ओंटारियो सरकार और OPP ने ये ऐलान किया है कि वो फ्यूचर में किसी भी तरह की प्रोक्योरमेंट या चाइनीज मेड जो उनसे ड्रोन्स हैं उसको बैन करेंगे। देखिए सिर्फ ड्रोन्स को बैन करने से अगर हालात सुधर जाएं तो वी जस्ट होप कि ऐसा हो, लेकिन हर चीज तो चाइना से बनकर आ रही है। आप जिस स्टूडियो में बैठे हैं सनी जी, उसका मैक्सिमम इक्विपमेंट चाइना से बनकर आया हुआ है। मेरे हाथ में इस वक्त सेलफोन है, ये भी मेड इन चाइना है, राइट? हमारे कंप्यूटर्स हैं, हमारे लैपटॉप्स हैं, हमारे घरों के अंदर सर्वेलेंस कैमराज लगे हुए हैं, बहुत कुछ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अनफॉर्चुनेटली इज मेड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। सो किस किस चीज को रोकेंगे, और आने वाले दिनों में तो 45,000 से ज्यादा चाइनीज मेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी वहां से बनकर आ रही हैं। सो ये मुझे समझ नहीं लग रहा कि इस अनाउंसमेंट से क्या होगा, हमारे पास ऑल्टरनेट क्या है? ओंटारियो में तो कोई ड्रोन्स बन नहीं रहे इस वक्त फिलहाल की घड़ी, आने वाले कुछ महीनों सालों में बनने शुरू हो जाए तो उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। वी नीड टू पुट आवर एनफोर्समेंट मच मोर स्ट्रिक्टर, ताकि किसी भी तरह की डाटा इन्फ्रिंजमेंट है उसको हम रोकने में सफल और काबिल हो सकें।
0: जी, फीफा वर्ल्ड कप होस्टिंग टू कॉस्ट टैक्सपेयर्स $1 बिलियन, ये पिछले वीकेंड से पहले मतलब ऑन फ्राइडे आई थिंक मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था, एंड बट आई थिंक पीपल फेल टू अंडरस्टैंड और गवर्नमेंट्स आर नॉट एक्सप्लेनिंग इन अ प्रॉपर वे कि ये तीनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में ये पैसा जो है टैक्सपेयर को कॉस्ट करेगा। हाउ आर यू लुकिंग एट दिस एंटायर न्यूज?
1: देखिए, ये एक ओवरऑल जो पार्लियामेंट्री बजट ऑफिसर है उन्होंने ये एस्टीमेट दिया है कि तकरीबन $1 बिलियन से ज्यादा टैक्स पेयर्स का खर्चा फीफा के जो 13 मैचेस कनाडा को एलोकेट हुए हैं उसके ऊपर खर्च होने हैं, जिसमें 6 मैचेस टोरंटो में होने हैं, 7 मैचेस वैंकूवर में। ये तो अभी एक अंदाजा है और आई एम प्रिटी श्योर लुकिंग एट द पास्ट ट्रेंड्स ये खर्चा इससे भी ज्यादा होएगा। सो जो ये खर्चा है वो ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज $82 मिलियन पर गेम पड़ रहा है, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट का शेयर तकरीबन $470 मिलियन है, बाकी जो सी प्रोविंशियल सरकारें और म्यूनसिपैलिटीज खर्चा करें। देखिए, खर्चा करना अलग बात है, लेकिन वी हैव टू लुक एट कि हमें उससे रिटर्न और वैल्यू फॉर मनी क्या मिल रही है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, क्या वो हमारे उन सारे जौन से इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार होगा, क्या वो आने वाले प्लेयर्स को मोटिवेट करेगा, ट्रेनिंग के लिए एनकरेज करेगा, तो ये सारी चीजें देखने वाली हैं। और साथ ही साथ ये भी है कि जो लैप्सेस होंगे इस सारे तामझाम के दौरान, क्या उसका भी खुलासा हमारी फेडरल प्रोविंशियल और म्यूनिसिपल सरकारें करेंगी, कितने लोग आए टूरिस्ट बनकर, कितने लोग यहीं पर रह गए जवाई बनकर, ये सारी चीजें भी अपने आप में बहुत बड़ा एक सवाल या निशान है। जी
0: बिल्कुल। मनन जी, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ने रिजेक्ट कर दिया है एग्जाम के रिजल्ट को ओवर AI चीटिंग एलिगेशन। क्या कहानी है एग्जैक्टली ये?
1: ये कहानी सनी जी बड़ी आजकल कॉमन होती जा रही है, क्योंकि जो ये हमारे टूल्स हैं, यू नो, चैट GPT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, ये नो डाउट बच्चों को पढ़ाई के में तो काफ़ी ज़्यादा सहयोग देते हैं, उनको बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन जब इन्हीं टूल्स का इस्तेमाल अगर आप एग्ज़ाम के दौरान करें, जब आपकी यू नो प्रोफिशंसी चेक हो रही है, आपके कंपटीशन में आप बैठे हैं, तो फिर उसका खमियाजा आम लोगों को भी पहुंचता है। तो उसी तरह का इंसिडेंट वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, जो कि कनाडा की बहुत ही नामी यूनिवर्सिटी है, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी इन लंदन ओंटारियो, वहाँ के एसोसिएट प्रोफेसर जैकब शैली ने अपने तकरीबन 290 स्टूडेंट्स के जो हेल्थ केयर लॉ कोर्स कर रहे थे उसमें उन्होंने पाया कि जब एग्जाम उन्होंने दिए उसमें वाइड स्प्रेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूज की गई थी और सारे के सारे ऑलमोस्ट रिजल्ट आंसर्स मिलते जुलते थे। तो उन्होंने उसको फिलहाल ऑन होल्ड डाल दिया है और उनके फाइनल एग्जाम के जौन से रिजल्ट ग्रेड्स हैं उसको जारी करने से मना कर दिया, क्योंकि डेफिनेटली एज अ एथिकल प्रोफेसर, एज अ टीचर, उनका फर्ज यही बनता था कि वो इस चीज की इंटेग्रिटी को बनाए रखें। एंड वी होप कि इस तरह के स्ट्रिक्ट एक्शंस और यूनिवर्सिटीज और हमारे कॉलेजेस और स्कूल सिस्टम में भी जरूर होंगे, ताकि जो भी हमारे फ्यूचर कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रोफेशनल्स आगे बनना है, वो अब भी अच्छा काम करें, अपना अच्छा कंडक्ट रखें और आने वाले समय में भी वो बढ़िया प्रोफेशनल कंडक्ट की तरफ ही बढ़ सकें।
0: बिल्कुल। एंड ओंटारियोस क्रैकिंग डाउन ऑन इलीगल ट्रक यार्ड्स एंड पार्किंग लॉट्स, मनन जी, ये भी काफी टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है।
1: बिल्कुल, देखिए, ये इलीगल ट्रक यार्ड, इलीगल पार्किंग की जौन सी समस्या थी सनी जी, ये खास करके जो रूरल कम्युनिटीज हैं, रूरल म्यूनसिपैलिटीज हैं, खास करके GTA में, पी रीजन में बात करें तो जो टाउन ऑफ कैलेडन है उसको बहुत ज्यादा फेस करना पड़ रहा था, जिसमें बड़ी गिनती में इलीगल जौन से ट्रकिंग कंपनीज ने इलीगल यूज ऑफ लैंड जोनिंग की हुई थी। लैंड जोन किसी और पर्पज के लिए है, लेकिन वहां पर ट्रक्स को पार्क किया जा रहा था, वहां पर उनकी रिपेयर की जा रही थी और म्यूनसिपैलिटीज के पास ज्यादा टूल्स नहीं थे टू एनफोर्स देम। वो सिर्फ कोर्ट में केस फाइल कर देते थे, फिर वो सालों साल केस चलते थे और फाइन्स बड़े लिमिटेड होते थे। लेकिन अब फाइनली ओंटारियो सरकार ने इस सारी समस्या को दूर करने के लिए म्यूनसिपैलिटीज को एडमिनिस्ट्रेटिव मॉनिटरी पेनल्टी, जिसे हम AMPs कहते हैं, वो जारी करने का उनको फैसला कर दिया है। दे कैन यूज दोस, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यू नो कंप्लायंस की तरफ बढ़ें और म्यूनसिपैलिटीज को अपना कीमती समय और टैक्स डॉलर्स अदालती कार्रवाई में कम स्पेंड करनी पड़ेगी। तो देखते हैं कि कैलेडन में किस तरह का इसे रिलीफ आता है, बट डेफिनेटली इट्स अ वेलकमिंग न्यूज।
0: जी मनन जी, क्रिकेट कनाडा का केओस जो है वो और भी ज्यादा एस्केलेट हो गया है आफ्टर दिस लास्ट वीक की जो सरी में शूटिंग हुई है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं?
1: देखिए बहुत ही चिंता वाली बात है, बहुत ही इट्स अलार्मिंग ट्रेंड कि क्रिकेट कनाडा, जो कनाडा की टॉप मोस्ट गवर्निंग बॉडी है, जिसको पिछले दिनों पहले तो ऑलरेडी आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने सिर्फ 6 महीने का समय दिया था कि आप अपनी गवर्नेंस इश्यूज को सॉल्व कर लो, नहीं तो हमने आपको परमानेंटली सस्पेंड कर देना है, वी विल नॉट रिकोगनाइज यू एट ऑल। अब वो खबर की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी, तो अब और खबरें आ रही हैं कि क्रिकेट कनाडा के न्यूली मिंटेड प्रेजिडेंट अरविंदर खोसा, जो सरी बीसी में रहते हैं, उनके घर के बाहर एक बार फिर गोलियां चली हैं। इससे पहले भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कैलगरी एरिया में रहते थे, उनके घर के ऊपर इस तरह की एक्सटॉर्शन रिलेटेड धमकियां और फायरिंग हुई है। सो ये सिलसिला क्यों हो रहा है, ये इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है क्रिकेट कनाडा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को कि उनका संबंध कैसे कैसे इलीगल क्रिमिनल गैंग्स के साथ है, किस तरह की उनके गोरख धंधा वो करते आ रहे हैं। वो डेफिनेटली क्रिकेट के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। बहुत ही सालों बाद क्रिकेट को उसका बनता मान सम्मान मिलना शुरू हुआ था कनाडा में, लेकिन साथ ही साथ इस तरह की जब एक्सटॉर्शन, करप्शन और मिस गवर्नेंस की बात आती है, तो डेफिनेटली इट्स नॉट अ हेल्दी साइन।
0: जी, एंड आज सुबह सुबह जो खबर आई है, कैरोलाइन मलरूनी जो है रिजाइन कर रही है फ्रॉम फोर्ब्स कैबिनेट, विल आल्सो स्टेप डाउन एज एमपीपी नेक्स्ट।

0: प्रधानमंत्री रहे हैं 9-10 साल, और उसके बाद जॉनसन उनकी पॉलिटिकल लेगेसी है, खास करके ओंटारियो में उनकी डॉटर कैरोलाइन मल्रूनी 2018 से आगे लेकर जा रहे थे, जब से वो यॉर्क सिमको से मेंबर ऑफ प्रोविंशियल पार्लियामेंट बने, और लगातार उन्होंने पिछले 8-9 साल में जो प्रीमियर डग फोर्ड की कैबिनेट में बड़े इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज को संभाला और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई उन्होंने, मिनिस्टर ऑफ अटॉर्नी जनरल रहे, मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और करंटली सी वॉज दी ट्रेजरी बोर्ड के प्रेजिडेंट थे, साथ ही साथ मिनिस्टर ऑफ फ्रेंकोफोन अफेयर्स. उन्होंने आज सोशल मीडिया पर अनाउंस किया है कि शी इज स्टेपिंग बैक, शी वॉन्ट्स टू गेट बैक टू यू नो हर ओन लिटल स्फीयर ऑफ थिंग्स. उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स को फिलहाल टाटा बाय बाय कहा है, बट आई डोंट नो वेदर इट्स अ टेम्परेरी बाय बाय और अ परमानेंट बाय बाय, क्योंकि पॉलिटिक्स में कभी भी कोई परमानेंट संन्यास नहीं लेता, इट्स ऑलवेज अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस. लेकिन द थिंग इज उन्होंने अपने फादर की डेथ का रेफरेंस दिया जो 2 साल पहले यू नो हु पास्ड अवे, ब्रायन मल्रूनी, और साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी जिक्र किया कि पिछले साल से वो एम्प्टी नेस्टर्स हो गए हैं, यानी कि उनके बच्चे अब पढ़ाई की तरफ बिजी हो गए हैं, यूनिवर्सिटीज में चले गए हैं, सो शी वॉन्ट्स टू गेट बैक टू द बेसिक्स ऑफ हर रेस्ट ऑफ हर लाइफ. सो देखते हैं कि कैरोलाइन मल्रूनी का आगे वाला सफर किस तरह का होगा, बट हैविंग मेट हर, हैविंग स्पोकन टू हर सो मेनी टाइम्स व्हेन शी वॉज मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एक बात तो जरूर है कि शी वॉज वेरी पर्टिकुलर ऑन हर सब्जेक्ट मैटर, शी वॉज वेरी प्रेजेंटेबल एंड वेरी लाइकेबल, नॉट ओनली इन हर ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी बट इन एंटायर ओंटारियो. जी,
1: प्लस पॉलिटिशियन नेवर से नेवर वाली बात होती है, नेवर से नेवर कुड रिटर्न एट एनी पॉइंट. मनन जी, ये सुबह को जो खबर आई थी, ये तो अर्ली मॉर्निंग आपने मुझे भेजी थी खबर की पील पुलिस ने 17 लोगों को सस्पेक्ट को अरेस्ट किया है फॉर आफ्टर स्ट्रिंग ऑफ वायलेंट एक्सटॉर्शन टारगेटिंग हमारी साउथ एशियन बिजनेस ओनर्स की जो कम्युनिटी है, एंड सारे के सारे जो नाम आपने भेजे थे, आई वॉज लुकिंग एट दैम, द एज एंड द नेम्स, बड़ी अफसोस की बात है. हाउ डू दीज पीपल इवन मेक इन यू नो मेक इन टू द कंट्री, ये कहाँ से आते हैं, किस तरह से इनको परमिशंस मिल जाती हैं, एंड यू नो द रेस्ट इज ऑल हिस्ट्री राइट नाउ. इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें.
0: बिल्कुल जी, रोशनी कितनी डालें कितनी ना डालें, ये एक बड़ी नामोशी वाली डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि नो डाउट पिछले 1.5-2 सालों से साउथ एशियन कम्युनिटी के जो बिजनेसेस हैं, प्रोमिनेंट फैमिलीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा जोखिम भरे अंदाज में अपना काम करना पड़ रहा था, क्योंकि रेस्टोरेंट से लेकर ट्रकिंग कंपनीज तक, बड़े बड़े वकीलों से लेकर एजुकेशनिस्ट तक, और मीडिया से संबंधित लोगों से लेकर आम ज्वेलर्स तक, यू नो ये सारी जो सारी कौन सी बिजनेस कम्युनिटी है, दे वर लिविंग अंडर द शैडो ऑफ फेयर. उसका कारण ये था सनी जी कि बहुत सारी एक्सटॉर्शन और एक्सटॉर्शन के बाद धमकियां, वायलेंस, और इन घरों में इन बिजनेसेस के ऊपर गोलीबारी, यू नो शूटिंग इंसिडेंट्स लगातार बढ़ रहे थे. इसीलिए ब्रैम्पटन से लेकर सरी तक, लाइक फ्रॉम कोस्ट टू कोस्ट टू कोस्ट, इंक्लूडिंग कैलगरी, अल्बर्टा, इन सब शहरों में बहुत सारे इस तरह की वायलेंट इंसिडेंट्स का इजाफा दिख रहा था, जो कि बहुत बड़ी चिंता का कारण बनता जा रहा था इन अ पीसफुल कंट्री लाइक कैनेडा. सो फाइनली अब पता चला है कि पील पुलिस ने और इनके साथ ओपीपी, एसबीआई, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फिनट्रैक, और साथ ही साथ सीबीएसई ने मिलकर एक ज्वाइंट फोर्सेज ऑपरेशन कमेंस किया था दिसंबर 2025 में, यानी कि 8 से 6 महीने पहले, और उसी के चलते हुए तकरीबन 17 इंडिविजुअल्स हैव बीन अरेस्टेड एंड चार्ज, और इनमें से ज्यादा जो संबंध है वो बताया जा रहा है कि एक इंटरनेशनल क्रिमिनल नेटवर्क जिसको फॉर ब्रदर्स कहा जाता है, उसके साथ ये जुड़े हुए थे. सो इनका संबंध कनाडा और अमेरिका के क्रिमिनल गैंग्स के साथ था, और जैसा कि आपने इशारा किया है कि इन 17 में से ऑल ऑफ देम इनफैक्ट आर ऑफ साउथ एशियन डिसेंट, मोस्टली पंजाबी नाम है, और 17 में से 12 जाने ब्रैम्पटन के रहने वाले हैं, और इसके साथ साथ 2 जाने सरी के हैं, 1 जाना नॉर्वल यू नो पील रीजन का है, और 1 है मैंटेका यू नो कैलिफोर्निया का. सो आप इमेजिन कीजिए कि इनकी उम्र 21 साल से लेकर तकरीबन 30 साल की रेंज में आती है. अगर नामों का अगर मैं खुलासा करूँ, इकबाल सिंह भगड़िया, आकाशदीप सिंह, जशनबीर सिंह, रविंदर सिंह, दिलावलप्रीत सिंह, मनदीप सिंह, प्रतापवीर घुम्मन, प्रभदीप सोहल, अजयदीप सिंह, नवरूप सिंह, अमृतजोत सिंह, राजन सिंह, जशनप्रीत सिंह, गुनीत, सुखविंदर सिंह, मोहिंदर सिंह एंड गौतम, ये सारे नाम हैं. ये सारे उन वीआईपीज के नाम हैं कि जो लगातार लोगों को आतंक के घेरे में लगातार यू नो संलिप्त होते जा रहे थे, और फाइनली पील पुलिस के हाथ ये लगे हैं. और पील पुलिस ने ये भी बताया कि इनमें से 6-7 लोगों के ऊपर इमिग्रेशन रिलेटेड चार्जेस भी हैं, दे माइट बी डिपोर्टेड वंस उनके क्रिमिनल चार्जेस खत्म होंगे. कुछ एक लोगों को सीबीएसए ने अरेस्ट किया फॉर इनएडमिसिबिलिटी पर्पजेज. सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मोस्ट लाइकली दे मोस्ट ऑफ देम, मेजोरिटी ऑफ देम वर फॉरन नेशनल्स, दे वर हेयर ऑन टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट, चाहे वो स्टडी के ऊपर आए हों या वर्क परमिट के ऊपर आए हों, बट यहाँ पर आकर जो उन्होंने

0: गोरख धंधा शुरू किया, जो लोगों को टेरराइज करना शुरू किया, उसका आले बयां हम पिछले काफ़ी महीनों से करते आ रहे हैं। जी
1: बिल्कुल जी, ये लोगों ने जो कम्युनिटी को नाम दिया है उसके, मतलब वी वर नोन फॉर द हार्डेस्ट वर्किंग कम्युनिटी, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, ऑनेस्टी के लिए जाने जाते थे, और अनफॉर्चुनेटली दिस इज व्हाट वी हैव बीन टॉक्ड अबाउट नाउ। एक कॉलर है, क्विकली उन्हें लेते हैं, फिर इमिग्रेशन की अपडेट मनन जी से लेते हैं। आप अपना सवाल क्विकली पूछें प्लीज।
2: जी आप कैसे हैं, आप ठीक हैं?
1: जी जी ठीक है, आप सुनाइए।
2: अच्छा, सवाल ये है कि ये जो फीफा जो हो रहा है इसके बारे में कह रहे हैं इतने डॉलर खर्च हो जाएंगे और उसका बेनिफिट आप ढूंढ रहे हो। तो भाई बेनिफिट बेनिफिट मत ढूंढो।
1: आपका सवाल क्या है?
2: सवाल मेरा यही है कि बेनिफिट ढूंढना होता है पहले, बाद में नहीं ढूंढना होता। पहले ये बना के जब प्रपोजल दे रहे हैं ना, इतना बिलियन खर्च होने वाला है
1: जी,
2: तो उसके साथ ये भी बताओ कि इसका बेनिफिट ये होगा। अगर बेनिफिट नहीं होगा तो फिर नहीं करो।
1: ठीक है मनन जी, इसका सवाल का जवाब देते हैं, बिकॉज आई डिडंट रियली सी अ क्वेश्चन, बिकॉज विद द क्वेश्चन यू ऑलरेडी हैड एन आंसर। और मेरी ऑलवेज रिक्वेस्ट होती है कि जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो सिर्फ क्वेश्चन पूछे ताकि मनन जी हैज एम्पल टाइम टू आंसर। मनन जी, इसका अगर आप जवाब देना चाहें और इमिग्रेशन की लेटेस्ट अपडेट एज वेल।
0: देखिए, आपके मन के बुलबुले हैं, आप उनको जरूर फोड़ा करें इस प्रोग्राम पर आकर, लेकिन प्लीज मेक श्योर कि आपका जौन सा आपके सेंटिमेंट्स हैं वो क्वेश्चन की शेप में हो। ये अब फीफा को रिलेटेड जो सरकार ने खर्चा किया, ये आज का अनाउंस नहीं किया, ये आज से 4-5-6 साल पहले का अनाउंस किया जब ये बिड्स भेजी गई। लेकिन हमारा क्वेश्चन न्यूज को शेयर करने का पर्पस ये है कि ये बढ़कर खर्चा $1 बिलियन तक हो गया है, राइट? सो $1 बिलियन तक ये जब ये खर्चा हो गया है तो इसकी आउटपुट क्या होगी, इसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगी? फाइनली सनी जी, क्वेश्चन रिलेटेड टू इमिग्रेशन, वेट कर रहे हैं कि काफी सारे जौन से हमारे के ड्रॉज जो पेंडिंग है, April 29 के बाद कोई भी ड्रॉ नहीं आया है सिवाय प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। सो वी आर होपिंग कि इस हफ्ते सरकार की तरफ से, IRCC की तरफ से कुछ ना कुछ मैजिक नंबर्स रिलीज किए जाएंगे ताकि जो लोग वेट कर रहे हैं परमानेंट रेजिडेंट बनने की, उनका सपना साकार हो सके। और लिसनर्स के लिए बता दें कि आपको किसी भी तरह की लीगल, एथिकल एंड प्रोफेशनल इमिग्रेशन सलाह चाहिए तो प्लीज गिव अस अ कॉल एट स्काईलाइक इमिग्रेशन, 416-451-0040 इज द बेस्ट नंबर टू रीच अस। सनी जी बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बार फिर से मनन जी का नंबर दे दूं दोस्तों, कोई भी आपको क्वेश्चन होता है इन रिगार्ड्स टू द टॉपिक्स पर्टेनिंग टू द टॉपिक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, एंड साथ ही साथ इमिग्रेशन का कोई भी सवाल, इमिग्रेशन का आपका केस है एंड आपने No.1 कंपनी के थ्रू अपने केस को फाइल करना है, दैट इज स्काई लेक इमिग्रेशन, मनन गुप्ता जी एंड हिज टीम, 416-451-0040, 416-451-0040। बहुत बहुत शुक्रिया मनन जी।
0: थैंक यू सो मच। थैंक यू
1: जी। और मनन जी की तरफ से ये प्यारा सा गीत, ये जवानी है दीवानी, किशोर कुमार साहब की आवाज में, ब्रॉट यू बाई डॉन वैली नॉर्थ हांडे। डॉन वैली नॉर्थ हांडे दे रहे हैं फीफा की टिकट्स। इट्स अ बैलेट जो कि ड्रॉ किया जाएगा जून में, ऑफर एंड होता है इस महीने के एंड में, मतलब 31st में। इफ यू बाई एनी हांडे फ्रॉम डॉन वैली नॉर्थ हांडे, दो नेम दो टिकट्स के लिए विल बी पुट इन फॉर अ लकी ड्रॉ। अगर आप विंटर टायर्स बाय करते हैं स्टोरेज के साथ, वन नेम फॉर वन टिकट, एंड एनी एक्सटेंडेड वारंटी परचेज अगेन, वन नेम फॉर वन टिकट विल बी in for the lucky draw. Don Valley North Hyundai, 7537 Woodbine Avenue in Markham. Yaad rakhein, Don Valley North Hyundai. Clear Optical by Varun Kanda, Brampton, Georgetown. Do locations se serve karte hain. Enjoy the beautiful song. Aate hain wapas.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940, 6478631940.
1: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं. For everything automotive, चाहे हो daily commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group, हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates, जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care, Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें, waynesautogroup.com.
2: Hi Anju, कैसी हो? How's your son doing?
3: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है. आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल.
2: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल.
4: शी इज राइट, चाहे बच्चे हो या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे. ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज. विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव ब्रैम्पटन, 9054573232. Clear Optical by Varun Kanda.
5: ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲਈ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫਰਸਟ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਮੌਰਗੇਜ, ਪਰਚੇਸ ਔਰ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਡਸ? ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ,
6: ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨੀਲਮ ਸਿਧੂਵ ਕੋਲ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਵਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ.
5: ਇਹ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੈਸਟ ਰੇਟਸ, ਇੰਪੇਅਰਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਹੈ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ.
6: ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ ਏਬੀ ਐਂਡ ਟ੍ਰਸਟਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਰਸ.
5: ਯੂ ਸ਼ੌਪ ਅਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਨੀਲਮ.
6: ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਨੀਲਮ ਸਿਧੂਵ ਨੂੰ
5: 6547 7397 8710, license number M200034504.
7: Hi, I'm Realtor Sikhi. Je tusi ghar bechan ja khareedan bare soch rahe ho, ta ik var mainu phone zarur karo. Main tuhanu professional advice deke tuhada ghar list karangi sirf $1,000 vich. Ji haan, bilkul theek sunya. Only $4,000. No hidden fees, no surprises. Call me at 647-408-7066. That is 647-408-7066. Just remember, you say sell and I say sold.
8: He's breaking through the midfield.
9: Don Valley North Hyundai aapko de raha hai mauka FIFA World Cup 2026 ke tickets jeetne ka. Koi bhi vehicle biker ke ghar le jaye aur paye double entries. Winter tires ya extended warranty le aur har ek ke saath paye ek extra entry. Aaj drive kare, kal jeete. Visit donvalleynorthhyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
0: काव्या होम्यो केयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस, हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है. काव्या होम्यो केयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर. 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 6477602779, 6477602779.

0: Lifetime. Learn to earn at Win Lifetime. Call 905-206-1008.
1: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है एंड विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग से मोहम्मद साहब हमारे साथ हैं. एंड याद रखें, फ्री सेमिनार सैटरडे को होता है 12:30 to 3:30. दैट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन टू गो. फ्री सेमिनार है, कोई चार्ज नहीं है. आप अपनी सीट रिजर्व करवाएं, चाहे आप अकेले जा रहे हैं या अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, स्पाउस के साथ जा रहे हैं, एंड गो एंड चेक इट आउट. 905-206-1008 मिसागा में इनका ऑफिस लोकेटेड है. विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग, मोहम्मद साहब आपका स्वागत है.
2: थैंक यू सो मच सनी जी. हमारे सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से और विन लाइफ टाइम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो एंड गुड आफ्टरनून
1: जी आपको भी. एंड मोहम्मद साहब, आज क्या दिमाग में आपके आ रहा है? क्या इतने सालों से विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग के जरिए You've helped people earn $2,000 to $6,000 महीने का, वो भी US. आपके दिमाग में आज क्या आ रहा है? What is it that you want people, खासकर the times that we are going through right now?
2: बिल्कुल सनी जी, देखें अभी जैसे हालात आगे आ रहे हैं तो I'm seeing like a chaos. देखें अभी लोगों की mortgages भी नहीं पे हो रही हैं और हालात आगे से और worse आ रहे हैं. तो क्यों ना हम एक ऐसा स्किल ले लें जो पिछले 18 साल से हम एक सेम लोकेशन से अपनी कम्युनिटी को दे रहे हैं, और वो ये है कि एक ऐसा स्किल के जो भले मार्केट नीचे जाए भले मार्केट ऊपर जाए, 100% रिसेशन प्रूफ जो बिजनेस है वो है ऑनलाइन ट्रेडिंग का. और मोस्टली लोग इसमें पैसा लूज करते हैं सिर्फ इस वजह से कि उनके पास प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म नहीं है, प्रॉपर एक नॉलेज नहीं है. और दूसरा ये है कि वो डरे होते हैं कि हम इसमें पैसा ना लूज कर दें. देखिए ये जो डर होता है ना, ये इसका रीजन सिर्फ एक चीज है, और वो क्या है कि नॉट नोइंग व्हाट विल हैपन टू यू. अगर आपके पास ये नॉलेज हो, आपके पास ये पूरे का पूरा सेटअप हो, एक एनवायरमेंट में आप बैठे हो, कि देखें आज सुबह हमारी 8:30 पे लोग डन हो गए थे. और हर रोज ऐसा ही होता है. अच्छा, काफी लोग मुझे कॉल करके कहते हैं कि जी ये जो 100 to $300, अच्छा ये मिनिमम है. ये बाय द वे मैं बता, लोग 15,000-20,000 US महीने का बनाते हैं. ये एक नॉर्मल सी बात है. अभी लोग ये सुनते हैं जब, तो कहते हैं हाउ इट पॉसिबल कि मैं 14 घंटे या 10 घंटे या 8 घंटे काम करने के बाद भी मेरे पास महीने में 5,000-7,000 नहीं आता, तो ये कैसे बनाते हैं? बिलीव मी, ये मेरा चैलेंज है कि लर्न द पावर ऑफ 90 मिनट. इसका मतलब है कि सिर्फ हमने 90 मिनट कंप्यूटर के सामने बैठना है. आके देखें कैसे हाउसवाइफ्स घर से बैठ के जो बच्चों की टेक केयर कर रही हैं, सीनियर सिटीजन हैं, स्टूडेंट्स हैं, कि वो कैसे विद इन 10-20 मिनट. ये 90 मिनट की जो हमारी ये विंडो होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने पूरा 90 मिनट कंप्यूटर के सामने बैठना है. देखें अगर मैं सबसे कहता हूं कि अगर आपने कमाई चेंज करनी है ना, तो उसमें दो चीजें आप चेंज करें. एक उसका तरीका चेंज करें और दूसरा द वे यू थिंक उसको चेंज करना है. देखिए जिंदगी में हमारे पास हर वो चीज जो आती है ना, वो आती है हमारी पावर ऑफ हमारी थॉट से. अगर आप चीजों को डिफरेंट वे से सोचना चाहते हैं तो अपनी थॉट्स को आपने चेंज करना है. अगर आप अपनी रिजल्ट्स को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए अपनी सोच को बदलें. और डोंट वरी अबाउट फ्यूचर. यार मैं ये समझा के थक गया हूं कि हम लोग ना बैठ के फ्यूचर की वरी वो कर रहे होते हैं. वरी नहीं करना, फ्यूचर की प्रिपरेशन करनी, उसके लिए तैयारी करें. आए आके देखें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, यू हैव नथिंग टू लूज, अ लॉट टू गेन. आके सेमिनार अटेंड करें. आई बेट यू आप कहोगे कि यार ये हमने इतने साल क्यों वेस्ट किए हैं. आए आके देखें कि कैसे आप भी उस टीम का हिस्सा बन सकते हैं. देखिए दुनिया में कहीं पे बैठे हुए हैं, आपको फोन पे सिग्नल आ रहे हैं, आपको लाइव स्ट्रीमिंग आ रही है कि आपने क्या करना है. तो उसके लिए आपने क्या करना है, कॉल करके अपनी सीट बुक करें और आके एक दफा देखें तो सही कि ये क्या चीज है और कैसे आप हमारा पार्ट बन सकते हैं. तो कॉल करके अपनी सीट बुक करें एट 905-206-1008 और यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड.
1: बिल्कुल जी, 905-206-1008. मोहम्मद साहब ने जो कहना था कह दिया. अब बारी हमारी है. जिनके पास आप अगर अवेलेबल नहीं होते, कई बार ऐसा होता है कि आपकी अवेलेबिलिटी नहीं है, बट सैटरडे को आप इतना सा टाइम निकाल सकते हैं 12:30 to 3:30 के बीच में. आप अपनी सीट जो है रिजर्व करवाएं, कॉल करके कोई ऑब्लिगेशन नहीं है. ऑल द क्वेश्चंस दैट यू हैव इन माइंड इन रिगार्ड्स टू ट्रेडिंग विन लाइफटाइम ट्रेडिंग में उन्हीं क्वेश्चंस को आंसर किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आप भी एक फ्लेक्सिबल स्केड्यूल रखते हुए फुल कॉन्फिडेंस के साथ मिनिमम 2000 से 6000 डॉलर्स मंथली कमा सकते हैं, वो भी यूएस. चलिए 905-206-1008 नंबर है जिस पर आपने करना है कॉल. मोहम्मद साहब बहुत बहुत शुक्रिया.
3: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940 647-863-1940.
4: डॉन वैली नॉर्थ हंडे पे हो रही है जबरदस्त हंडे संडे की अल्टीमेट सेविंग सेल ऑन मई 24th. इन्वेंटोरी पर ह्यूज बोनस ऑफर्स. डील्स इतनी जबरदस्त की मिस नहीं कर सकते. संडे मई 24th को अपने कैलेंडर में मार्क कर लो. डॉन वैली नॉर्थ हंडे पर हमारी टीम बात करती है हिंदी, उर्दू, पंजाबी और तमिल में. विजिट करिए डॉन वैली नॉर्थ हंडे .com. Woodbine Ave और Denison Street, Markham पर.
5: Doing business your
4: way. Member of Wayne's Auto Group.
6: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
7: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165. Hum honge aapke
1: saath hamesha. बेस्ट साउथ एशियन क्लोथिंग के लिए एक ही स्टोर जहां पर आपको मिलेंगे एक छत तले बेस्ट फैशंस, बेस्ट स्टाइल्स एंड बेस्ट प्राइसेस. एशियंस पॉपुलर साउथ एशियन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल स्टोर नियर मार्कम रोड एंड लॉरेंस एवेन्यू इन स्कारब्रो, 3601 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट, यूनिट नंबर 23, स्कारब्रो. नोन फॉर देयर साड़ीज, लहंगा, सलवार सूट्स, ब्राइडल वेयर, मेन्स ट्रेडिशनल क्लोथिंग, ज्वेलरी एंड गिफ्ट आइटम्स. एशियंस 416-438-6568. East or West, Asians is the best.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940, 6478631940।
1: ये वो टाइम ऑफ द ईयर है जिसका आप वेट कर रहे थे। डेमोन्स्ट्रेटर इवेंट एट डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस May 16th तक। Lease rates as low as 2.9% up to 24 months. Select demo vehicles per savings up to $4,989 included. Best selection ke liye Don Valley North Lexus jaldi visit kare. Jaldi kare. Offer ends May 16th. Visit DonValleyNorthLexus.com today. A proud member of Vane's Auto Group.

0: रानी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं। ब्रैम्पटन क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर एंड एजैक्स क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है। 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रिमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। हर कदम हम आपके साथ। 30 ब्रैम्पटन कोर्ट इन ब्रैम्पटन, 905-458-2222 और लॉग ऑन टू bcbc.info और 384 Finley Ave in Ajax, 289-372-3330 और acvc.info।
3: अक्सर घर खरीदे में सिक्योरिटी हमारी आखिरी चॉइस होती है, ऐसा क्यों?
4: नया इलाका और नया घर, अक्सर इन घरों में ज्यादा चोरियां होती हैं। घर नया ले या पुराना, बिना सिक्योरिटी के अधूरा रहेगा आपका प्लान। फॉर कंप्लीट पीस ऑफ माइंड एंड प्रोफेशनल सिक्योरिटी एडवाइस, पॉल सहगल 416-940-0624, 416-940-0624 और विजिट paulsecurity.com। प्रिवेंशन इज सॉल्यूशन।
5: Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
6: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
5: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi and my favorite, samosa chaat and bhel.
7: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
2: This segment is brought to you by Clear Optical by Varun Karna, जो कि दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, Brampton and Georgetown. Exams के लिए doctors available 7 days a week, 905-457-3232. For name brand sunglasses, always remember Clear Optical by Varun Karna. The segment is also brought to you by Home Life Miracle के superstar realtors Sarabjit Gill, CP Chatwal for real estate buying, selling, investments. एक बार इनसे जरूर संपर्क करें, some amazing properties that they have in the range of 700,000 and 800,000 in Brampton, in GTA. Sarabjit Gill, CP Chatwal, 647-887-2707 ya 416-627-4737. And the segment is also brought to you by Rajdhani Sweets and Restaurant, jo ki 30-plus locations se serve karte hain 100% pure vegetarian food. Zabardast mithaiyon ka dusra naam, Rajdhani Sweets and Restaurant. McQueen Dental Care, Dr. Raj Gill, 9960 McQueen Drive, Unit 6 in Brampton. For all your dental needs, insurance ho ya na ho, McQueen Dental Care ke paas aapke liye special packages available hai. Talk to Sirat, 905-794-8883. Chahe braces lagwane hai, ya phir dentures, ya partial dentures, root canal cleaning, ya checkups, call McQueen Dental Care, 905-794-8883.
8: ये वो जगह है जहाँ हर धर्म को बराबर रखा जाता है, हमारी सद्भावनाओं का सम्मान किया जाता है और हमारी जनरेशन के लिए भी पुरानी कलाकृतियों को संभाला जाता है। ये है इंडिया सजावट एंड पूजा हट, धर्म, संस्कृति और कला का सुमेल। 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 905-458-6808।
9: You're listening to the Sunny Joshi Show on South Asian Unlimited Radio, CMR 101.3 FM.

वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। बाहर का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस, फील्स लाइक 23। मैक्सिमम टेम्परेचर्स विल हिट अबाउट 21 टुडे एंड इट विल फील लाइक अबाउट 24 25 डिग्रीज। टुमारो इज गोइंग टू बी द हॉट वन दैट दे आर प्रेडिक्टिंग। मेयर ओलिविया चाओ सीकिंग अ री इलेक्शन, आज उन्होंने अपना नाम जो है दर्ज कर दिया है एंड अभी तक उस बात को लेकर थोड़ी सी सस्पेंस थी, बट नाउ everything is clear now, who's running and who's not. And cholebature.ca, char locations se serve karte hain, 2 in Brampton, 1 in Vaughan, 1 in Mississauga. Sari ki sari locations par takeout dine-in option aapke liye available hai. And studio ka number 416-593-0055. Aur aaj sort of hamara Kishore Kumar special hi ho gaya with all these requests that came in and plus all the list of songs that we had ready. So Brampton TV and Appliance की तरफ से ये जबरदस्त गीत किशोर कुमार साहब की आवाज़ में। एंड आज की एक और बिग न्यूज़ भी थी जहाँ पर जो साउथ एशियन एक्सटॉर्शन वाला पूरा गैंग है, तकरीबन 17 लोगों को जो है हिरासत में लिया गया। सो दैट वाज अ बिग पीस ऑफ न्यूज़ दैट केम आउट एंड आगे चलकर और खुलासा जो है एक एक करके इस पूरी चीज़ को लेकर किया जाएगा। पील पुलिस अरेस्टेड 17 सस्पेक्ट्स आफ्टर स्ट्रिंग ऑफ वायलेंट एक्सटॉर्शन टारगेटिंग साउथ एशियन बिजनेस ओनर्स इन GTA एंड बियॉन्ड। चलिए गीत इंजॉय करें, आते हैं बहुत ही जल्द वापस।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940, 6478631940।
1: कोंडो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर 5 साल किसको रुकना है? बन जाइए डेवलपर एंड बिल्डर और बनाइए पैसे डे वन से। कॉन्टेक्ट कीजिए अतीक खान एंड बिकम अ ब्रांड टू ग्रो योर ओन वेल्थ। 416-666-2745।
2: Genesis Markham, यहाँ मिले लग्जरी का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट डीलरशिप और आपकी अपनी लैंग्वेज में एक्सपर्ट सर्विस। लीज करें ब्यूटिफुली डिजाइन 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज करें 2026 GV70 सिर्फ 4.9% से। आज ही बुक करें टेस्ट ड्राइव। विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट Woodbine Avenue एंड John Street, Markham। Genesis Markham, doing luxury your way. A proud member of Wayne's Auto Group.
3: At Wayne's Auto Group, आप हम पर रिलाई कर सकते हैं फॉर everything automotive, चाहे हो डेली commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर जर्नी को बनाए खास, Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ। Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language, offering 9 brands across 15 dealerships, from first drive to lifetime care. Wayne's Auto Group is always there. आज ही विजिट करें waynesautogroup.com।
0: You're listening to South Asian Unlimited Radio. For advertising, call 647-863-1940, 647-863-1940.

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशिया अनलिमिटेड रेडियो पर। ब्रांटन टीवी एंड अप्लायंसेस से सुल्तान जी हमारे साथ हैं। 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट एट द कॉर्नर ऑफ बोवेड एंड चिकूसी इन ब्रांटन। 905-450-2828 इज द नंबर। ओपन 7 days a week, 11 AM टू 7 PM। BramptonAppliances.com पर जाकर आप अमेजिंग डील्स को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी की सारी डील्स सुल्तान जी से लेते हैं। सबसे पहले टीवी सेक्शन की ओर करेंगे रुख। सुल्तान जी, आपका स्वागत है साउथ एशिया अनलिमिटेड रेडियो पर।
1: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया
0: सुल्तान जी। सबसे पहले द अमेजिंग टीवी सेक्शन पर थोड़ी सी रोशनी डालें।
1: डेफिनेटली जी, बिकॉज फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है और उसके साथ साथ रैप्टर्स की गेम चल रही हैं, साथ में ब्लू जेस की गेम चल रही हैं, तो जो भी स्पोर्ट्स के शौकीन कस्टमर हैं वो तो डेफिनेटली बिग स्क्रीन पे फुली इंजॉय करते हैं। और अगर बिग स्क्रीन डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाए तो फिर तो क्या ही बात है जी। तो ये जो भी कस्टमर इस वक्त 85 इंच QLED लेना चाहते हैं, क्वांटम डॉट क्वांटम प्रोसेसर के साथ QLED सैमसंग का 85 इंच $2000 वाला सिर्फ $1299 में मिलेगा। $700 आप 85 इंच QLED पे सेव करेंगे ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस बोवेड एंड चिंकूजी वाली लोकेशन पे जी। इसी तरह 65 इंच सिर्फ $699 में मिल जाएगा और 55 इंच सिर्फ $399 में ले सकेंगे। पेमेंट आपने 6 महीने में करनी है जी, कोई इंटरेस्ट नहीं है, फ्री होम डिलीवरी होगी। आपको आना है 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी ऑन बोवेड है जी। BramptonAppliances.com हमारी वेबसाइट से डायरेक्शन ऑफ द स्टोर भी ले सकते हैं। और जब बिग स्क्रीन की बात करें तो 98 इंच को मिस ना करें, क्योंकि 98 इंच सिर्फ 3 TV इन स्टॉक रह गए हैं। $3500 से सेल प्राइस $2799 का था, लेकिन $1999 में 3 lucky customer कैन गेट इट 6 month नो इंटरेस्ट पेमेंट प्लान के साथ 98 इंच सैमसंग टीवी $1999 का। 905-450-2828 905-450-2828 जी,
0: 905-450-2828 ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस। सुल्तान जी, अप्लायंस एंड लॉन्ड्री की सेक्शन पर भी क्या अमेजिंग डील्स चल रही है, उस पर भी प्लीज डाले रोशनी। कुछ बंडल पैकेजेस भी मैं चाहूंगा कि आप हमारे लिसनर्स तक पहुंचाएं।
1: बिल्कुल जी, 40% का डिस्काउंट अप्लायंसेस इंडस्ट्री में नहीं मिलता, हाईएस्ट वॉल्यूम डीलर होने की वजह से 40% का डिस्काउंट जो है हम अपने कस्टमर्स के लिए लेके आए हैं जी। अगर तो बिल्ट इन किचन लेना है तो ह्यूज सेविंग है, क्योंकि बिल्ट इन कुकटॉप, बिल्ट इन वॉल ओवन, बिल्ट इन माइक्रोवेव, बिल्ट इन डिशवाशर और बिल्ट इन काउंटर टॉप फ्रिज जो पूरे का पूरा बिल्ट हो जाएगा आपके किचन कैबिनेट्स में, और आइस एंड वाटर डिस्पेंसर के साथ होगा ये आपको $12,000 वाला बिल्ट इन किचन सिर्फ $6,900 में मिलेगा जी। ह्यूज सेविंग है, 40% की सेविंग करवा रहे हैं, फ्री होम डिलीवरी होगी, 6 month में आप पे करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंडिविजुअल भी अगर आप लेना चाहते हैं, सिंगल फ्रिज आपको $2500 वाला $1799 में मिलेगा, और इसमें भी आप $700 एक फ्रिज खरीदने पे सेव करेंगे। स्मूथ टॉप इलेक्ट्रिक स्टोव $1300-1400 वाला $799 में मिलेगा सिर्फ, इसमें भी $500 की सेविंग है। टॉल टब की डिशवॉशर जो है $1000 वाली, ये तो मोर देन 40% डिस्काउंट है, क्योंकि $1000 से सिर्फ $499 में ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पे डिशवॉशर ले सकेंगे, स्टेनलेस स्टील की $499 फ्री होम डिलीवरी के साथ। फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर की बात करें जी, तो $2200 वाला फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर $1499 में, और टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर की अगर बात करें तो $1700 वाला टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर सिर्फ $1099 का पेयर मिलेगा। वॉशर ड्रायर दोनों ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस बोवेड एंड चंकूजी वाली लोकेशन पे आना है। हमारा मैसेज जरूर पास ऑन करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव को। ह्यूज सेविंग्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस एंड लॉन्ड्री सेक्शन में मिलेंगी। 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चंकूजी ऑन बोवेड है जी। ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 905-450-2828 905-450-2828 जी।
0: जी, 905-450-2828 ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940, 6478631940।
1: Genesis Markham, यहाँ मिले लग्जरी का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट डीलरशिप और आपकी अपनी लैंग्वेज में एक्सपर्ट सर्विस। लीज करें ब्यूटिफुली डिजाइन 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज करें 2026 GV70 सिर्फ 4.9% से। आज ही बुक करें टेस्ट ड्राइव। विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम। Genesis Markham, डूइंग लग्जरी योर वे। अ प्राउड मेंबर ऑफ वेन्स ऑटो ग्रुप।
2: एक घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, एक घर सिर्फ सपनों से नहीं बनता, एक घर बनता है इरादों से, जी जान मेहनत से। अपने इरादों को एक नया मुकाम दें, अपनी मेहनत को अंजाम दें। कॉल करें रॉयल लेपेज क्रेडिट वैली रियल्टी के राज जोशी को, जो काम करते हैं आपके लिए विद अटमोस्ट ट्रांसपेरेंसी एंड डेडिकेशन। 6478661086, 6478661086, राज जोशी, नाम ही काफी है।
1: डॉन वैली नॉर्थ हंडे पे हो रही है जबरदस्त हंडे संडे की अल्टीमेट सेविंग सेल ऑन मई 24th। इन्वेंटोरी पर ह्यूज बोनस ऑफर्स, डील्स इतनी जबरदस्त की मिस नहीं कर सकते। संडे मई 24th को अपने कैलेंडर में मार्क कर लो। डॉन वैली नॉर्थ हंडे पर हमारी टीम बात करती है हिंदी, उर्दू, पंजाबी और तमिल में। विजिट करिए donvalleynorthhyundai.com, Woodbine Ave और Denison Street, Markham पर।
3: Wayne's Auto Group। सुनदे हो, मेरे प्रादिया जो फ्लाइट है इंडिया तो।
4: ओ याद है, पर उन्हों कहीं कि आउंदा होया एक प्लेट छोले भटूरिया दी फर लिया वे।
3: इंडियन स्वाद वाले छोले भटूरे खाल ले, इंडिया दे सुपने ना देखो, choleBhature.ca ते चलो।
5: choleBhature.ca, बेस्ट पंजाबी रेस्टोरेंट ब्रैम्पटन। छोले भटूरे, पतीले वाले मटर कुलचे, पाव भाजी, अमृतसरी कुलचे ते होर भी कई डिलीशियस ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल फूड ले पहुंचो। choleBhature.ca, कॉल 9054582448।
6: Serving from 4 dine-in locations, 2 in Brampton, 1 in Mississauga, and 1 by Vaughan Mills.
7: Some say the world will end in fire. Some say in ice. From what I've tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice.

0: Joshi.
1: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर्स अते अनादी टोयोटा दा होवेगा द ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना इस च साथ देण के चिप्स चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा ऑयल चेंजेस ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक इजी स्टॉप अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो क्योंकि एह सफर होण वाला है तूफानी।

0: Nation Unlimited Radio on CMR 101.3 FM, Monday to Friday, 12 to 2 PM.
1: एक और कहानी मेरी जुबानी, चौकीदार। एक कंपनी के मैनेजर राहुल को अपने कंपनी के लिए चौकीदार चाहिए था। उसके लिए उन्होंने इश्तेहार निकाले, बहुत लोग इंटरव्यू देने आए, लेकिन मैनेजर को कोई भी पसंद नहीं आया। आखिर में राजू नाम का एक व्यक्ति वहां बैठा था जो इंटरव्यू के लिए आया था। राहुल ने राजू से पूछा, आप थके हुए लग रहे हैं, कोई बीमारी है क्या? राजू ने तुरंत जवाब दिया, नहीं साहब, ऐसी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन नींद नहीं आने की बीमारी है। राहुल ने फौरन उसको रात के चौकीदार के लिए रख लिया, क्योंकि वह चाह के भी सो नहीं सकता। कहानी की सीख, अपनी असलियत नहीं छुपानी चाहिए। कई बार इस तरह का फायदा हो जाता है। स्टे ब्लेस्ड।
2: जी हाँ दोस्तों, यहां पे लेते हैं आपसे इजाजत। अब मुलाकात आपसे होगी कल 12 बजे ऑन CMR 101.3 FM। शो के बाद बातचीत करनी है, नंबर एक ही है, 6478631940। टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस लेडीज एंड जेंटलमैन।

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: The opinions stated by the various contributors to Sean Express are not to be considered as endorsed by Sean Express or CMR. They represent the opinions of the individual or business in question. All information given on this radio show is for education and entertainment purpose only. Moreover, the health tips given on this radio show should be cleared with a physician or nutritionist. We make no guarantee about the accuracy of information presented on this show.
3: Sean Express, Masti Ki Rail Gari, CMRP Station, 101.3 FM par aa chuki hai.
4: Jag tumhe sunane aayi, subah manane aayi, chatpate gossip ke saath masti lutane aayi. Aayi Sean Express, Masti Ki Rail Gari. Aayi Sean Express, Masti Ki Rail Gari.
5: Sean Express, Masti Ki Rail Gari.
6: एक ड्राइव इन मस्ती शो जिसमें है आज के जमाने के टॉप सॉन्ग्स, ताजा तरीन खबरें और चटपटी गॉसिप्स जो आपकी ड्राइव को बनाएंगे पावर ड्राइव. शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी. ड्राइव टाइम शो विद शालिनी.
5: शालिनी ब्रॉट टू यू बाय शॉन मीडिया.
7: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों. आपका मैं शालिनी वेलकम करती हूँ शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी पर ऑन सीएमआर एफएम 101.3. दोस्तों, नया हफ्ता शुरू हो चुका है. मूड में थोड़ा रोमांस, थोड़ा म्यूजिक और थोड़ी सी ड्रीमी वाइब होना बड़ा जरूरी है. आज दोस्तों आपके स्ट्रेस को थोड़ा साइड में रखते हैं, दिल को लाइट करते हैं और अच्छे एहसासों को साथ मिलकर फील करते हैं. क्योंकि आज का जो पॉजिटिव विचार है वो कहता है, जब दिल खुश होता है तो हर दिन खूबसूरत लगने लगता है. और इसी सॉफ्ट फील गुड मूड के साथ अब वक्त है एक ऐसे गीत का जिसकी मेलोडी और लिरिक्स सीधे दिल को टच करते हैं. थोड़ी शरारत, थोड़ा रोमांस और ढेर सारी म्यूजिकल वाइब के साथ आ रहा है आज का पहला सुपर हिट गाना शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी पर ऑन सीएमआर एफएम 101.3. गुड आफ्टरनून.

0: चलाओ ना नैनों से बाण ये जान ले लो ना जान रे जी। दोस्तों जब एक आंख से इशारे होते हैं, दूसरी आंखों से उसको एक्सेप्ट किया जाता है और कभी कभी कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया वाली बात होती है। आंखों ही आंखों में प्यार हो जाता है और नाउ अडेज थिंग्स आर डिफरेंट, बट पहले पूरी चीज आंखों ही आंखों में हो जाती थी और बात भी बहुत लेट जाकर होती थी। तो बहुत ही खूबसूरत मेलेडी और एक बहुत ही प्यारे से एहसास के साथ आज के शो की हमने शुरुआत की मस्ती की रेलगाड़ी पर सीएमआर एफएम 101.3। कहते हैं दोस्तों कि नजरों की अपनी भाषा होती है, नजरों की अपनी भाषा होती है जो बगैर शब्दों के भी दिल तक पहुंच जाती है। कुछ धुनें बस सुनाई नहीं देती, कुछ धुनें बस सुनाई नहीं देती, आप सीधे एहसास बन जाती हैं। और ये गाना ऐसा ही प्यारा सा एहसास था और ऐसी ही सॉफ्ट एंड फील गुड वाइब्स के साथ आप रहिएगा हमारे साथ ऑन सीएमआर एफएम 101.3 पर शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी के साथ। टुडे इज मंडे मई 25th और यस धीरे धीरे हम समर की तरफ जा रहे हैं और अब जो है समर वाइब बाहर नजर आ रही है। +20 डिग्री सेंटीग्रेड सनशाइन है इस वक्त, आपको 21 डिग्री महसूस हो रहा है और आज का हाईएस्ट टेम्परेचर जा सकता है शाम के 5 बजे +23 डिग्रीज, और अब तो मुझे लगता है प्लस कहना बंद करना पड़ेगा, और लोएस्ट टेम्परेचर जा सकता है रात के 11 बजे 17 डिग्री सेंटीग्रेड। सारा दिन भर आसमान में सनशाइन, ब्राइट एंड शाइनी डे आज का रहने की पूरी पूरी संभावना है। और भाई नए हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है बड़े ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, और आज का दिन क्या लेकर आ रहा है खुशियां वो भी आपको बता दें कि आज के दिन में क्या क्या खास होने जा रहा है आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों की शिकायत थी कि टॉपिक ज़रा देर में पता चलता है, तो चलिए आज मैं टॉपिक जो है शुरू में ही बता देती हूँ। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन बड़ा इंटरेस्टिंग है, पहले इसके बारे में आप जरा ध्यान से सुनिएगा। टॉपिक कौन सा है? आजकल का सबसे बड़ा जो स्ट्रगल है पता है आपको क्या है? आजकल का स्ट्रगल है कि नींद भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, सोशल लाइफ भी चाहिए और मेंटल पीस भी चाहिए। वी नीड एवरी सिंगल थिंग। लेकिन इंसान जो है बाहर से नॉर्मल एक्ट कर रहा है लेकिन अंदर से सोच रहा है यार थोड़ा ब्रेक मिल जाए जिंदगी में, इतना सब कुछ एक बेचारी आत्मा, एक बेचारी जान कितना करेगी, बच्चे की जान लोगे क्या, ये वाली बात हो जाती है। अब जिम्मेदारियों ने हमें जरूरत से जल्दी बड़ा कर दिया है, हंसते हुए चेहरों को भी अंदर से थका दिया है और बहुत छोटी सी छुट्टी भी लग्जरी लगती है। वक्त ने रेस्ट का मतलब बदल दिया है। और आज का सवाल है आप लोगों से दोस्तों कि अगर आपको एक दिन, जी एक दिन भी बड़ी नियामत की बात है, तो एक दिन अगर आपको पूरा दिन छुट्टी मिले, वो भी टेंशन फ्री छुट्टी मिले, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? दैट्स माय क्वेश्चन टू यू। अगर एक दिन आपको टेंशन फ्री छुट्टी मिले, जी टेंशन फ्री छुट्टी मतलब उस दिन कोई इवेंट्स नहीं, कोई मिलना जुलना नहीं, दैट इज योर डे, यू आर गोइंग टू गिव टाइम टू योर सेल्फ, तो वॉट इज गोइंग टू बी दैट वन फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू? दैट्स व्हाट आई वांट टू हियर इट फ्रॉम यू। बताइएगा दोस्तों, सोशल मीडिया पर भी आप हमें लाइव देख रहे हैं वहां भी लिख सकते हैं और इन स्टूडियो भी कॉल कर सकते हैं, हमारा साथ दे सकते हैं 416-593-0055 416-593-0055। और बस एक छोटा सा टाइनी सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस लौटते हैं दोस्तों और फिर बताते हैं कि बॉलीवुड का आज चैप्टर क्या कहता है, पहला चैप्टर किसका बर्थडे है आज, बहुत जल्दी आपसे करेंगे बातचीत। टाइनी सा ब्रेक, विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड।
1: शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी स्टेशन सीएमआर 101.3 एफएम पर आ चुकी है। Dear sponsors, for fast, effective and result-oriented ride, get on board Sean Express. For info, call 416-569-7812, 416-569-7812 or email info@seanmedia.com, shonmedia.com.
2: You work hard, manage to make both ends meet. Right combinations do miracles. If tax and accounting is your need, think Rajiv Madan. Depth of experience, passion for accounting. Tajurba wahi jo kaam aaye, aapko fayda pahunchaye. Certified General Accountant, Rajiv Madan. Tax accounting ke sabhi pehluon par paini nazar. Fark aazmane pe pata chalega. Call CGA Rajiv Madan, 905-362-2200.
1: 2970
2: Drew Road, Suite 214B, Mississauga. CGA Rajiv Madan. Thoughts become things.
0: घर या बिजनेस के लिए चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स?
3: तो कॉल करें कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, ब्रैम्पटन का ट्रस्टेड नाम फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स।
0: बेस्ट क्वालिटी, स्टाइलिश डिजाइंस और ग्रेट प्राइसिंग, चाहे सनरूम हो या हो कस्टम कैनोपी, सब कुछ मिलेगा यहाँ।
3: फ्री कोटेशन के लिए अभी कॉल करें 416-831-4790, दैट्स 416-831-4790, या पहुँचो 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन।
0: कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, बनाए आपकी स्पेस सुंदर और फंक्शनल। Welcome to Madras Restaurant. Swad, swag aur South ka tadka. Friday, Saturday aur Sunday enjoy kijiye authentic South Indian unlimited thali. Starting at sirf 20-26. 20 plus South Indian delicacies. Garma garam aur unlimited. Paratha, idli vada, spicy aromatic curries and more. Unlimited servings, amazing variety aur price jo pocket ko bhi khush kare. Don't forget to try their signature dosa. Biryani and lot more. Madras Restaurant, 905-789-6600. That's 905-789-6600.

0: टाइम। जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर,
2: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
1: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
3: Team Hashtag Homes and Rahul Kashyap Lekar I have first time home buyers clear an amazing opportunity. Freehold townhomes from $499,000 and detached homes from $605,000. First time home buyers can enjoy up to $130,000 in savings with new rebates, unlocking home ownership for the first time home buyers with the closing of 2027. Agar aap is opportunity ko grab karna chahte hain, then get in touch with Team Hashtag Homes today at 647-993-4844.
4: Sean Express, gaano ki sweet dish. This segment is sponsored by Madras Restaurant, bringing you authentic South Indian flavors with their unlimited thali. 20 plus delicious dishes, fresh and unlimited, starting at just 20-26, Friday to Sunday, only at Madras Restaurant.
5: वेलकम बैक दोस्तों, मस्ती की रेलगाड़ी सीएमआर एफएम 101.3। मैं हूँ शालिनी और आप लोगों का करती हूँ स्वागत फिर से। और आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो मैं आपको फिर से बता दूं कि आजकल की जिंदगी का सबसे बड़ा स्ट्रगल ये है कि हमें नींद भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, अब सोशल लाइफ भी चाहिए, मेंटल पीस भी चाहिए। अब दिल तो बच्चा है जी, वो बच्चे की जान लोगों, क्या एक इंसान कितना कुछ कर सकता है। कभी कभी हमें ज़िंदगी में ब्रेक चाहिए होता है और अंदर से बस हम यही सोचते हैं कि हमें काश कोई ब्रेक मिल जाए ज़िंदगी में। और कहते हैं कि फिर से बता दूं, आपने रिक्वेस्ट किया तो चार लाइनें, कि जिम्मेदारियों ने थोड़ा जल्दी बड़ा कर दिया हमें, हंसते हुए चेहरों को भी अंदर से थका दिया। अब छोटी सी छुट्टी भी लग्जरी लगती है, वक्त ने रेस्ट का मतलब समझा दिया। तो आपसे मेरा सवाल ये था कि अगर आपको एक दिन की टेंशन फ्री छुट्टी मिलती है तो आप सबसे पहले क्या काम करना चाहोगे। दैट इज माई क्वेश्चन टू यू एंड दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू आस्क यू। आप हमें बताइएगा। आवर लाइन्स आर ओपन नाउ, 416-593-0055, 416-593-0055। आप हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर भी, और अगर सोशल मीडिया पर कोई हमें कमेंट करके बताना चाहे, फील फ्री टू कमेंट ऑन 416-593-0055, या आप सोशल मीडिया पर हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आज कौन सी बॉलीवुड सेलिब्रिटी है जो अपना बर्थडे मना रही है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बॉलीवुड सेलिब्रिटी है जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, और बहुत ही रिनाउंड प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, और इनके बारे में बहुत सारी रूमर्स भी फैलती रहती हैं और हमेशा हमेशा चर्चे में रहते हैं। बॉलीवुड को स्टाइल, इमोशन और ग्रैंड सिनेमा का नया लेवल दिया। आज बर्थडे है बॉलीवुड के किंग ऑफ रोमांस एंड ड्रामा करण जौहर का। तो करण जौहर को हम विश करते हैं बर्थडे, बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। और ये लेजेंडरी प्रोड्यूसर यश जौहर के बेटे हैं और उन्होंने धर्मा प्रोडक्शन का जो लेगेसी है उसको आगे बढ़ाया। सिर्फ फैमिली नेम नहीं, इन्होंने अपनी क्रिएटिविटी और विजन से बॉलीवुड में एक अलग पहचान बना दी करण जौहर ने। और एक वो फिल्म जिसने करण जौहर को ओवरनाइट सुपर स्टार डायरेक्टर बना दिया, वो फिल्म का नाम है कुछ कुछ होता है। और ये फिल्म भी एक कंप्लीट पैकेज रोमांस, फ्रेंडशिप, इमोशन के साथ जुड़ी हुई थी और ऑडियंस ने इस फिल्म को दिल से एक्सेप्ट किया। और चलते हैं आपको लेकर इस आइकॉनिक गाने की तरफ, और इस फिल्म ने बॉलीवुड में कॉलेज रोमांस ट्रेंड को रीडिफाइन किया। फ्रेंडशिप बैंड से लेकर बास्केटबॉल कोर्ट्स तक सब कुछ आइकॉनिक बन गया। और कहते हैं कि कुछ रिश्ते वक्त के साथ बदल जाते हैं, कुछ रिश्ते वक्त के साथ बदल जाते हैं, कुछ एहसास दिलों में ही रह जाते हैं और कुछ कहानियां हमेशा अधूरी सी लगती हैं। और ऐसी ही कहानी थी कुछ कुछ होता है। और अगर आपने भी कभी किसी के लिए प्यार अपने दिल में महसूस किया है तो ये गाना आपको बेहद पसंद आएगा। आपकी नजर करते हैं इसी फिल्म का टाइटल ट्रैक। एंजॉय।

कुछ कुछ होता है और जिंदगी में दोस्तों कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। और जब दिल में कुछ कुछ होता है देन डेफिनेटली गो एंड टेल द पर्सन कि तुम्हारी वजह से मेरे को कुछ कुछ हो रहा है। और ये जो कुछ कुछ है जिस दिन समझ आ जाता है उस दिन जिंदगी बन जाती है। कभी कभी सारी जिंदगी निकल जाती है और पता ही नहीं चलता ये कुछ कुछ क्या हुआ और क्या होता है। तो जितनी जल्दी आप इस कुछ कुछ को समझ लेंगे ना उतनी जल्दी आपको अपने जवाब मिल जाएंगे। और मुझे अभी तक अपना जवाब नहीं मिला कि आपको अगर एक दिन की टेंशन फ्री छुट्टी मिलती है तो आप सबसे पहले कौन सा काम करना चाहेंगे। दिस इज माई क्वेश्चन टू यू। स्टूडियो का नंबर 4165930055। वेल, आज के बेस्ट ऑफर्स आ चुके हैं देओल ट्रैवल के। दिल्ली से टोरंटो अक्टूबर से जनवरी फरवरी तक जा सकते हैं राउंड ट्रिप। $1,320 लिमिटेड टाइम ऑफर है और लिमिटेड टाइम सीट्स भी हैं। नाउ दिल्ली से टोरंटो अक्टूबर नवंबर वन वे 8:30। टोरंटो से अमृतसर या टोरंटो से दिल्ली सितंबर से अक्टूबर राउंड ट्रिप लगा हुआ है $1,650 दो बैग्स के साथ। नाउ दिस इज ऑल्सो अ स्टील विच इज अ लिमिटेड टाइम ऑफर। दो लोकेशंस टू सर्व यू, इटोबिको एंड ब्रैम्पटन। देओल ट्रैवल नंबर्स आर 905-588-5100 एंड 905-588-4200, 588-5100 एंड 588-4200। ऑलराइट, और आप ब्यूटीफाई करते हैं आपके घरों को और आपके ऑफिसर्स को। आप जाइए यश विंडोज एंड डोर्स पर जहां पर आपको मिलते हैं वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विंडोज एंड डोर्स। और सबसे बड़ी बात है इतना कुछ आपको मिलता है, सुपीरियर स्टाइल, लुक्स, क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, सिक्योरिटी, एनर्जी एफिशिएंसी और प्राइस ऐसी जो आपकी पॉकेट को सूट करती है। स्टाइल, सेविंग और सेफ्टी सब कुछ एक साथ। और फ्रेंचाइज ऑप्शन भी अवेलेबल है अगर आप अपना बिजनेस ओन करना चाहते हैं। जॉइन द फास्ट ग्रोइंग टीम ऑफ यश विंडोज एंड डोर्स। नंबर नोट करें 416-732-3600। That's 416-732-3600। और अगर आप अपने घर में awning and canopy लगवाना चाहते हैं तो California awning and canopy से बात करें। घर या बिजनेस के लिए patio cover, pergola, basement canopy, retractable awnings लगवा सकते हैं और बिल्कुल free barbecue मिल रहा है with any canopy और awning installed। हर solution मिलता है perfect installation के साथ। और outdoor space को now it is the outdoor time, उसको let's make it more सुंदर and functional। 24 Regan Road, Brampton, this is the address। California awning and canopy style protection एक साथ। नंबर है 416-831-4790, 416-831-4790। आप है मस्ती की रेलगाड़ी पर शालिनी के साथ ऑन CMR FM 101.3। बस चलते हैं आज के अगले गाने की तरफ और अगला गाना बड़ा ही खूबसूरत है। 60-70 के दौर में आपको लिए चलती हूँ और कहते हैं तेरी सादगी में भी जादू सा है, तेरी सादगी में भी जादू सा है और हर अदा में प्यार का रंग भरा हुआ है। बहुत प्यारा सा गाना है, फिल्म का नाम है दो रास्ते। आपकी नज़र मस्ती की रेलगाड़ी पर।

0: बिंदिया चमकेगी ये है गाना, बहुत जल्दी ये पूरा गाना आपको सुनाएंगे। पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है आज के हमारे टॉपिक के बारे में। गुड आफ्टरनून, कौन है हमारे साथ?
1: शालिनी जी, दिस इज जतिन, कैसे हैं आप?
0: हाय जतिन जी, बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं?
1: बस बस, आज टॉपिक बहुत अच्छा है आपका।
0: थैंक यू।
1: और उसके हिसाब से आपने गाना भी अच्छा रखा, नया कुछ कुछ होता है।
0: थैंक यू। और जी, तो आपको मिल गई छुट्टी एक दिन की आज?
1: मैं वही बता रहा हूँ आपको, मैं अभी बस जॉब खत्म करके निकला हूँ और आपका रेडियो तुरंत शुरू किया।
0: हाँ,
1: और गाना भी सुना कुछ कुछ होता है, लेकिन यहाँ की अब लाइफ ही ऐसी है कि सिर्फ बिल ही होता है, टैक्स होता है, प्रॉपर्टी टैक्स होता है, बच्चों को लेना होता है, ये कुछ कुछ ज्यादा होता है, उससे बगैर कुछ नहीं।
0: कुछ ना कुछ चलता रहता है जिंदगी में, है ना?
1: हाँ, तभी सब कुछ चलता है अब तो।
0: बिल्कुल। तो अगर मान लिया आपको एक दिन का वक्त मिल भी गया, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले ये बताएं कि जिस दिन आपको कुछ ना करना हो, नो सोशल कमिटमेंट्स, क्योंकि कभी कभी ना जतिन जी क्या होता है कि हमारी छुट्टी का दिन होता है, उस दिन हम रेगुलर डे से ज्यादा बिजी हो जाते हैं। तो व्हाट वुड यू डू इफ यू गेट वन डे ऑफ?
1: पहले तो बहुत सारा घंटे सोना चाहूंगा।
0: अच्छा।
1: आराम से सोना, 10-12 घंटे कभी सोया नहीं हूँ, केरला में आया तब से।
0: अच्छा,
1: बिजी इतने ही रहते हैं, तो पहले तो सोना चाहेंगे ज्यादा, जितना हो सके इतना नींद ले
0: जी,
1: फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिताए। और पूरा दिन शालिनी जी रेडियो पे आए और सबको अच्छे गाने सुनाए, वही करेंगे।
0: चलिए, आपने चाहा वो भी एक दिन हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए जतिन जी, आई ट्रूली अप्रिशिएट योर टाइम।
1: नहीं, मैं आई वॉज लाइक लिटरली वेरी बिजी, लेकिन जैसे आपका रेडियो ऑन किया तो मतलब आई एम रिलैक्स, सुन के ही बहुत अच्छा लगता है, ऐसा होता है।
0: हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। पता है इससे मुझे कितना सैटिस्फेक्शन मिला है आपने ऐसा बोला, क्योंकि जब हमारी एक छोटी सी कोशिश होती है और हमारे लिसनर्स कहते हैं कि हम डी स्ट्रेस हो गए, मतलब रेडियो सुनने का मतलब ये नहीं कि आपको स्ट्रेस हो जाए, रेडियो सुनने का मतलब ये होना चाहिए आप डी स्ट्रेस हो जाए। इट हैज टू बी एन एंटरटेनमेंट, इट डजंट हैव टू बी हैवी ऑन योर हेड, ठीक है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छा लगता है आपको, बस आपका आवाज, आपकी जो हंसी, आपकी स्माइल, जो लिटिल थिंग्स आप बोलते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है।
0: Thank you, Jatin ji. You made my day. Thank you so much. Thanks a lot. And this is one thing I would love to. This is one thing I would love to hear on my every day. No matter chutti ka din, bina chutti ka din. This is one thing that is going to keep me energized and happy. Thank you.
1: Absolutely. Thank you.
0: ऑल राइट जी, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, और बाकी लिसनर्स भी हमारा साथ दे सकते हैं और कोई भी बात करना चाहें, स्टूडियो का नंबर 416-593-0055। जस्ट इन वन मोमेंट विल गो टू आज की ताजा हेडलाइंस, स्टे ट्यून्ड।

0: आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812। शॉन एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन ब्रॉट टू यू बाय शॉन मीडिया। News headlines sponsored by Anjum Qureshi. For all kinds of car accident claims, call 416-570-0157. That's 416-570-0157.
1: नमस्कार, शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी में सवार हो चुके हैं आप और ये है न्यूज जंक्शन। पहले जान लेते हैं हेडलाइंस। ट्रंप ने सोमवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिका ने ईरान संकट को सुलझाने के लिए बहुत मेहनत की है, कहा कि वे ईरान के साथ ओबामा जैसी डील नहीं करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना महान दोस्त बताया और कहा कि वे मोदी के बहुत बड़े फैन हैं। ट्रंप ने कहा भारत अमेरिका पर 100% भरोसा कर सकता है। शहबाज शरीफ के साथ पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी चीन पहुंचे। दोनों ने सोमवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 67 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। सबसे पहले दिवंगत फिल्म स्टार धर्मेंद्र को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी एक्ट्रेस और सांसद हेमा मालिनी ने ये सम्मान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन और लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट ना होने के कारण उनकी पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। मध्य प्रदेश के दमोह में मकान के निर्माण के दौरान खुदाई में मिले ब्रिटिशकालीन चांदी के सिक्के। अमृतसर के गुरुद्वारे में निर्माणाधीन लंगर हॉल की छत पर लगी लोहे की 200 किलो की शटरिंग प्लेट गिर गई, 2 महिलाओं की मौत। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह पर फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने लगा दिया है बैन।
0: दोस्तों, अब नजर डालते हैं आज की लेटेस्ट लोकल हेडलाइंस की तरफ। सबसे पहले टॉप क्राइम स्टोरी, एक्सटॉर्शन गैंग बस्टेड। पील रीजनल पुलिस ने एक बड़ा क्रैकडाउन किया है, 17 सस्पेक्ट्स को गिरफ्तार किया है। कुल 106 क्रिमिनल चार्जेस दर्ज हुए हैं। ब्रैम्पटन, मिसिसागा और कैलेडन में साउथ एशियन बिजनेस कम्युनिटी को टारगेट किया गया। पुलिस चीफ के अनुसार ये वायलेंस रैंडम नहीं थी और साथ ही विक्टिम्स को सिस्टमैटिकली टारगेट किया गया है। रेस्टोरेंट्स एंड ट्रकिंग बिजनेसेस पर फायरिंग और आर्सन अटैक्स हुए हैं। इन्वेस्टिगेशन में FBI, CBSA, OPP और सरी पुलिस भी शामिल। उधर ओंटारियो में हजारों कम्युनिटी एंड सोशल वर्कर्स ने आज स्ट्राइक शुरू कर दी है। ओंटारियो पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज यूनियन का आरोप है कि क्रॉनिक अंडर फंडिंग हुई है। वर्कर्स कह रहे हैं कि उन्हें एक्स्ट्रा जॉब्स करनी पड़ रही हैं और वल्नरेबल लोगों को सर्विसेज मिलना भी मुश्किल हो रहा है। उधर ओंटारियो गवर्नमेंट ने कई OPS एम्प्लॉयज के वर्क फ्रॉम होम रिक्वेस्ट को रद्द कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। फीफा वर्ल्ड कप के दौरान हाइब्रिड वर्क की डिमांड की गई थी। यूनियन का कहना है कि ब्लैंकेट रिजेक्शन लेटर्स भेजे जा रहे हैं और आने वाले हफ्तों में और डिसीजंस आ सकते हैं। उधर ओंटारियो प्रोविंशियल पुलिस अब एक नया सिस्टम ला रही है। हाई रिस्क ऑफेंडर्स का डेटा पब्लिक वेबसाइट पर डाला जाएगा। कम्युनिटी सेफ्टी के लिए एक बड़ा कदम है, साथ ही रीस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स को प्रोविंसेस के बीच एनफोर्स करना आसान होगा। उधर एनिमल वेलफेयर को लेते हुए ओंटारियो सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आया है। कैट डीक्लॉइंग, डॉग ईयर क्रॉपिंग और डीवोकलाइजेशन जैसे अननेसेसरी प्रोसीजर्स बैन किए जाएंगे। एनिमल प्रोटेक्शन लॉज को भी स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। उधर ओलिविया चाओ ने अनाउंस किया है कि फिर से वो टोरंटो मेयर के लिए इलेक्शन लड़ेंगी। अचीवमेंट्स हाईलाइट किए हैं और फ्री स्कूल मील्स, ट्रांजिट फ्री फेयर को फ्रीज करना और साथ ही ज्यादा क्राइसिस वर्कर्स को सामने लेकर आना, सिटी को अफोर्डेबल और सेफ बनाना इनकी टॉप प्रायोरिटी में बताया गया है। उधर कैरोलिन मुलरोनी ने रेजिग्नेशन अनाउंस कर दिया है और जून 5 को ऑफिशियल पद वो छोड़ेंगी। पर्सनल रीजंस और फैमिली प्रायोरिटी उन्होंने कैबिनेट छोड़ने के पीछे की वजह बता दी है। उधर ड्रग बोर्ड की गवर्नमेंट जो है वो कोर्ट पहुंच चुकी है। ब्लू लाइसेंस प्लेट्स कंट्रोवर्सी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स रिलीज करने की कोशिश जारी है। क्रिटिक्स का आरोप है कि सरकार ट्रांसपेरेंसी से बच रही है। और अंत में बता दें आज का वेदर अपडेट, आज रहेगा क्लियर स्काई विद सनशाइन, हाई ऑफ 22 डिग्रीज एंड लोज ऑफ 17 डिग्री सेंटीग्रेड, परफेक्ट समर वाइब। आउटडोर प्लान के लिए आज है बेस्ट डे। सुनते रहिए मस्ती की रेलगाड़ी CMRFM 101.3 पर। न्यूज हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय अंजुम कुरैशी। फॉर ऑल काइंड ऑफ कार एक्सीडेंट क्लेम्स कॉल 416-570-0157. That's 416-570-0157. आपका दोस्तों एक बार फिर से शालिनी वेलकम करती है CMRFM 101.3 पर। और आज का टॉपिक है कि अगर एक दिन आपको टेंशन फ्री छुट्टी मिले तो सबसे पहले आप क्या करना चाहेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, आइए देखते हैं कौन है हमारे साथ। गुड आफ्टरनून।
2: वेरी गुड आफ्टरनून, दिस इज अभिषेक।
0: अभिषेक, ग्रेट टू हैव यू विद अस टुडे। बताइए क्या करेंगे अगर आपको एक दिन की छुट्टी मिले आपके लिए।
2: अगर मुझे कनाडा में एक दिन की फुल रेस्ट मिले तो मेरे लिए फुल रेस्ट का मतलब है कि मोबाइल बिल्कुल बंद, सोशल मीडिया बिल्कुल बंद। मैं तो सुबह अच्छा। जल्दी उठकर किसी प्यारी सी, अगर पास में कोई लेक होगी तो वहां पे जाऊंगा, कॉफी अपने घर से बना के ले जाऊंगा, वहां पे सुकून अच्छा। से बैठकर उस गर्म कॉफी का आनंद लूंगा, नेचर की आवाज सुनूंगा, नेचर की आवाज सुनूंगा कि कैसी कैसी आवाजें आ रही हैं, और थोड़ा सा वहां पे वॉक भी करूंगा। तो मेरे लिए तो असली रेस्ट का मतलब यही है कि दिमाग को बिल्कुल शांत करना है, पीसफुल करना है, और नेचर के साथ जितना कनेक्ट हो सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो सुकून तो बस एक शब्द रह गया है, सुकून न जाने कहाँ चला गया है। तो क्योंकि अगर नेचर के साथ जुड़ेंगे तो पता है कि एक दिन की शालिनी जी ने छुट्टी एक दिन की दी है, अगले दिन तो फिर ऑफिस जाना पड़ेगा, तो फिर उस एनर्जी के साथ उठ सके।
0: आई लव इट, थैंक यू सो मच अभिषेक जी, और आपने बहुत अच्छी बात कही। अब क्या, लेकिन मुझे डाउट है कि आप बगैर फोन के रह सकते हैं पूरा एक दिन? मुझे तो लगता है एक घंटा भी रहना मुश्किल है।
2: ना ना, हम तो रह लें, हमें बस बोला जाए कि अच्छा? बस ये, उसके बदले कुछ मिल जाए बस।
0: पता है फोन जो है ना वो सबसे बड़ी टेंशन का पुलंदा फोन ही है। कोई आपके पास अनवांटेड ईमेल्स आनी, आपके पास अनवांटेड मैसेजेस आने, कॉल्स आने, कुछ ऐसा काम बता देना कि ये काम करना है अब तुम्हें, तो मुझे लगता है आप ठीक कह रहे हैं, सबसे बड़ी टेंशन जो है फोन है आज की डेट में। फोन हटा दिया जाए तो यू गॉट योर ओन टाइम।
2: बस अब वो चीज रही नहीं। अब मेरे हिसाब से तो बस ये एक जरूरत है, कोई इसे मजे के लिए कोई भी यूज नहीं करता। अगर बोल दें कि तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा, फोन बंद। मेरी खुद की नेचर ये है कि रात 10 बजे के बाद फोन बंद है, क्योंकि जिंदगी में एक बात पक्की है कि अगर सुकून से सोना ना, रात को 10 बजे के बाद फोन बंद कर दो। 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक आपको जो भी कोई कॉल आएगी, बिलीव मी, वो आपको डिस्टर्ब करने वाले होगी। यार मैं यहाँ स्टक हो गया, ये कर दो, यार पुलिस ने पकड़ लिया, ये कर दो, यार वो बीमार हो गया, उसको लेके जाना है। सो बेटर है अपने सुकून के लिए, सब फैमिली आपके साथ है, सारे आपके साथ है, तो 10 बजे फोन बंद है, सुबह 5 या 6 बजे ऑन करो, दैट्स इट। ये फोन का मंत्र है।
0: क्या बात, क्या बात है, बहुत अमेजिंग कर रहा हूँ। बहुत अमेजिंग। अच्छा मुझे इससे ना एक बैक होम का किस्सा याद आया, कोई हमारे जानने वाले हैं तो वो यू नो एक फैमिली में अकेले बेटे हैं, बहुत लंबी चौड़ी फैमिली में बेटे अकेले हैं वो, तो उनके कुछ चीजें ऐसी होती हैं इंडिया में कि जो सिर्फ एक मेल मेंबर कर सकता है, यू नो खासतौर पर तब जब बड़े बूढ़े हमारे चल बसते हैं तो जो सारे काम है उस मेल मेंबर को करने पड़ते हैं, तो वो अकेले मेल मेंबर थे अपनी काफी जनरेशन में, तो उनके पास जैसे ही फोन आता था वो फोन नहीं उठाते थे, सबसे पहले अपने कुक को कहते थे मेरे लिए अच्छा सा खाना बना दो क्योंकि ये फोन जो आया है मैं जाऊंगा तो कुछ घंटे तक नहीं खा पाऊंगा, तो पहले मैं पहले आई शुड टेक केयर ऑफ माई सेल्फ एंड देन पिक अप द फोन.
2: बिल्कुल बिल्कुल, पता नहीं कौन सी बीमारी का फोन आ जाना है, अपनी टेक केयर तो होनी नहीं. वेल सेड, वेरी वेल,
0: दैट्स अमेजिंग. I love it. Thank you so much, Abhishek ji. I truly appreciate. जी,
2: thank you, thank you.
0: और आप बहुत बहुत
2: शुक्रिया. ये हमें पक्का मिले आपकी तरफ से, वो हिंदी में बोलते हैं ना तथास्तु, और ये आपको भी मिले एक दिन कैरेट स्कूल.
0: क्या बात है, थैंक यू सो मच. बिल्कुल जरूर मिलेगी, व्हाई नॉट, है ना. तो अब हमारे साथ जी एक और कॉलर जुड़े हैं, आइए देखते हैं कि जब उन्हें छुट्टी मिलेगी सारा दिन की तो उसमें सबसे पहले वो क्या करेंगे. कौन है हमारे साथ? गुड आफ्टरनून.
3: गुड आफ्टरनून. मुझे छुट्टी मिलेगी तो मैं, हेलो,
0: हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं?
3: आमिर.
0: आमिर जी, आमिर बताइए. तमाम दोस्तों को,
3: तमाम दोस्तों को मैं बूट क्रूज पे ले जाऊंगा. हर टाइप की म्यूजिक, की भंगड़ा, पाइप बैंड, बंसरी, सारी म्यूजिक से मैं उनको एंजॉय करवाऊंगा. थ्रू आउट छट्टी पिलाऊंगा सबको, डिनर भी वहीं कराऊंगा, लंच भी उधर ही करवाऊंगा, होल डे म्यूजिकल.
0: अच्छा,
3: डे
0: क्या बात. देखिए आइडिया तो मैंने दिया है तो मुझे आना पड़ेगा आपके बोट क्रूज पे 100%.
3: आप हमारी वीआईपी होंगी.
0: थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक्स अ लॉट. तो भाई ऐसी ही हमारी कोशिश रहती है कि हम टटोलते रहें आप लोगों को कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, और हमें अच्छा लगता है आपको सुनना. और साथ ही हमारे साथ अगले कॉलर जुड़े हैं, आइए देखते हैं कि उनकी परफेक्ट एक दिन की हॉलिडे जो उनके लिए होगी टेंशन फ्री विद नो वर्क, उसमें सबसे पहले क्या करेंगे. लेट्स हियर इट फ्रॉम हिम. नेक्स्ट कॉलर ऑन एयर नाउ. गुड आफ्टरनून, हु इज दिस?
4: हेलो, इट्स पुनीत, हाउ आर यू?
0: Hi, Puneet ji. बिल्कुल ठीक, आप बताइए.
4: The thing is, you know, the problem is that you got the program for only 1 hour. I wish it was for the whole day going. I would keep on listening to your laughter.
0: How sweet. Thank you.
4: And, you know, I was reading a magazine called Reader's Digest, and in that, there used to come an article, Laughter, the Best Medicine.
0: That's right.
4: And they used to have all sorts of jokes in there to make you laugh.
0: Beautiful. Kya baat hai. So one day if you get Puneet ji, you want to laugh on that day, on your vacation, one day holiday. You want to laugh on that day.
4: Full of laughter.
0: Right? How sweet. That's amazing. Thank you so much.
4: Okay, bye.
0: Thanks a lot. और हमारे साथ आई गेस एक और कॉलर हैं, उनसे करेंगे बातचीत और फिर वो बिंदिया चमकते चमकते बीच में बंद हो गई, वापस चलेंगे हम बिंदिया चमकेगी की तरफ. आई नो आई हैवंट फॉरगॉटन अबाउट द सॉन्ग. हमारे साथ एक कॉलर है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है आप लोग से बातें करने में, आज सुनने में कि एक दिन की छुट्टी मिलेगी तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे. लेट्स हियर इट. आई गेस दिस इज विक्टर, एम आई राइट?
5: Yes, yes, it is Victor.
0: Welcome.
5: And
0: welcome.
5: I will go to the how to handle the tension course.
0: Yes.
5: I will go for education, not not anything else. I will go for the course. How to handle the tension.
0: Oh,
5: thank
0: wow.
5: you very
0: and
5: much.
0: On that day, you want to go on a course, attend a course or study about the fact that how to handle the stress in the life. Wow.
5: Yes, yes.
0: I love it.
5: Sure.
0: I love
5: sure.
0: it. Thank you. Thank you so much.
5: Thank
0: Thanks
5: you
0: a lot.
5: Thank you very much. So, thank you.
0: Thanks a lot. तो बड़ी अच्छी बातें आज पता चली दोस्तों. लगा कि आप टेंशन से छुटकारा पाना चाहते हैं, आप हंसना चाहते हैं, आप अपने साथ, अपने खुद के साथ बात करना चाहते हैं. जैसे अभिषेक जी ने कहा, खुद के साथ बात करना चाहते हैं, खुद को वक्त देना चाहते हैं माइनस फोन. ऑलराइट. आमिर जी ने कहा कि आप क्रूज पे जाना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ, उनके चेहरों पर स्माइल लेकर आना चाहते हैं. पुनीत जी ने कहा कि आप हंसना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं जिंदगी में. कितनी अच्छी बात है. एक दिन तो भाई निकल ही सकता है। मुझे लगता है आपकी अगली छुट्टी में आप सबसे पहले अपना फोन साइड रखें, क्योंकि कभी कभी होता है हम जब अपने आप को वक्त देते हैं ना, हम अगर हैप्पी रहते हैं, कंटेंटेड रहते हैं, तो हम जो है दूसरों को भी खुशी दे सकते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के कॉल्स का, और ये बताने के लिए कि मुझे आप सारा दिन सुनना चाहते हैं, हंसी सुनना चाहते हैं, पॉजिटिव बातें सुनना चाहते हैं। सो ट्रूली अ मैजिकल डे फॉर मी टू हियर दिस थिंग फ्रॉम यू ऑल। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। आप सोशल मीडिया पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, शालिनी डिक्सिट, फेसबुक पर भी चले जाएं, आप साथ ही इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं, टिकटॉक पर जा सकते हैं, साथ ही यूट्यूब चैनल भी हमारा देख सकते हैं, शॉन मीडिया, दैट इज SHON मीडिया। और अब चलते हैं उसी पुराने गाने की तरफ, बिंदिया चमकेगी चूड़ी खनकेगी, आपकी नजर Sean Express पर। Enjoy and direct number to reach us during or after the show 416-569-7812 416-569-7812. Good afternoon.

एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विशॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।

0: जी हाँ, यहाँ त्योहार पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर, मूर्तियाँ, हवन सामग्री, फेंग शुई वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलिनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 905-458-6808
1: और विजिट pujahut.com।
0: जय श्री राम।
2: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
3: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?
4: Yeah.

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: वीरे वधिया फर्नीचर ली किथे जावा?
2: भाई चार लोकेशन तो देन सेवावा, बस इसे करके ही मैं ता मिड्डा फर्नीचर ते ही जावा।
3: लेटेस्ट डिजाइन एंड हाई एंड फर्नीचर विद बेस्ट सर्विसेज, मार्केट दे प्राइस नालो 10-30% सस्ती प्राइस दा दावा कर देने।
2: मिड्डा फर्नीचर आओ, घर दफ्तर नु सजाओ। ब्रैम्पटन, स्कारब्रो, मिसिसागा ते कैम्ब्रिज लोकेशन ते आओ ता सही,
3: आजमाओ ता सही, अपना बनाओ ता सही। मिड्डा फर्नीचर, कॉल करो 416-901-2810, 416-901-2810। मिड्डा फर्नीचर।
4: आप रिश्ते को चलाना चाहते हैं या फिर घर बसाना चाहते हैं? लेना है कोई बहुत बड़ा फैसला या करना है कारोबार? स्ट्रेस और एंजाइटी ने जिंदगी को हिला के रख दिया है या फिर शादीशुदा लाइफ में बहुत सी परेशानियों का सामना है? तो ये सब सितारों की वजह से भी हो सकता है। आप सबसे बात करके डिसअपॉइंट हो गए हैं तो अब घबराने की जरूरत नहीं। बात कीजिए 5th generation एस्ट्रोलॉजर मास्टर धनिक महाराज से। 437-829-6023, इट्स 437-829-6023, मास्टर धनिक महाराज।
5: Team Hashtag Homes and Rahul Kashyap Lekar aaye hain first time home buyers ke liye an amazing opportunity, freehold town homes from $499,000 and detached homes from $605,000. First time home buyers can enjoy up to $130,000 in savings with new rebates, unlocking home ownership for the first time home buyers with the closing of 2027. Agar aap is opportunity ko grab karna chahte hain, then get in touch with Team Hashtag Homes today at 647-993-4844.
6: Welcome to Madras Restaurant. Swad, swag aur South ka tadka. Friday, Saturday aur Sunday enjoy kijiye authentic South Indian unlimited thali. Starting at sirf 20-26. 20 plus South Indian delicacies. Garma garam aur unlimited. Paratha, idli vada, spicy aromatic curries and more. Unlimited servings, amazing variety. Aur price jo pocket ko bhi khush kare. Don't forget to try their signature dosa, biryani and lot more. Madras Restaurant, 905-789-6600. That's 905-789-6600.
7: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3. शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस।
8: तेरा नाम लूं तो धड़कन संभल जाती है, तेरा नाम लूं तो धड़कन संभल जाती है, तेरी याद आए तो महफिल बदल जाती है। कुछ लोग मोहब्बत में ऐसे बस जाते हैं कि हर धड़कन में उनकी आवाज़ सुनाई देती है। दोस्तों, अब वक्त है उस एवरग्रीन रोमांटिक सॉन्ग का जिसने न जाने कितने दिलों को प्यार का एहसास कराया। तुझे देख देख सोना, तुझे देख कर है जगना। ये गाना हमने लिया है फिल्म कलयुग से, और ये गाना जो है 2005 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, जी आ धड़क धड़क जाए। और आज भी इसकी जो सॉफ्टनेस है, इसकी जो इमोशन है, वो लोगों के दिलों में ज़िंदा है। और इस गाने की सबसे ख़ास बात है इसकी सूफ़ी फील। और ये गाना ओरिजिनली पाकिस्तानी बैंड स्टाइल कॉम्पोजिशन से इंस्पायर्ड था, और इस ट्रैक ने इंडिया में राहत फ़तेह अली खान की पॉपुलैरिटी को एक नई पहचान दी। और ये गाना तो हम वैसे भी बजाते हैं, लेकिन आज इसीलिए बजा रहे हैं क्योंकि आज बर्थडे मना रहे हैं एक ऐसे एक्टर जो बचपन से ही बॉलीवुड की स्क्रीन पर छाए हुए थे। चाइल्ड एक्टर से लेकर एक मैच्योर परफॉर्मर बनने का उनका जो सफ़र है काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग है। मल्टी टैलेंटेड एंड वर्सेटाइल एक्टर कुणाल खेमू का आज बर्थडे है, और 90s में चाइल्ड एक्टर के रूप में उन्होंने अपनी एक्टिंग शुरू की थी। और हम है राही प्यार के राजा हिंदुस्तानी में इन्होंने छोटे से बच्चे की एक्टिंग करी थी, वो बच्चे ही थे उस वक्त। तो चलिए यही गाना आपकी नज़र करते हैं मस्ती की रेलगाड़ी पर। इन्जॉय।

0: Sean Express News Bulletin brought to you by Sean Media. This part of the show is sponsored by Win Lifetime. क्या आप भी चाहते हैं एक्स्ट्रा इनकम? तो Win Lifetime लेकर आए हैं ट्रेडिंग विदाउट इन्वेस्टमेंट, बस 90 मिनट रोजाना. Free seminar every Saturday at 1 p.m. in Mississauga. Limited seats but unlimited opportunities. Call 905-206-1008 or visit winlifetime.com. मद्रास रेस्टोरेंट, स्वाद स्वैग और साउथ का तड़का. फ्राइडे सैटरडे और संडे एंजॉय करें ऑथेंटिक साउथ इंडियन अनलिमिटेड थाली स्टार्टिंग एट ओनली 20-26. एंड KCDL कंस्ट्रक्शन ग्रुप, लीगल बेसमेंट कंस्ट्रक्शन से लेकर फुल होम रेनोवेशन, सेपरेट साइड एंट्रेंस, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल एस्फाल्ट पेविंग, रीसर्फेसिंग कॉन्क्रीट, इंटरलॉकिंग एंड मच मोर. कॉल 647-766-4335, 647-766-4335.
1: गले लगाकर ऐसे रुखसत करता हूँ जैसे सारे जाने वाले अच्छे हों. शारिक कैफी साहब के इस मानी खेज शेर के साथ आगाज कर रहे हैं आज के इस खास सेगमेंट का. और सबसे पहले रुक कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ. अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिका ने ईरान संकट को सुलझाने के लिए बहुत मेहनत की है, इसलिए अब जरूरी है कि ये सभी देश अब्राहम समझौते में शामिल हों, यानी कि इजराइल के साथ रिश्ते बेहतर करें. ट्रंप ने कहा कि यूएई और बहरीन पहले से अब्राहम अक्रॉड्स का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि कुछ देशों के पास शामिल ना होने की एक दो वजहें हो सकती हैं, लेकिन ज्यादातर देशों को इस समझौते के लिए तैयार होना चाहिए. अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे ईरान के साथ ओबामा जैसी डील नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि या तो अच्छा समझौता होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा. ट्रंप ने ईरान के साथ होने वाले समझौते की आलोचना करने वाले नेताओं पर नाराजगी जताई. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, जिन्हें ईरान के साथ होने वाले समझौते के बारे में कुछ भी नहीं पता वे भी इसकी बुराई कर रहे हैं. और तीसरी खबर भी इत्तेफाक से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ही जुड़ी हुई. ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना महान दोस्त बताया और कहा कि वे मोदी के बहुत बड़े फैन हैं. ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिका पर 100% भरोसा कर सकता है. अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में ट्रंप ने अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन करके लोगों को संबोधित किया. उन्होंने कहा, मुझे भारत से प्यार है, आपको हमारे देश के प्रतिनिधि के तौर पर अच्छी स्पीच देनी होगी, मैं सबको गुड इवनिंग कहना चाहता हूं, मुझे प्रधानमंत्री से प्यार है, पीएम मोदी महान हैं, वे मेरे दोस्त हैं, मोदी को हेलो कहो, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं. ये बात उन्होंने अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन करके कही. शहबाज शरीफ के साथ पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी चीन पहुंचे हैं. दोनों ने सोमवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की. फिलहाल चीनी सरकारी मीडिया ने अभी बातचीत की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की है. ये बैठक ऐसे समय हुई है जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म कराने की कोशिशें तेज हैं. चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक शहबाज शरीफ ने इससे पहले चीन के प्रधानमंत्री ली चांग से भी बातचीत की. तो अभी ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक. ब्रेक के उस पार होंगी भारत से जुड़ी हुई खबरें.
0: आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी. अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड. फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812.

0: बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 905-206-1008, दैट इज 905-206-1008, और विजिट winlifetime.com।
1: जी दोस्तों, जिंदगी एक ही है और चॉइस हमारी होनी चाहिए कि जिंदगी में हम कितना खुश रह सकते हैं। आज हमने हैप्पीनेस की बात की, तो कल भी हम हैप्पीनेस की बात करें, परसों भी हैप्पीनेस की बात करें। तो कहते हैं ना कि पैसा सब कुछ नहीं होता लाइफ में, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। अगर पैसा आपके पास कंसिस्टेंटली आता रहता है ना, तो हैप्पीनेस और सारी ज़रूरतें पूरी होती रहती हैं और आपकी ज़िंदगी एक परफेक्ट लाइफ होती है। तो क्या आप नहीं चाहेंगे ऐसी परफेक्ट लाइफ चुनना? आई एम श्योर चाहेंगे। तो आप लोगों के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट लेकर हम हाजिर हुए हैं मस्ती की रेलगाड़ी पर, और क्योंकि हम यहां पर मस्ती और फन की बात करते हैं, तो हम चाहते हैं आपकी लाइफ भी ऐसी हो जाए। विन लाइफ टाइम का रुख करेंगे और वहां से एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर एंड ट्रेनर राफी जी हमारे साथ जुड़ेंगे। राफी जी, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू?
2: गुड गुड, वेरी वेल। गुड आफ्टरनून टू यू एंड योर लिसनर्स।
1: थैंक यू सो मच राफी जी फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। अगर मैं कहूं कि एक लाइन में सम अप करें कि विन लाइफ टाइम किस तरह का इंस्टीट्यूशन है और यहां पर किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे?
2: अगर कल आने वाले वक्त में आपको ये स्ट्रेस ना हो कि आपकी इनकम कहां से आएगी, तो विन लाइफ टाइम पे आएं, सीखें कि हम आपको कौन सा बिजनेस सिखा सकते हैं, ये है विन लाइफ टाइम।
1: हाउ नाइस, क्या बात है कि मतलब अगले दिन उठकर सोचना ना पड़े कि आज क्या करें। रोज हम कहते हैं ना, कुआं खोदो और उसमें से पानी पियो, तो कोई चीज ऐसी होनी चाहिए ना कि बस स्मूथ चलती रहे हमारी लाइफ में, तो ऐसी स्किल हमें आ जाए। तो क्या ये स्किल इस लेवल पे पहुंचना, खैर आपका लेवल तो मेरे ख्याल से बहुत ही ऊंचा होगा क्योंकि यू हैव बीन डूइंग दिस फॉर सो लॉन्ग नाउ, लेकिन अगर मैं बोलूं सब्सटेंशली गुड अमाउंट कमाने के लिए कितना वक्त देना पड़ता है?
2: कुछ लोग 14 दिन में सीख जाते हैं, मोस्ट यूजर्स wow. हमारा सॉफ्टवेयर 3 माह के अंदर अंदर सीख लेते हैं। कुछ लोग थोड़ा एग्रेसिव आते हैं लर्निंग के मोड में, 4 आपकी क्लासेस होंगी, सिखाया जाएगा इन पर्सन, और उसके बाद आपके पास 8 मेंटर्स हैं, एक्सपर्ट सुपरविजन के साथ आप बैठ जाएंगे। खुद से आपने कुछ करना नहीं है, ना आपको इकोनॉमिक्स का पता होना चाहिए, ना आपको, तो सारी की सारी चीजें हम टेक केयर करेंगे। आपने सिर्फ आके फॉलो करना है, हमारे सिस्टम को देखना है, और फिर एवरी डे 100, 200, 300। आज भी हमने जो रिजल्ट्स अनाउंस किए, सिंगल डे 24 आवर्स, $1,500।
1: अमेजिंग अमेजिंग, क्या बात है, ब्यूटिफुल। तो इसके लिए राफी जी, जैसा आपने कहा कि किसी तरीके का प्रायर एक्सपीरियंस या कोई स्पेसिफिक नॉलेज होना जरूरी नहीं है, तो अगर मैं पूछूं कि जो भी हम ट्रेडिंग सीखते हैं, जो भी पैसा इसमें लगाते हैं, तो क्या उसके लिए हमारे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए इस काम को करने के लिए, रिस्क लेने के लिए?
2: नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी एक वाहिद फर्म है, हम कहते हैं कि ट्रेडिंग में आप आए और बिल्कुल अपना पैसा लेके नहीं आना, अपनी हार्ड एंड अर्निंग आपने किसी और कारोबार से बनाई है, अपने ट्रेडिंग में नहीं डालनी। हमारे पास ऐसी कंपनीज हैं जो आपको एज ए ट्रेडर राइट अवे एज ए कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लेती हैं, हम उनके साथ अफिलियेटेड हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ट्रेड करना है।
1: ओह वेरी नाइस। तो राफी जी, आपका जो सेमिनार होने लगा है सैटरडे, उसके लिए जरूर बता दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लिसनर्स पहुंचें और अपनी जिंदगी परफेक्ट कर लें।
2: जी ऑफ कोर्स, बिकॉज इस 5 मिनट के इंटरव्यू में पूरे वीक में चलता है, इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे सकते, लेकिन हमारा सेमिनार वेल ओवर 3 to 4 आवर्स जाता है। हमारा क्लेम है कि इस दोनों ऑफिस में होगा इस सैटरडे, आप आए, जब तक आपका आखिरी क्वेश्चन नहीं खत्म होगा हम पोडियम नहीं छोड़ेंगे।
1: वाओ, दैट्स अमेजिंग। तो वेल दोस्तों, 10 नंबर के फासलों पर है आपकी खुशी, आपकी एक ब्यूटीफुल सी लाइफ। कॉल कीजिएगा विन लाइफ टाइम में टू बुक योर फ्री सीट, नो ऑब्लिगेशन सीट फॉर द सैटरडे सेमिनार विच इज हैपनिंग इन द हार्ट ऑफ मिसिसागा, सैटरडे एट 1 PM। 905-206-1008, 905-206-1008, और विजिट winlifetime.com। थैंक यू सो मच राफी जी, फिर आपसे जुड़ेंगे। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।
2: थैंक यू जी, टेक केयर।
3: शॉन एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन ब्रॉट टू यू बाय शॉन मीडिया।
4: वेलकम आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, और अब जान लेते हैं भारत से जुड़ी हुई खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 67 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। सबसे पहले दिवंगत फिल्म स्टार धर्मेंद्र को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी एक्ट्रेस सांसद हेमा मालिनी ने ये सम्मान लिया। महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनकी लीडरशिप में इसी साल टीम ने वन डे वर्ल्ड कप जीता था। साल 2026 में कुल 131 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने हैं। 65 विजेताओं को अगले फेज में सम्मानित किया जाएगा, जिसकी तारीखें अभी सामने नहीं आई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन और लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट ना होने के कारण उनकी पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार से 30 जनवरी के फैसले को पूरी तरह लागू करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले की प्रगति की निगरानी हर 3 महीने में करेगा। केंद्र को हर 3 महीने पर प्रोग्रेस रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। और अब बात प्रेमानंद महाराज की। संत प्रेमानंद महाराज ने एक वीडियो जारी कर अपने शिष्यों और भक्तों को भावुक कर दिया, चिंता में ला दिया। इस अपील में उन्होंने कहा, बिल्कुल चिंता मत करो, हम मिलें या ना मिलें, बोलें ना बोलें, हम आप सबको बहुत प्यार करते हैं। अंतिम बात यही कि चिंता नहीं करनी, ना ये चिंता करनी है कि कैसे हमारा उत्थान होगा। बिना बोले तुम्हारे दिमाग में हम होंगे। 1 मिनट 19 सेकंड का वीडियो है, केले कुंज आश्रम ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया। 9 दिन हो चुके हैं प्रेमानंद महाराज की रात्रि की जो पदयात्रा है वो बंद है। शिष्यों ने तब बताया था कि प्रेमानंद महाराज की तबीयत ठीक नहीं है, वो भक्तों से एकांतिक मुलाकात भी नहीं कर रहे हैं। प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनी खराब हैं और उनको हफ्ते में 2-3 बार उनका डायलिसिस होता है। प्रेमानंद महाराज ने आगे कहा, देख लेना, तुम वही करोगे जो गुरुदेव कहेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, जो जहां जिस सेवा में आए उस सेवा में रहिएगा। खूब नाम जप करो, मंगल होगा, तुम्हारे गुरुदेव तुम्हारे दिमाग में बैठे रहेंगे। आप निर्भय निश्चिंत निशोक होकर भजन करो, हमारा जब मन होगा तब हम बोल देंगे। और अब खबर आगरा के एक चूड़ी कारोबारी के 16 साल के बेटे से जुड़ी हुई। जिप लाइन झूले से गिरकर जिनकी मौत हो गई, वो अपने माता पिता और भाई के सामने ही 45 फीट ऊंचे झूले से सिर के बल नीचे गिरे। ये लड़का जैसे ही जिप लाइन में एक छोर से दूसरे छोर की तरफ बढ़ा, उसकी सेफ्टी बेल्ट का जो हुक था वो टूट गया। रेलिंग से टकराता हुआ 16 साल का ये बच्चा नीचे गिरा। मौके पर ही तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि बेटा जब जिप लाइन झूले पर था तो नीचे से माँ और भाई उसका वीडियो बना रहे थे। पूरा हादसा उनके फोन में रिकॉर्ड हो गया। घटना शहर के ताजगंज इलाके की है, आगरा के ताजगंज इलाके की। मध्य प्रदेश के दमोह में मकान निर्माण के दौरान खुदाई में ब्रिटिश कालीन चांदी के सिक्के मिलने का मामला सामने आया है। मजदूरों के हिस्सेदारी मांगने पर विवाद बढ़ा और मामला पुलिस तक पहुंच गया। जांच में पहले 42 और बाद में 60 और सिक्के बरामद हुए। कुल 102 सिल्वर कॉइन मिलने के बाद पुलिस ने मकान मालिक जो कि एक टीचर हैं आलोक सोनी पर केस दर्ज कर लिया। मजदूरों का दावा है कि मौके से 35 किलो से ज्यादा चांदी के सिक्के और चांदी की रॉड निकली है। बिहार में एक शादी में जयमाला के वक्त दूल्हा बदल गया, इसके बाद लड़के वालों को बंधक बना लिया गया। ऐसी ही दिलचस्प खबर नेपाल से है। नेपाल में फ्लाइट में महिला पर कॉफी गिर गई, अब उसे 1,63,00,000 का मुआवजा मिलेगा। उधर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती मांग के बीच कॉफी कंपनी स्टारबक्स ने AI को नौकरी से निकाल दिया। वहीं जापान में एक कंपनी सिगरेट ना पीने वाले कर्मचारियों को 6 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी दे रही है। तो ये कुछ अजब गजब खबरें आपके लिए खास तौर पर। और अब खबर अमृतसर से जुड़ी हुई। यहाँ गुरुद्वारे में निर्माणाधीन लंगर हॉल की छत पर लगी लोहे की 200 किलोग्राम की शटरिंग प्लेट जो है वो गिर गई। जिस वक्त ये गिरी उस वक्त महिलाएं इस हॉल में जाप कर रही थी। प्लेट सीधे महिलाओं के ऊपर गिरी, जिससे महिलाएं उसके नीचे दब गईं। जब तक उनको बाहर निकाला जाता 2 महिलाओं की मौत हो चुकी थी। इसके अलावा बच्ची समेत 9 महिलाएं घायल हो गईं। मौके पर अमृतसर पुलिस पहुंची और घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया गया। और अब खबर बॉलीवुड से। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह पर फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने बैन लगा दिया है। ये फैसला सोमवार शाम को फिल्म डॉन 3 को लेकर फिल्म मेकर और एक्टर फरहान अख्तर के साथ हुए विवाद के बाद लिया गया। दरअसल रणवीर सिंह के अचानक इस फिल्म से बाहर होने के बाद फरहान ने वर्कर्स एसोसिएशन से इसकी शिकायत की थी। फरहान का कहना है कि फिल्म का प्री प्रोडक्शन शुरू हो गया था, इसके बाद रणवीर ने फिल्म छोड़ दी। इससे फिल्म मेकर्स को 45 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। रणवीर सिंह के खिलाफ नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव जारी कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पूरी फिल्म इंडस्ट्री को सख्त हिदायत दी गई है कि कोई भी रणवीर के साथ काम ना करे। तो शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी में न्यूज जंक्शन का ये स्टॉपेज यहीं तक। शुक्रिया।
3: आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812 416-569-7812।
5: You work hard, manage to make both ends meet. Right combinations do miracles. If tax and accounting is your need, think Rajiv Madan. Depth of experience, passion for accounting. Tajurba wahi jo kaam aaye, aapko fayda pahunchaye. Certified General Accountant, Rajiv Madan. Tax accounting ke sabhi pehluon par paini nazar. Fark aazmane pe pata chalega. Call CGA Rajiv Madan, 905-362-2200.
3: 970 Drew Road, Suite
5: 214B,
3: Mississauga.
5: CGA Rajiv Madan. Thoughts become things.
6: Sanjeev Puri of Star Life Insurance and Investment Inc. एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ. He can shop around for you for the best plans of insurance that will suit your budget and needs. Sanjeev Puri insurance plans में तो माहिर है ही, लेकिन high risk insurance plans के best rates दिलाने में बहुत ही माहिर है. तो अगर किसी को blood pressure, diabetes, heart attack, bypass surgery, liver या kidney के issues हो या insurance company ने आपकी insurance decline की है, तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए. और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232 416-890-3232.
3: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3. शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस।
1: आई है बड़ा सुनहरा मौका जो सरकार है, गवर्नमेंट है, आपके स्टडी प्रोग्राम को स्पॉन्सर करती है और साथ ही लिविंग एक्सपेंसेस के लिए 30,000 से 100,000 तक पर ईयर तक की फंडिंग भी देती है, जिसमें लगभग आधा हिस्सा नॉन रिफंडेबल ग्रांट होता है। अगर आप पीआर, सिटीजन, प्रोटेक्टेड पर्सन या न्यू कमर है, फैमिली इनकम 70,000 से कम है, तो आप घर बैठे फुली ऑनलाइन इजी टू पास कोर्सेज करके नई स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। और इसके बारे में ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ नागपाल जी जुड़ने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं नंबर बता दूं, कॉन्टैक्ट नंबर मैजिकल नंबर 4372643175 4372643175. नागपाल जी, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द शो।
7: थैंक यू वेरी मच।
1: और नागपाल जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि यूनी ग्लोबल एडवाइजरी इनको गवर्नमेंट फंडेड कोर्सेज और जैसे लिविंग एक्सपेंसेस ग्रांट के लिए एजुकेशन कंसल्टिंग करते हुए कितना वक्त हो गया, कितने साल हो गए?
7: जी, हमें 7 ईयर्स हो चुके हैं गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम्स में हम डील करते हैं, एजुकेशन कंसल्टिंग कर रहे हैं हम 7 ईयर्स से, एंड हजारों क्लाइंट को ऑलरेडी असिस्ट कर चुके हैं। हमारी हमारा प्रोडक्ट के सर्विस डिफरेंट क्यों है? हम उन कोर्सेज में डील करते हैं जिनमें आपकी जेब से पैसे नहीं जाते। ऑन अदर हैंड आते हैं, कैसे आते हैं? गवर्नमेंट उन्हीं प्रोग्राम को स्पॉन्सर करती है जो एक पैरामीटर पे खड़े उतरते हैं, ठीक है। आप पढ़ेंगे, गवर्नमेंट फीस पे करेगी उस प्रोग्राम की, और साथ में आपको रहने खाने के लिए, लिविंग एक्सपेंसेस कवर करने के लिए माँ बाप की तरह आपको फंडिंग देती, जो कि सीधे आपके अकाउंट में आती, मेरे अकाउंट में नहीं आती। 30,000 से 100,000 की फंडिंग होती है, और डिपेंडिंग ऑन फैमिली साइज, बच्चे ज्यादा हैं, फैमिली साइज ज्यादा है, तो हुकूमत आपको तालीम हासिल करने के लिए आपके अकाउंट में फंडिंग मुकम्मल देती है। और अगर फैमिली साइज छोटा है, अगर आप मैरिड है, तब भी अच्छी फंडिंग बन जाती है। आप हमें कॉल करें, हमारे ऑफिस आए, पीआर, सिटीजन, प्रोटेक्टेड पर्सन आपका स्टेटस होना चाहिए, तो आप देर ना करें, 437-264-3175 पे कॉल करें, ऑफिस भी आए हमारे।
1: जी 4372643175। अब नागपाल जी, क्या एलिजिबिलिटी है और क्या आप फंडिंग की कोई रेंज बता सकते हैं एग्जाम्पल के साथ?
7: हाँ जी, एलिजिबिलिटी देखिए जी, पहले एज की जो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, हमारे क्लाइंट्स हैं जिनके 50, 60, 70, 30, 40, हर एज ग्रुप हमारे पास क्लाइंट्स हैं, ज्यादातर क्लाइंट्स जो है उनकी एज 50 साल से ज्यादा ही है, और पीआर सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन आपका स्टेटस होना चाहिए। मेन मेन मेन थिंग, आपकी अगर फैमिली इनकम 2024 के नोटिस ऑफ असेसमेंट पे लेस देन $70,000 है तो ही आपको इसका बेनिफिट है। आप उबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, स्मॉल बिजनेस ओनर है, अनएम्प्लॉयड है, आपको अच्छा बेनिफिट है, हाउस वाइफ है, सिंगल मदर है, अच्छा बेनिफिट है, और लाइक कुछ कैच नहीं है जी। जैसे गवर्नमेंट बिलियन डॉलर यूक्रेन को दे देती है, कितना, $30 बिलियन, कितना होता है $30 बिलियन बताइए, $1 बिलियन गवर्नमेंट में नेशनल फूड प्रोग्राम, बच्चों को जो खाना मिलता है स्कूल के अंदर, $1 बिलियन खर्चा है उसका 5 साल का, तो मतलब 30 बिलियन, इतना पैसा गवर्नमेंट ने यूक्रेन को दे दिया, और गवर्नमेंट जब सिर्फ $4 बिलियन एजुकेशन में लगाती है, मैं लगता है भाई गवर्नमेंट पैसे क्यों बांट रही है, पैसे क्यों बांट रही है गवर्नमेंट। बट हाँ, उनका भी सपना पूरा होने वाला है, क्यों, 1 अगस्त के बाद जो नया अकेडमिक सेशन स्टार्ट हो रहा है, गवर्नमेंट उसमें ग्रांट्स में कट कर रही है। आज अगर फैमिली ऑफ फोर की फंडिंग मिलती है $80,000 दोनों पढ़ते हैं, तो उसमें से $40,000 नॉन रिफंडेबल ग्रांट्स है जी, बाकी ऑप्शनल लोन एट 0% है। तो आप हमें कॉल करें, हमारे ऑफिस आए
1: जी, क्या बात है, नंबर यहाँ पर बता दूं 4372643175। अब नागपाल जी, इसमें एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है राइट, और
7: रिस्ट्रिक्शन नहीं है,
1: किन लोगों के लिए सुटेबल है सबसे ज्यादा?
7: हाँ जी, एज की कोई रिस्ट्रिक्शन, इसमें एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी ना एज पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करती। हमारे क्लाइंट्स हैं जो पेंशन पे हैं, कर रहे हैं, फंडिंग आ रही है, लास्ट वीक 30 बंदों की फंडिंग उनके खाते में डायरेक्ट गवर्नमेंट ने डाली है, 30। तो इसमें डायरेक्ट, तो इसमें कोई कैच नहीं जी, आप आज ज्वाइन करते हैं, आपको विद इन 30 to 90 days आपको गवर्नमेंट से ईमेल आता है, आपका अकाउंट पूछते हैं, आपको अकाउंट डालते हैं, कोर्स स्टार्ट करते हैं, सोखे से कोर्सेज में भाई आसान कोर्सेज हैं, हम आपको मिडिल एज के आप क्लाइंट हैं, हम आपको आईआईटी में डालेंगे नहीं, जो आपको बैग पैक करके लंच बॉक्स लेके जाना पड़े कॉलेज, फुली ऑनलाइन कोर्सेज हमारे पास, दो घंटे मंडे टू फ्राइडे, कुछ ऐसे कोर्सेज में टीचर नहीं है, सेल्फ स्टडी वाले कोर्सेज हैं, गवर्नमेंट फंडेड है, गवर्नमेंट फीस पे कर रही है, आप स्किल सीख रहे हैं मैनेजमेंट की, अकाउंटिंग की, आप उसका अपना करियर बनाते हैं, ज्यादा फंडिंग कर रहे हैं कितनी, $30,000 to $100,000 की आपके खाते में डायरेक्ट
1: जी, क्या बात है, नंबर यहाँ पर बता दूं 4372643175। अच्छा नागपाल जी, जिन लोगों को डाउट होता है कि गवर्नमेंट फंडिंग क्यों कर रही है, कोई कैच होगा, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
7: गवर्नमेंट डेंटल केयर में इन्वेस्ट करती है, आप मांगे चलें, और जेंडर इक्वालिटी में वो तो मेरा फेवरेट है, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का बजट है 965 मिलियन का जेंडर इक्वालिटी के लिए, जो कि 650 ऑर्गेनाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कनाडा के अंदर नहीं, कनाडा के बाहर। फॉर एग्जाम्पल, वियतनाम में गवर्नमेंट ने $8.2 मिलियन दिया राइस की फार्मिंग में, इक्वालिटी के लिए, जेंडर इक्वालिटी के लिए राइस फार्मिंग में, वियतनाम में, ग्लोबल अफेयर्स कनाडा की जाके चेक कर ले, जो गवर्नमेंट ऐसी चीजों में इन्वेस्ट कर सकती है, तो भाई साहब एडुकेशन में करते कोई कैच नहीं है, ऑफिस आए, कॉल करें, इजी कोर्सेज करें, फुली ऑनलाइन करें, फंडिंग हासिल करें, स्किल हासिल करें।
1: वंडरफुल, 4372643175। अब लास्ट में बताएं नागपाल जी, आपकी फीस कितनी है और पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है, क्या करना होगा टू गेट द फंडिंग?
7: हाँ जी, हम जब हम फंडिंग का वर्ड सुनते हैं हमारे दिमाग में कैच आता है, यहाँ पे कुछ कैच नहीं है, हम हजारों को हेल्प कर चुके हैं 7 ईयर से बिजनेस में, कैच क्यों नहीं बताओ? जितनी इनकम कम है उतनी ज्यादा फंडिंग आती है गवर्नमेंट से आपको, जितने ज्यादा किड्स हैं उतनी ज्यादा फंडिंग आती है। डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं जी? नोटिस ऑफ असेसमेंट, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, तो हैंकी पैंकी अप्रोच है ही नहीं, कुछ आपको ट्रांसपेरेंट है भाई साहब, कुछ है कुछ, गवर्नमेंट का डेटा गवर्नमेंट को जा रहा है, कहाँ ही फेरी करेंगे आप, बैंक थोड़ी है कोई, तो इसलिए आप इसमें कुछ कैच नहीं है, फंडिंग आपके पास डायरेक्ट आती है। हमारी फीस कितनी है? $199 से लेके $499 वन टाइम फीस है, कोई कमीशन कोई कैच है ही नहीं। हमारे पास क्लाइंट आते हैं जो दूसरा तीसरा कोर्स करने के लिए हमें राइटर पे एनरोल जाते हैं, क्या कहते हैं सर, पहले किसी ने 3500 लिया, पहले किसी ने 4000 लिया, आप तो राइटर पे एनरोल जाते हैं, इनको पता है चीज क्या है, ये जो रह गए हैं वो भी ना रुकें, क्योंकि 2 महीने बाद गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज कर रही है। हमारा बिजनेस ऐसा नहीं है, हम आज कहेंगे मदर्स डे पे 50% ऑफ, फादर्स डे पे 100% ऑफ, जो पॉलिसी आज है वो कल नहीं है। तो एनरोल करें, नंबर हमारा है 4372643175, नंबर अगेन 4372643175। ऑफिस हमारा 200 एक्सपर्ट बुलेवर्ड पे, हर एंटा रिडेरी पे, ऑफिस भी आप आ सकते हैं, 6 डेज खुला होता है हमारा ऑफिस। नंबर मैं दो बार और दे रहा हूँ, नोट करें प्लीज, 4372643175, 4372643175।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया नागपाल जी हमसे जुड़ने के लिए और फिर आपसे मुलाकात होती है बहुत जल्दी. ऑल द बेस्ट, टेक केयर.
7: थैंक यू.
3: बॉलीवुड में रोजाना बदले जमाना. शॉन एक्सप्रेस पर ये रहा लेटेस्ट गाना.

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ
3: ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ ਗੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇਂ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ
2: ਫॉर ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ kandaoptical.com ਔਰ ਕਾਲ 416-922-5263 ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦ ਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਸਟ
4: घर या बिजनेस के लिए चाहिए पैटियो कवर परगोला बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स
5: तो कॉल करें कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी ब्रैम्पटन का ट्रस्टेड नाम फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स
4: बेस्ट क्वालिटी स्टाइलिश डिजाइंस और ग्रेट प्राइसिंग चाहे सनरूम हो या हो कस्टम कैनोपी सब कुछ मिलेगा यहाँ
5: फ्री कोटेशन के लिए अभी कॉल करें 416-831-4790 दैट्स 416-831-4790 या पहुंचो 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन
4: कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी बनाए आपकी स्पेस सुंदर और फंक्शनल वेलकम टू मद्रास रेस्टोरेंट स्वाद स्वाग और साउथ का तड़का फ्राइडे सैटरडे और संडे एंजॉय कीजिए ऑथेंटिक साउथ इंडियन अनलिमिटेड थाली स्टार्टिंग एट सिर्फ 20-26 20 प्लस साउथ इंडियन डेलिकेसीज गर्मा गर्म और अनलिमिटेड पराठा इडली वड़ा स्पाइसी एरोमेटिक करीज एंड मोर अनलिमिटेड सर्विंग्स अमेजिंग वैरायटी और प्राइस जो पॉकेट को भी खुश करे डोंट फॉरगेट टू ट्राई देयर सिग्नेचर डोसास बिरयानी एंड लॉट मोर मद्रास रेस्टोरेंट 905-789-6600 दैट्स 905-789-6600
6: Team Hashtag Homes and Rahul Kashyap Lekar aaye hain first time home buyers ke liye an amazing opportunity. Freehold townhomes from $499,000 and detached homes from $605,000. First time home buyers can enjoy up to $130,000 in savings with new rebates. Unlocking home ownership for the first time home buyers with the closing of 2027. Agar aap is opportunity ko grab karna chahte hain, then get in touch with Team Hashtag Homes today at 647-993-4844.
7: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं और मैं आपकी अपनी अंजुम कृषि आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है आज ही मुझे कॉल करें आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है 416-570-0157.
8: बिल्कुल दोस्तों कभी हम कार एक्सीडेंट जैसी परेशानी में जब पड़ जाते हैं तो हमें लगता है कि अगला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए बहुत सारी चीजें आने वाली जिंदगी में डिपेंड करती हैं आपके पहले स्टेप के ऊपर और वक्त तो भाई वक्त का तो क्या कहें कुछ भी नहीं कह सकते वक्त कैसा भी हमारा हो सकता है कभी चैलेंजिंग होता है कभी अच्छा होता है लेकिन जब चैलेंजिंग वक्त होता है उस वक्त हमारे जो स्टेप्स होते हैं वो हम कौन सी कदम उठा रहे हैं वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है वो आपके लिए मील का पत्थर साबित होते हैं तो आप अगर एक पॉजिटिव चीज़ करना चाहते हैं एक सही कदम उठाना चाहते हैं एक्सीडेंट होने के बाद तो इस नंबर को डायल करना आपके लिए सबसे बड़ी हेल्प साबित हो सकती है 416-570-0157 हमारे साथ जुड़ेगा बड़ा रिनाउंड नेम इसी फील्ड का अंजुम कुरैशी जी जिनकी मदद से आप पहुंचते हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट लॉयर्स तक अंजुम जी वेलकम टू द शो
9: बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम सुनने वालों को भी आदाब नमस्ते सत श्री अकाल कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जिसमें आपको अगर सही राय ना मिले तो आपको उसी वक्त आप कोई गलत फैसला कर लेते हैं और वो गलत फैसला आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपका कार एक्सीडेंट होता है, आप बहुत तकलीफ में हैं मगर आप एट फॉल्ट हैं। आपने किसी से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, उसने आपसे कहा कि नहीं नहीं तुम्हारा फॉल्ट भी है, अगर तुम अगर इंजरी हुई भी है तो इंश्योरेंस कंपनी को मत बताओ वरना तुम्हारी इंश्योरेंस बढ़ जाएगी। लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि आपने जो इंश्योरेंस ली है वो आपने अपने पीस ऑफ माइंड के लिए ली है और इंश्योरेंस कंपनी ने आपसे वादा किया है कि बेशक आप एट फॉल्ट होते हैं लेकिन आपको अगर आपके पास फुल कवरेज है तो आपको गाड़ी का भी आपको मिलता है, रेंट अ कार भी मिलता है और सबसे बड़ी बात यह है कि पर्सनल इंजरी की जितना भी ट्रीटमेंट है या उसका सेटलमेंट है वो जरूर मिलता है। लेकिन आपने किसी ऐसे से पूछा जिसको नहीं मालूम था तो उसने अपनी अपने दिमाग के मुताबिक उसको अपना फैसला दिया। नो मैटर वॉट, अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है एट फॉल्ट और आपने जाके किसी को मारा है और कोई जब वो क्लेम करेगा और इंश्योरेंस कंपनी में अपना क्लेम जब ओपन करेगा, आप चाहे अपने हक का पैसा लो या ना लो, अगर अगले ने आपको थर्ड पार्टी ने अगर आपको सू किया और अगर आपसे अपने इंजरी का तमाम तर बेनिफिट लिए तो आपका इंश्योरेंस बढ़ना ही बढ़ना है। और ये वो चीजें हैं जिसके लिए हम कहते हैं कि चलो अगर हमारा इंश्योरेंस थोड़ा बहुत बढ़ता भी है लेकिन कम अज कम हर चीज लीगल तरीके से अगर हो रही है तो हमें उन चीजों का ख्याल रखना होता है। ऐसी बहुत सारी बातें, जब आपका कार एक्सीडेंट होता है तो आपको हमारी जरूरत पड़ती है और हम कहते हैं कि जब आपका कार एक्सीडेंट होता है बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं, बहुत सारी डिफरेंट चीजें होती हैं, जब आप हमसे बात करते हो तो आपको पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए। 416-570-0157 मेरा नंबर है, किसी भी कार एक्सीडेंट होने की सूरत में आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
8: थैंक यू सो मच अंजुम जी फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। दोस्तों, आपका राइट क्या है, आपका हक क्या है, ये हमें कभी कभी नहीं पता होता तो उसके लिए हमें एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है। तो नंबर नोट कर लें दोस्तों, 416-570-0157 अंजुम कुरैशी। आप हैं शालिनी के साथ CMRFM 101.3 पर शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी। बड़ा इंटरेस्टिंग आज का टॉपिक हमारा चल रहा है और उस टॉपिक में हमने आपसे पूछा था कि अगर आपकी जिंदगी में आपको एक दिन टेंशन फ्री छुट्टी मिल जाए तो उस दिन आप क्या करना चाहोगे सबसे पहले, ये हमारा आपसे सवाल था। जवाब दे सकते हैं बाय कॉलिंग अस ऑन द स्टूडियो नंबर 416-593-0055, दैट्स 416-593-0055। कहते हैं दोस्तों, कभी दिल हमारा खुद ही सवाल पूछता है, क्या ये प्यार है या कोई ख्वाब, जब जवाब ना मिले तो समझ लो इश्क हो गया जनाब। बहुत प्यारा सा गीत आपकी नज़र हम करने जा रहे हैं। फिल्म का नाम है साजन और ये गाना आप तक पहुंचा रहे हैं यश विंडोज एंड डोर्स। अगर आपको चाहिए वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विंडोज एंड डोर्स रीजनेबल प्राइस में तो यश विंडोज एंड डोर्स सर्विसेज देते हैं ऑल ओवर ओंटारियो। खुद ही मैन्युफैक्चरिंग है, खुद ही इंस्टॉल करती है उनकी एक्सपर्ट इंस्टॉलर टीम, यानी नो मिडलमैन, नो कॉम्प्रोमाइज, सीधे फैक्ट्री से आपकी प्रॉपर्टी तक। सुपीरियर स्टाइल, गुड लुक्स, एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्वालिटी, सिक्योरिटी, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, सब कुछ, और उसके बाद प्राइस ऐसी जो आपकी पॉकेट को सूट करे। फ्रेंचाइज ऑप्शन भी अवेलेबल है इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं फास्ट ग्रोइंग टीम को तो कॉल करें यश विंडोज एंड डोर्स में धर्म जी को 416-732-3600, दैट्स 416-732-3600। और ये गाना आप तक पहुंचा रहे हैं जिए तो जिए कैसे बिन आपके, देओल ट्रैवल आप तक ये गाना पहुंचा रहे हैं। दिल्ली से टोरंटो स्पेशल फेयर लगा है अक्टूबर से जनवरी फरवरी तक, राउंड ट्रिप $1,320। दिल्ली से टोरंटो अक्टूबर एंड नवंबर में वन वे जा सकते हैं 830। टोरंटो से अमृतसर या दिल्ली सितंबर से अक्टूबर राउंड ट्रिप लगा है $1,650 विद टू बैग्स। लिमिटेड टाइम ऑफर है। इटोबिको एंड ब्रैम्पटन टू लोकेशंस टू सर्व यू। देओल ट्रैवल 905-588-5100 एंड 905-588-4200, 588-5100 एंड 588-4200। बहुत प्यारा सा गीत आपकी नजर करेंगे फ्रॉम द मूवी साजन, मस्ती की रेलगाड़ी पर।

अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: मेडिकल इंश्योरेंस फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, विजिटर्स इंश्योरेंस एंड सुपर विजा इंश्योरेंस के बेस्ट रेट एंड बेस्ट प्लान के लिए एक ही नाम, संजीव पुरी।
2: संजीव शॉप अराउंड करके आपको बेहतरीन रेट और प्लान की गारंटी देते हैं, जिसमें खांसी, जुखाम, बुखार, स्लिप एंड फॉल, वॉकिंग क्लिनिक डॉक्टर की फीस, मेडिसिन एंड टेस्ट के खर्चे से लेकर एम्बुलेंस, हॉस्पिटलाइजेशन एंड फ्यूनरल तक सब कवर्ड होता है।
1: यू विल गेट फुल रिफंड इफ सुपर विजा इज डिक्लाइंड।
2: इसके अलावा बच्चों की RESP, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, फ्यूनरल इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लिए भी कॉल करें संजीव पुरी 416-890-3232-890-3232।
3: शगन का दिन चढ़ेगा, सजना घर आएंगे, टोली लेकर जाएंगे, दुल्हन सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।
4: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस, इम्प्रेस, इम्प्रेस।
5: वेलकम बैक दोस्तों, मस्ती की रेलगाड़ी पर आपका स्वागत है ऑन CMRFM 101.3, और मैं हूं शालिनी। डायरेक्ट नंबर टू रीच अस ड्यूरिंग और आफ्टर द शो 416-569-7812, 416-569-7812। और दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आप लोगों के लिए आज हम लेके आए थे कि जिंदगी की सबसे बड़ी स्ट्रगल है कि हमें बहुत कुछ चाहिए। हमें नींद भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, अपनों का प्यार भी चाहिए, मेंटल पीस भी चाहिए, लेकिन वक्त नहीं होता हमारे पास। तो आज मेरा आपसे सवाल ये था कि किसी एक दिन अगर आपको वक्त मिलता है, नो टेंशन वक्त मिलता है सिर्फ अपने लिए बगैर किसी स्ट्रेस के, तो वो जब वक्त मिलेगा आपको एक दिन का, उस दिन आप सबसे पहले क्या करना चाहोगे? क्या चीज़ एक ऐसी है जो आपका दिल करता है कि मैं करूं, लेकिन काम जो है इतने होते हैं आपके जहन में कि आपको वक्त नहीं मिलता वो चीज़ करने का? तो ये बताइए कौन सी वो एक ऐसी चीज़ है। पहले आवर में हमारे साथ कुछ कॉलर्स जुड़े थे, किसी ने कहा कि मैं हंसना चाहता हूं, खिलखिलाकर हंसना चाहता हूं। एक ने कहा मैं नेचर के साथ रहना चाहता हूं, नेचर से बात करना चाहता हूं और अपना फ़ोन साइड में रखना चाहता हूं, फ़ोन को अपनी उस दिन के लिए अपनी ज़िंदगी से बेदखल करना चाहता हूं। एक ने कहा कि मैं अपने दोस्तों के साथ क्रूज़ पे जाना चाहता हूं। तो अलग अलग चीज़ें हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं। और एक ने कहा कि मैं जो हूँ वो सिर्फ और सिर्फ अपने साथ वक्त बिताना चाहता हूँ, मैं खुश रहना चाहता हूँ, मैं सोना चाहता हूँ, मुझे सोने का मन करता है और नींद मुझे पूरी नहीं मिलती रोज़ाना इतनी दौड़ती भागती तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में। तो बताइएगा दोस्तों आप कि आप कौन सी वो एक ऐसी चीज़ है करना चाहेंगे सबसे पहले जिस दिन आपको वक्त मिलता है, पूरा दिन आपके पास होगा जिसमें कोई सोशल कमिटमेंट्स नहीं होंगे, कोई टू डू लिस्ट नहीं होगी, कोई काम नहीं होंगे आपके पास, शायद फ़ोन भी आप ना रखें। अगर आप चाहते हैं फ़ोन ना रखें तो ना रखें। तो कौन सी वो एक चीज़ है जो आप करना चाहेंगे, खुलकर हमसे बात कर सकते हैं ऑन एयर 416-593-0055। हमारी लाइंस खुली हुई हैं और डेफिनेटली आप बता सकते हैं कि कौन सी वो एक ऐसी चीज़ है जो आपका दिल करता है मैं सबसे पहले करूँगा या करूँगी जिस दिन मुझे वक्त मिलेगा अपने लिए। और इनफैक्ट मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपको याद है कोई ऐसा दिन जब आपने अपने आप से बात की होगी, अपने लिए कुछ किया होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई आसपास ऐसा कोई दिन होगा आपकी जिंदगी में जिसमें आपने अपने आप से बातें की होंगी, अपने आप का जो दिल किया होगा, लोगों को खुश करने के लिए नहीं एंजॉय किया होगा अपने दिन में, सोशली अपनी गैदरिंग्स को एक साथ कलेक्ट करके अपने करीब लाने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए आपने अपना वक्त ज़रूर इन्वेस्ट किया होगा। मैं ये नहीं कहूँगी वक्त ज़ाया किया होगा, वक्त डेफिनेटली हम इन्वेस्ट करते हैं अपनों के साथ, लेकिन कौन सा ऐसा वक्त है जो आपने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को दिया होगा, अपने आप के जीने के लिए आपने वो वक्त दिया होगा, वो मुझे बताइए कि आपने when was the last time you spent time with yourself, you spent time on something that you absolutely loved in your life, हमें बताइए वो कौन सा टाइम था और वो कौन सी एक चीज है आप करना चाहेंगे जिस दिन आपको अपने आप के लिए वक्त मिलेगा, जिस दिन कोई आपके पास काम नहीं होगा। ये है आज का टॉपिक, बताइएगा दोस्तों इस हवाले से आप क्या सोचते हैं। 4165930055 है स्टूडियो का नंबर, फ्यू मोर मिनट्स के लिए हमारी लाइंस आर ओपन नाउ। और अगला गीत बम्पर टू बम्पर, बाहर जो है ट्रैफिक है तो बम्पर टू बम्पर सेगमेंट हमारा आने जा रहा है, जो स्पॉन्सर कर रहे हैं वैनगार्ड पेस्ट कंट्रोल, योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट पेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ, रेजिडेंशियल कमर्शियल इंडस्ट्रियल पेस्ट कंट्रोल, वाइल्ड लाइफ रिमूवल एक्सक्लूजन, साथ ही इनके जो इको फ्रेंडली सेफ ट्रीटमेंट्स होते हैं, रिस्पॉन्स टाइम बड़ा फास्ट है, कस्टमाइज्ड इनके मेंटेनेंस प्लान्स हैं, 100% सेटिस्फैक्शन गारंटीड है। आज ही अयान काशिफ जी से बात कर लीजिए दोस्तों, 6479664355 6479664355। और साथ ही दोस्तों बहुत सारी लाइफ में कभी कभी ऐसा सिचुएशन आती है कि जब हमारे घर में बहुत सारा काम निकलता रहता है, जैसे आपका टब है उसमें क्रैक आ गए हैं, आपके प्लम्बिंग इश्यूज हैं, इलेक्ट्रिकल इश्यूज हैं, आपकी टाइल्स में कोई दरार आ गई है, पानी लीक हो रहा है वगैरह वगैरह, या आपको पूरी तरह से घर को रेनोवेट करना है, सेपरेट एंट्रेंस करानी है, बेसमेंट बनवाना है, कस्टम किचन बनाने हैं, कस्टम वॉशरूम्स कंस्ट्रक्ट कराने हैं, घर को नया लुक देना चाहते हैं, बैकयार्ड में आप कुछ नया करना चाहते हैं, तो हैंडीमैन सर्विसेज के साथ साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्टिंग जॉब्स बहुत ही अमेजिंग काम करते हैं क्वालिटी कंस्ट्रक्शन के, राजेश शर्मा जी। नंबर नोट कर लें टू कॉल और टेक्स्ट फॉर ऑल दीज जॉब्स, 6472102075 6472102075। आप है मस्ती की रेलगाड़ी पर शालिनी के साथ ऑन CMR FM 101.3। और डायरेक्ट नंबर टू रीच अस ड्यूरिंग और आफ्टर द शो, 4165697812 4165697812। और दोस्तों आज का जो बम्पर टू बम्पर है आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, हमारे साथ एक मेहमान जुड़े हैं, उनके बारे में बताऊंगी, आज से हमारा शो ज्वाइन कर रहे हैं उनके बारे में जरूर बताएंगे। पहले सुनते हैं बम्पर टू बम्पर, चोली के पीछे क्या है ये गाना, पुराने दौर में कैसे आया था और फिर नई थाली में कैसे परोसा गया इस गाने को, दोनों गाने बैक टू बैक आपकी नजर।
3: Sean Express, मस्ती की रेलगाड़ी, इट्स बम्पर टू बम्पर।

0: शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी, इट्स बम्पर टू बम्पर।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है। हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए।

चोली के पीछे क्या है, बहुत मजेदार गाना। और दो अलग अलग दौरों को एक साथ मिक्स किया हमने, बंपर टू बंपर में शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी, सीएमआर एफएम 101.3। आप है मेरे यानी शालिनी के साथ शो के बाद। डायरेक्ट नंबर टू रीच अस 416-569-7812, 416-569-7812। दोस्तों, अगर घर में आप को कोई भी रिपेयर करानी हो, इंस्टॉलेशन कराना हो, इंटीरियर या एक्सटीरियर, साथ ही दोस्तों आपको किचन, आपका बाथरूम, आपके बेसमेंट में या रूफ में कुछ काम कराना हो, और इसके अलावा डेक्स पर काम कराना हो, डोर्स या विंडोज, अप्लायंसेस, ड्राईवॉल, फ्लोर वर्क, पेंटिंग, फिनिशिंग, ये सारा काम अगर आप कराना चाहते हैं तो बहुत ही अमेजिंग काम हो जाएगा, जो सही काम होगा फर्स्ट टाइम में। तो गुड रिव्यूज के साथ अजीम जी गिव्स यू द ऑनेस्ट, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सर्विसेज, और क्वालिटी वर्क डिलीवर करते हैं, दैट इज गारंटीड। आपका घर जो है गुड हैंड्स में है। आप आज ही काम कॉल करें अजीम जी को 647-280-8806, 647-280-8806। और इसी के साथ दोस्तों, इट्स अ ब्यूटिफुल डे टुडे, और आज के दिन में क्या क्या खास हो रहा है ये भी आपको जाते जाते बता दूं। रेस्ट ऑफ द डे आप लोग क्या कर सकते हैं, मेमोरियल डे है आज, डेकोरेटिंग डेकोरेशन डे भी कहा जाता है, उन सोल्जर्स को ऑनर करने के लिए जिन्होंने अपने देश के लिए सेक्रीफाइस दिया, अ मोमेंट टू रिमेम्बर, रिस्पेक्ट एंड सल्यूट। और आज डे है नेशनल वाइन डे, यानी आज थोड़ा रिलैक्स कीजिए, अनवाइंड कीजिए, सिप एंड चिल। सेल्फ केयर लवर्स के लिए आज है नेशनल बाथ बॉम्ब डे, बबल बाथ, रिलैक्सिंग म्यूजिक, परफेक्ट मी टाइम वाइब्स आपकी हो सकती हैं जिंदगी में। और प्रैक्टिकल लाइफ के लिए आज है नेशनल ब्राउन बैगेट डे, यानी होम पैक्ड लंच ले जाने का दिन है, हेल्दी भी और बजट फ्रेंडली भी। और आज जो लोग बाथरूम सिंगर्स हैं ना, या प्रोफेशनल सिंगर्स हैं जो बाथरूम में गाते हैं या गाड़ियों में गाते हैं, जहाँ भी, तो आज ज़रूर गा लीजिए, गाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि टुडे इज़ नेशनल सिंग आउट डे। इसके अलावा आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अवेयरनेस डे है, नेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे। ये दिन हमें रिमाइंड करता है कि बच्चों की सेफ्टी अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है। वर्ल्ड थायराइड डे भी है, थायराइड हेल्थ को इग्नोर ना करें, अवेयरनेस इज the key। And last but not the least, National Tap Dance Day, rhythm, beats or footwork, dance your stress away। चलिए दोस्तों, आप डांस कीजिए, enjoy कीजिए आज का दिन, अपनी दुआओं में हमें हमेशा याद रखें। शो के बाद फॉर ऑल योर एडवर्टाइजिंग नीड्स, हमारा डायरेक्ट नंबर 416-569-7812, 416-569-7812। कल होगी मुलाकात फिर से 2 से 4 मस्ती की रेलगाड़ी पर, तब तक के लिए शालिनी को दे इजाजत, नमस्कार।

0: listen to us around the universe. www.cmr.fm.
1: रेडियो वॉइस एक ऐसा रेडियो शो जो सुने आपकी बात,
2: जो हो आपके दिल के करीब,
1: जो मनाए आपके त्योहार,
2: रखे चुटकुले तैयार,
1: जहाँ पर मिले आपके सवालों के जवाब,
2: जहाँ मचे शायरी की धूम,
1: जो दे खबरें अप टू डेट
2: और दे ढेरों इनाम,
1: आपका अपना रेडियो शो रेडियो वॉइस
2: जतिन के संग
1: ऑन CMR 101.3 FM. ट्यून इन मंडे टू फ्राइडे और लॉग ऑन टू CMR.FM.
3: The views and information shared by the guests and their ads are their own and shall not be construed as advice from Radio Voice hosts. We make no recommendations or endorsements for radio show programs, products or experiences mentioned on air. Personal views expressed by the guests, ads, interviews will always be presented as such. No liability, explicit or implied, shall be extended to Radio Voice or the show hosts whose words and or opinions appear on the show.
4: हाँ जी मित्र भाइयों, ये वॉइस और हम हैं आपके दोस्त यतीन। दिल की दरिया को दिल में उतारे हुए हम तुम्हारे हुए, तुम हमारे हुए। दिल की दरिया को दिल में उतारे हुए हम तुम्हारे हुए, तुम हमारे हुए। तुम हुए देवता मन के मंदिर के, हम पुजारी तुम्हारे हुए। और मिल गई आज सारे जहां की मोहब्बत, मिल गई आज सारे जहां की मोहब्बत, क्योंकि हर पल हमें आप ही के सहारे मिले। तुम हमारे हुए, हम तुम्हारे हुए। ये वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन।

0: क्या बात है, उलझन में लग रही हो?
1: उलझन ही तो है, एक तरफ चिंटू के दांतों में कीड़ लग गई है, चॉकलेट इतने खाता रहता है, और दूसरी तरफ माँ जी के दांतों में दर्द हो रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
0: समझना क्या, डॉक्टर नील गज्जर को फोन करो, बहुत ही रिनाउंड डेंटिस्ट है, और उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा और मेरा भी अपॉइंटमेंट बना लो दांत की सफाई करने के लिए। ये लीजिए फोन नंबर 289-401-000।

0: 9 289 401 0009.
1: Dr. Neil Gajar, 735 Tween Avenue, Suite 16, Mississauga. Call 289 401 0009.

0: Learn to earn at Win Lifetime. Call 905-206-1008.
1: घर कहीं भी लेना हो

0: फॉर एनी इन्फॉर्मेशन कॉल सौरभ सबरवाल 6478648844 दैट्स 6478648844
1: और विजिट teamsabarwal.com
2: योर सर्च एंड्स हियर
3: इसके पीने से तबीयत में रवानी आए इसको बूढ़ा भी जो पी ले तो जवानी आए
4: वाओ मॉम Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
5: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
4: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi and my favorite, samosa chaat and bhel.
6: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
7: वक्त जो है वो बदल चुका था। रामाधीर ने उस गाने को नहीं पहचाना पर वो रेडियो वॉइस को पहचान गया था। ये वो जमाना था जब लोग अपना ईमेल का पासवर्ड भूल जाया करते थे पर रेडियो वॉइस सुनना नहीं। और उसके बाद रेडियो वॉइस पर जो एडवर्टाइजर्स का ताता शुरू हुआ उससे पूरे FM रेडियो का समीकरण ही बदल गया। एडवर्टाइजिंग जो है उसके लिए आज ही कॉल करें 416-660-8545।
8: हाँ जी मित्र भाइयों, रेडियो वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। इस वक्त कनाडा के ओंटारियो से एक बेहद चौंकाने वाली और बड़ी खबर आ रही है। पील रीजनल पुलिस ने एक ऐसे बड़े आपराधिक नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है जो साउथ एशियन बिजनेस मालिकों को निशाना बना रहा था। पुलिस ने हिंसक जबरन वसूली यानी वायलेंट एक्सटोर्शन के मामले में कुल 17 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों पर रंगदारी वसूलने, गोलीबारी करने और आगजनी जैसी गंभीर घटनाओं को अंजाम देने के आरोप है। यह कार्रवाई पील पुलिस द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट एलीट के तहत की गई। पुलिस के मुताबिक यह गिरोह पिछले कुछ समय से ब्रैम्पटन और मिसिसागा जैसे इलाकों में रहने वाले साउथ एशियन कम्युनिटी के बिजनेस मालिकों को डरा धमका रहा था। ये आरोपी व्यापारियों को फोन और सोशल मीडिया के जरिए धमकी भरे मैसेज भेजते थे और उनसे बड़ी रकम की मांग करते थे। बात न मानने पर डराने के लिए उनके घरों और दुकानों पर गोलियां चलाई जाती थी या आग लगा दी जाती थी। पुलिस की बड़ी कार्रवाई में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 6 फायरआर्म्स जब्त किए। गिरफ्तार किए गए 17 आरोपियों पर कुल 32 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज किए गए। इनमें से कई संदिग्धों का संबंध सीधे तौर पर हाल ही में हुई गोलीबारी और आगजनी की घटनाओं से पाया गया। पील पुलिस के चीफ ने साफ किया कि इस तरह के हिंसक अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कम्युनिटी की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। अंजीविंद्र भाइयों, पुलिस ने इस मामले में स्थानीय व्यापारियों से अपील की है कि अगर उन्हें भी ऐसी कोई धमकी या कॉल मैसेज आए हैं तो तुरंत पुलिस का संपर्क करें। हाँ जी मेंद्र भाइयों, पुलिस के प्रोजेक्ट इलीट को बड़ी सफलता। डिटेल जानकारी weeklyvoice.com पर। ये वॉइस हम हैं आपके दोस्त जतीन।
9: अभी अलविदा मत कर।

0: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
1: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
2: हाँ जी विनर भाइयों, ये रेडियो वॉइस जतिन के संग, आइए सीधे चलते हैं आयशा मुनवर जी के पास। बहनर भाइयों, उनका नंबर जरूर डायल करें 416-428-2165। कर्जा बढ़ता है, गार्निशिंग का नोटिस आ गया है, मैक्सिमम कर्जा माफ करवा देंगे आयशा मुनवर और मैनी हुसैन जी। 416-428-2165। आइए सीधे चलते हैं आयशा जी के पास। आयशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो वॉइस।
3: थैंक यू वेरी मच जतिन जी, क्या हाल है? ठीक ठाक।
2: बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं?
3: मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
2: वंडरफुल। प्लीज आपकी वंडरफुल सर्विसेज के बारे में पहले बताएं।
3: जी बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है कि कर्जे में आना यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने ना सुना हो। सो लॉट्स ऑफ टाइम लोग कर्जे के प्रॉब्लम के नीचे आ जाते हैं, तो हमारी मेन सर्विसेज में आ जाते हैं कर्जे को माफ करवाना, कंज्यूमर प्रपोजल्स, बैंकरप्सी की सर्विसेज में भी हम हेल्प आउट करते हैं, इसके अलावा इंसॉल्वेंसी काउंसलिंग्स और क्रेडिट को दोबारा एस्टैब्लिश करके आपको दोबारा फाइनेंशियल ट्रैक पे हैप्पी लाइफ जो है गुजारने में मदद देते हैं।
2: वंडरफुल। बहन और भाइयों, कॉल करना है 416-428-2165। आयशा जी, ये बताएं कि अपॉइंटमेंट लेना क्यों जरूरी है?
3: बहुत जरूरी है जतिन जी। ऐसा है कि देखें, ये फाइनेंशियल हेल्थ है। आपने कभी किसी डॉक्टर को फोन करके कहा कि बस मेरे पेट में दर्द हो रही है, मुझे कोई दवाई दे दो? वो कभी भी प्रिस्क्राइब नहीं करेगा, क्योंकि यू नेवर नो दर्द किस वजह से है, उसके सिम्टम्स क्या हैं और क्या इलाज है। तो सेम ये आपके फाइनेंसेस हैं। जब तक हम प्रॉपर तरीके से रिव्यू ना कर लें, कर्जा लिया कैसे गया, कैसे इस्तेमाल हुआ, कौन से बैंक्स हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं, क्या वापस आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, एसेट्स कौन से हैं जिनको बचाना है और आगे फ्यूचर में कैसे आपने चलना है, प्रोसेस क्या होगा, तो ये सब चीज़ें 5 मिनट में नहीं बताई जा सकती और ना डिस्कस की जा सकती हैं। हमारा काम है कि प्रोफेशनल और रिस्पॉन्सिबल एडवाइस देना, तो उसके लिए अपॉइंटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
2: वंडरफुल। ये भी बताया कि कौन से डेट्स सेटल कर सकते हैं।
3: जी, ऑल काइंड ऑफ अनसिक्योर्ड डेट्स कैन बी सेटल्ड, जैसे लाइन ऑफ क्रेडिट्स हो गई, क्रेडिट कार्ड्स हो गए, स्टूडेंट लोन्स हो गए। स्टूडेंट लोन हैज टू बी 7 years आफ्टर डेट ऑफ फिनिशिंग ऑफ स्टडीज। रेवेन्यू कैनेडा के डेट्स हो गए। इसके अलावा अगर आपने कोई बिजनेस वगैरह के ऊपर जो है गारंटीज दी हुई हैं और बिजनेस अब नहीं चल रहा, तो वो गारंटीज वगैरह भी जो है वो सेटल हो सकती हैं। तो बेसिकली ऑल काइंड ऑफ अनसिक्योर्ड डेट्स कैन बी सेटल्ड।
2: और आपने गारंटीज की बात की, तो कई बार हम सुनते हैं कि गारंटीड कर्जा माफ किया जाएगा, इसके बारे में थोड़ा बताएं।
3: इस गारंटी से मैं बहुत ज्यादा कहते हैं ना, मैं मुखालिफ हूँ इस गारंटी के।
2: अच्छा।
3: उसका रीजन ये है कि अक्सर मैं देखती हूँ कई रेडियो स्टेशंस पे लोग बैठे हैं गारंटीज कर रहे हैं। बेसिकली सबसे पहले तो यान एथिकल है, आप किसी तीसरी पार्टी के बिहाफ पे गारंटी नहीं कर सकते। इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि लेट्स सपोज जैसे आप किसी को प्रपोज करते हैं, तो जब तक अगला पर्सन हाँ या ना कर ले, आप कैसे मानेंगे कि जी काम हो गया? तो इसलिए वी हैव टू प्रपोज एन ऑफर कि जी ये अमाउंट हम आपको ऑफर कर रहे हैं, बैंक्स को हम प्रपोज करते हैं, एंड देन सब्जेक्ट टू क्रेडिटर अप्रूवल, बैंक्स ने हमें एक्सेप्टेंस देनी होती है कि जी हाँ हमने मान लिया या कोई और हम जो है वो ऑफर लेकर आ रहे हैं। तो इसलिए गारंटी बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन हम ये कहते हैं कि मैक्सिमम कर्जा माफ हो जाएगा, वो हर पर्सन के लिए फर्क भी हो सकता है।
2: बहुत खूब, आपका कॉन्टेक्ट नंबर दे दें प्लीज।
3: जी, कॉन्टेक्ट नंबर है 416-428-2165।
2: 416-428-2165। आयशा मुनव्वर और मैनी हुसैन जी से आज ही करें बात और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ाइए अपना एक और कदम। आयशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
3: थैंक यू वेरी मच जतिन।
4: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस, 416-660-8545।
5: डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट्स, फैमिली डेंटिस्ट, केयरिंग फॉर ऑल योर डेंटल नीड्स, एक्सेप्ट कर रहे हैं पेशेंट्स जिनके पास CDCP यानी कि कैनेडियन डेंटल केयर प्लान है। अगर आपने ये प्लान रिसीव नहीं किया है और आप एलिजिबल है, तो इस प्लान में एनरोल होने के लिए विजिट करें CDCP वेबसाइट। CDCP की वेबसाइट विजिट करके एनरोल हो जाइए और कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट्स का। बेंद्र भाइयों, आपकी अपॉइंटमेंट अभी से बुक करवा ले 905-564-2165। 2021 डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट्स आपके फैमिली डेंटिस्ट्स।
6: Craving something truly authentic? Mumbai Grill in Ajax has been delighting taste buds for 18 years. Jo specialized hai in mouth-watering momos plus tandoori and butter chicken momos. Jahan milenge best of South Asian cuisine. Miss out mat karna unka famous lunch and dinner buffet. Signature dishes like butter chicken and shahi paneer. Agar food aapko karta hai excite, to zarur pahunche Mumbai Grill at 619 Kingston Road, Ajax. Call kare at 905-239-4077 ya visit kare MumbaiGrill.com. Available for small and very large group catering services. Mumbai Grill, yummy food that thrills.
7: मेडिकल इंश्योरेंस फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, विजिटर्स इंश्योरेंस एंड सुपर वीजा इंश्योरेंस के बेस्ट रेट एंड बेस्ट प्लान के लिए एक ही नाम
8: संजीव। शॉप अराउंड करके आपको बेहतरीन रेट और प्लान की गारंटी देते हैं, जिसमें खांसी, जुखाम, बुखार, स्लिप एंड फॉल, वॉकिंग क्लिनिक डॉक्टर की फीस, मेडिसिन एंड टेस्ट के खर्चे से लेकर एम्बुलेंस, हॉस्पिटलाइजेशन एंड फ्यूनरल तक सब कवर्ड होता है। इसके अलावा बच्चों की RESP, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, फ्यूनरल इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लिए भी कॉल करें संजीव पुरी 4168903239032।
9: प्रतिष्ठा, परंपरा और अनुशासन, इन तीन स्तंभों के अलावा रेडियो वॉइस खड़ा है अपने लिसनर्स और अपने एडवर्टाइजर्स के दम पर। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 416-660-8545।

हाँ जी मित्र भाइयों, ये वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। करण जौहर को बहुत बहुत बधाई, आज करण जौहर उनका जन्मदिन मना रहे हैं। बिंद्र भाइयों, करण जौहर बिंद्र भाइयों धर्मा प्रोडक्शंस की स्थापना 1976 में यश जौहर ने की, और करण जौहर उनसे कहां से कहां ले गए। करण जौहर मालिक है 50%, अदार पूना वाला मालिक है 50%। धर्मा प्रोडक्शन कंपनी की वैल्यूएशन अगर देखे तो 2000 करोड़ रुपए। धर्मा प्रोडक्शंस की प्रमुख फिल्में कभी खुशी कभी गम 2001 में आई, कल हो ना हो 2003, ये जवानी है दीवानी 2013 में रिलीज हुई, ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा 2022 में, और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी 2023 में आई। जून 2004 में यश जौहर के निधन के बाद करण जौहर ने कंपनी की कमान एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में संभाली और अपने दोस्त अपूर्व मेहता को सीईओ नियुक्त किया। अक्टूबर 2024 में अदार पूनावाला की कंपनी सेरेन प्रोडक्शंस ने 1000 करोड़ रुपये में धर्मा प्रोडक्शंस की 50% हिस्सेदारी खरीदी। बिंद्र भाइयों, शाहरुख खान ही वो थे जिन्होंने करण जौहर को डायरेक्शन करने की सलाह दी थी, और करण ने एक इंटरव्यू के दौरान ही बताया था कि DDLJ की शूटिंग के दौरान शाहरुख खान ने उनसे कहा था कि उन्हें खुद की फिल्म डायरेक्ट करनी चाहिए और वो उसमें काम भी करेंगे, और वहीं से काजोल, शाहरुख खान और करण जौहर की दोस्ती की शुरुआत हुई। करण जौहर के डायरेक्शन में जो फिल्में बनी उसमें कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, कभी अलविदा ना कहना, माय नेम इज खान, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, बॉम्बे टॉकीज, ए दिल है मुश्किल, लस्ट स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी है। बिंद्र भाइयों, करण जौहर उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले, फिल्म फेयर अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया गया, बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट फिल्म कुछ कुछ होता है के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा स्पेशल जूरी अवार्ड फीचर फिल्म शेरशाह को, बेस्ट फिल्म इन AVGC फिल्म ब्रह्मास्त्र और बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। करण जौहर को बहुत बहुत बधाई। ये वॉइस हम हैं आपके दोस्त जतीन।

0: Meet Rohit the Yes Man at Ritz Furniture Planet, 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman, sasta nahi. High end da saman mile sasta.
2: टेस्टी डोसा खाने का मन है हमारा फेवरेट गुरु लक्ष्मी है ना यूनिट 44-50 7070 सेंट बारबरा बुलेवार्ड मिसिसागा मंडे और ट्यूसडे को डिनर शाम 5 to 10 थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे लंच 12 to 3 डिनर 5 to 10 वेडनेसडे को बंद मगर लॉन्ग वीकेंड पे खुले रहते हैं कॉल करें 9057952299 या विजिट करें गुरुलक्ष्मी.com गुरु लक्ष्मी साउथ इंडिया के स्वाद

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo fettis, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: प्रतिष्ठा, परंपरा और अनुशासन, इन तीन स्तंभों के अलावा रेडियो वॉइस खड़ा है अपने लिसनर्स और अपने एडवर्टाइजर्स के दम पर। एडवर्टाइजिंग, इंटरव्यूज, टॉक शोज, इन तीन स्तंभों के लिए आज ही कॉल करें 416-660-8545।
4: जी मित्र भाइयों, यू वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। बिंदर भाइयों, टोरंटो की मेयर ओलिविया चाओ ने आधिकारिक तौर पर साफ कर दिया है कि वह मेयर पद के लिए दूसरी बार चुनाव लड़ने जा रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की। हालांकि राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा काफी पहले थी, लेकिन अब इस पर पक्की मुहर लग चुकी है। ओलिविया चाओ 2023 में एक विशेष उपचुनाव बाई इलेक्शन जीतकर टोरंटो की मेयर बनी थी। यह उपचुनाव पूर्व मेयर जॉन टोरी के इस्तीफे के बाद हुआ था। अब 3 साल बाद चाओ एक बार फिर अपनी कुर्सी बचाने के लिए चुनावी मैदान में उतर चुकी है। टोरंटो में रहने वाले इस आगामी नगर निकाय चुनाव म्यूनिसिपल इलेक्शन के लिए नामांकन की प्रक्रिया 1 मई से ही शुरू हो चुकी है। मेयर पद की रेस में ओलिविया चाओ का मुकाबला कोई आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि उनके अलावा 15 और उम्मीदवार इस पद के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। चाव के सबसे बड़े प्रतिद्वंदियों में टोरंटो काउंसिल के मौजूदा सदस्य ब्रैड ब्रेडफोर्ड का नाम शामिल है, जो 2023 के उपचुनाव में भी उनके खिलाफ खड़े थे। इसके अलावा अफवाह थी कि पूर्व मेयर जॉन टोरी दोबारा वापसी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था कि इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। पूर्व टोरंटो सन के कॉलमिस्ट एंथनी फ्यूरी ने भी रेस से बाहर रहने का फैसला किया है। हां जी मित्र भाइयों, अब चुनाव इंटरेस्टिंग हो गया है। क्या चाव अपना कुर्सी का जो वादा किया है कि वो निभाएगी, वो वादा निभाकर अपनी कुर्सी बचा सकेगी? करते हैं इंतजार। नामांकन की आखिरी तारीख है 21 अगस्त 2026 और चुनाव की तारीख है 26 अक्टूबर 2026। टोरंटो के इस बार का मेयर चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। हाँ जी, डिटेल जानकारी weeklyvoice.com पर। यही डू वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन।

0: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस 416-660-8545।
1: हाँ जी मित्र भाइयों, ये वॉइस और हमें आपके दोस्त जतीन। भारत के माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 66 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। सबसे पहले दिवंगत फिल्म स्टार धर्मेंद्र को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी एक्ट्रेस सांसद हेमा मालिनी जी ने ये सम्मान स्वीकार किया। हाँ जी, महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनकी लीडरशिप में इसी साल टीम ने वनडे वर्ल्ड कप जीता था। 2026 में कुल 131 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने हैं। 65 विजेताओं को अगले फेज में सम्मानित किया जाएगा, जिनकी तारीख अभी सामने नहीं आई है। पुंडिचेरी के प्रसिद्ध सिलंबम गुरु के पजनीवेल को भारत में पारंपरिक मार्शल आर्ट में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सम्मान लेने जाने से पहले उन्होंने जमी पर लेट कर पीएम मोदी जी को प्रणाम किया। धर्मेंद्र और पीयूष पांडे जी को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिया गया। हाँ जी विंद्र भाइयों, आपको बता दे कि पद्म पुरस्कार सेरेमनी की पल पल की अपडेट आप weeklyvoice.com पर देख सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार कैलाश चंद्र पंत को देश भर में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में उनके योगदान के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके अलावा सोलर ग्रुप के चेयरमैन सत्यनारायण नुवाल को पद्मश्री, के पजनीवेल ने पद्मश्री मिलने के बाद पीएम मोदी जी के पैर छुए, यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष ममीडाला जगदेश कुमार को पद्मश्री दिया गया, पीयूष पांडे जी को मरणोपरांत पद्म भूषण मिला, महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को पद्मश्री सम्मानित किया गया। बिंद्र भाइयों, इसके अलावा कला में न राजम और शिक्षा साहित्य में पी नारायण को सम्मानित किया गया। पब्लिक अफेयर्स में वी एस अच्युतानंद जी को सम्मान मिला। शिबू सोरेन, अलका याग्निक समेत 13 को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। हाँ जी बेंद्र भाइयों, अलका याग्निक को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सभी को बहुत बहुत बधाई। ये वॉइस हम हैं आपके दोस्त जतीन।
2: ओ मेरी महबूबा।

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: संजीव पुरी ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ. ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स. संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है. तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी के इश्यूज हो या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है, तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए. और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232
4: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
5: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
6: नॉर्थ अमेरिका का सब तो वड्डा माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर.
7: यहाँ से आपको ठाका, चुन्नी, मेहंदी, जागो, मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा. 30 मेलेनी ड्राइव, यूनिट 9 एंड 10, ब्रैम्पटन. टेलीफोन 905-799-9400.

0: वक्त जो है वो बदल चुका था। रामाधीर ने उस गाने को नहीं पहचाना, पर वो रेडियो वॉइस को पहचान गया था। ये वो जमाना था जब लोग अपना ईमेल का पासवर्ड भूल जाया करते थे, पर रेडियो वॉइस सुनना नहीं। और उसके बाद रेडियो वॉइस पर जो एडवर्टाइजर्स का ताता शुरू हुआ, उससे पूरे एफएम रेडियो का समीकरण ही बदल गया। एडवर्टाइजिंग जो है उसके लिए आज ही कॉल करें 416-660-8545।
1: हाँ जी महेंद्र भाइयों, ये वॉइस और हमें आपके दोस्त जतीन रॉजर्स की बेहतरीन डील्स आपने ली, वकार जी से कांटेक्ट कीजिएगा। वकार जी है रॉजर्स एम्प्लॉई और आपके सिस्टम में भी एक्सेस है, इसलिए आपको देते हैं सुपर डुपर हिट डील्स। जरूर डायल कीजिएगा 647-864-8000 647-864-8000। सीधे चलते हैं वकार जी के पास। वकार जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्लीज रॉजर्स की बेहतरीन डील्स के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं और आखिर में आपका कॉन्टेक्ट नंबर भी जरूर दीजिएगा। ओवर टू वकार खान जी।
2: जी थैंक यू सो मच जतिन भाई, आपको तमाम लिसनर्स को मेरी तरफ से नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। जतिन भाई, रॉजर्स की बहुत अच्छी ऑफर आई हुई है, बहुत सारी प्रमोशन है, बंडल ऑफर्स है, बहुत ही स्पेशल प्राइस के साथ है। इसमें पैकेज है, टीवी मिल जाएगा, बहुत सारे चैनल्स हैं, इंटरनेट है 2000 की स्पीड का सुपर फास्ट, फोन में अमेरिका कनाडा सारा फ्री है, 9-30 मिनट हर महीने इंडिया पाकिस्तान इंग्लैंड के आप डायरेक्ट बैक होम कॉल करें, बहुत ही स्पेशल ऑफर है। अगर आपको सिर्फ इंटरनेट लेना है तो 1500 की स्पीड का इंटरनेट है, 2000 की स्पीड के भी इंटरनेट बहुत ही स्पेशल प्राइस के साथ अवेलेबल है, जरूर एक बार कॉल करके इसकी इंफॉर्मेशन ले। रॉजर्स सेल फोन्स के भी बहुत अच्छे प्लान्स हैं, अनलिमिटेड कैनेडा वाइड कॉलिंग है, अनलिमिटेड यूएस कॉलिंग है, डेटा भी अनलिमिटेड है। और अगर आपको डिवाइस लेनी है तो आईफोन है, सैमसंग है, बहुत अमेजिंग रेट पे ये डिवाइस और प्लान इस वक्त अवेलेबल है। प्लीज कॉल कीजिए, इस वक्त बहुत अच्छी ऑफर्स है, बहुत सारे प्रमोशंस और डिस्काउंट्स हैं, स्पेशली इंटरनेट की बहुत ही चीप प्राइस पे ऑफर है, जरूर एक बार कॉल कीजिए। नंबर है मेरा 647-864-8000 मैं रॉजर्स कॉर्पोरेट एम्प्लॉई हूँ, 18 साल से रॉजर्स के साथ हूँ, मुझे रॉजर्स के सिस्टम में एक्सेस है, आपके एड्रेस और अकाउंट चेक करके बेस्ट ऑफर दूंगा। नंबर अगेन 647-864-8000
1: वंडरफुल। वकार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिंदर भाइयों जरूर कॉल करके बात कीजिएगा वकार जी से, 647-864-8000 864-8000। यही डू वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन।

0: टेस्टी डोसा खाने का मन है? हमारा फेवरेट गुरु लक्ष्मी है ना, यूनिट 44-50 7070 सेंट बारबरा बुलेवार्ड मिसिसागा। मंडे और ट्यूसडे को डिनर शाम 5 to 10, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे लंच 12 to 3, डिनर 5 to 10। वेडनेसडे को बंद, मगर लॉन्ग वीकेंड पे खुले रहते हैं। कॉल करें 9057952299 या विजिट करें gurulakshmi.com। गुरु लक्ष्मी साउथ इंडिया के स्वाद का असली तड़का।
1: रेड्स फर्नीचर का मैसेज जरा ध्यान ना सुनो।

0: Meet Rohit the Yes Man at Ritz Furniture Planet, 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman sasta nahi, high end da saman mile sasta.
2: क्या बात है, उलझन में लग रही हो?
3: उलझन ही तो है, एक तरफ चिंटू के दांतों में कीड़ लग गई है, चॉकलेट इतने खाता रहता है, और दूसरी तरफ माँ जी के दांतों में दर्द हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: समझना क्या, डॉक्टर नील गज्जर को फोन करो, बहुत ही रिनाउंड डेंटिस्ट है, और उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा और मेरा भी अपॉइंटमेंट बना लो दांत की सफाई करने के लिए। ये लीजिए फोन नंबर 289-401-0009 289-401-0009.
3: Dr. Neil Gajar, 735 Tween Avenue, Suite 16, Mississauga. Call 289-401-0009.
4: अपने बिजनेस को बढ़ाना है, एक नई ओर ले जाना है, तो डायल करें 416-660-8545 रेडियो वॉइस।

हाँ जी मित्र भाइयों, जी वॉइस और हमने आपके दोस्त जतीन। ओंटारियो कैबिनेट की वरिष्ठ मंत्री और पूर्व कैनेडाई प्रधानमंत्री ब्रायन मुलरोनी की बेटी कैरोलीन मुलरोनी ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। मुलरोनी ने डग फोर्ड कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है और वे अगले महीने प्रांतीय संसद यानी एमपीपी के पद से भी हट जाएगी। आइए जानते हैं उन्होंने इस अचानक लिए फैसले के पीछे क्या वजह बताई है। बिंदर भाइयों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावुक बयान जारी करते हुए कैरोलीन मुलरोनी ने अपने इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि जन सेवा में 8 साल बीताना उनके लिए एक बड़ा सम्मान रहा, लेकिन अब वे अपने जीवन के अगले अध्याय की ओर बढ़ रही है और प्राइवेट सेक्टर में वापस लौट रही है। मुलरोनी 2018 में यॉर्क सिमको इलाके से एमपीपी थी और वे प्रीमियर डग फोर्ड की सरकार के शुरुआती दिनों से ही कैबिनेट का एक प्रमुख चेहरा रही। अपने कार्यकाल के दौरान वो ओंटारियो की परिवहन मंत्री रही, अटॉर्नी जनरल के रूप में भी काम किया, प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रेजरी बोर्ड के तौर पर भी उन्होंने काम किया। प्रीमियर डग फोर्ड ने मुलरोनी के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए उनके काम की तारीफ की और कहा कि ओंटारियो के विकास, खासकर बुनियादी ढांचे और परिवहन के क्षेत्र में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। वैसे देखा जाए तो मुलरोनी का ये इस्तीफा फोर्ड सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि वे सरकार के सबसे भरोसेमंद और अनुभवी चेहरों में से एक थी। अब देखना होगा कि जून में उनके सीट खाली करने के बाद वहां होने वाले बाई इलेक्शन में किसे अपना उम्मीदवार बनाती है पीसी पार्टी और ट्रेजरी बोर्ड की कमान किसे सौंपी जाती है। ओंटारियो की राजनीति से मुलरोनी बाई बाई कर रही है। हाँ जी मित्र भाइयों, ये वॉइस हम हैं आपके दोस्त जतीन।

And here we meet again on the day, which is also Antarashtriya Plastic Free Day. And yes, it's different, a bit different from International Plastic Bag Free Day. हालांकि दोनों में प्लास्टिक से ही मुक्त होने की बात होती है, पर एक में बैग से आगे की भी बात होती है, उस तक सीमित नहीं रहती। वो आज का दिन है। कहते हैं 380 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक हर साल प्रोड्यूस होता है, जिसमें से कि आधा सिंगल यूज होता है। तो सोचो कि कितना प्लास्टिक गार्बेज बन जाता है, जो कितना नुकसानदायक होता है एनवायरमेंट के लिए या सारे जीव जंतुओं के लिए। एज ओनली 9% ऑफ ऑल प्लास्टिक गेट्स रिसाइकल्ड एंड रेस्ट अदर दैट गोज इन लैंडफिल्स पोल्यूटिंग आवर ओशंस एंड यू नो दैट बिकम्स कूड़ा इन द कम्युनिटी। वेल, जिस तरीके से हम जीते आए हैं ना, या हमसे पहले की जनरेशन, लुक्स लाइक प्लास्टिक कुड बी द main ingredient of our grandchildren recipes gradually going forward. So on this say no to plastic and say it really firmly wali note, this is Swati on Filmy Nukkar CMR 101.3 FM saying ki mana bahut kuch bigad chuka hai already, par mano meri baat ki bahut kuch sudharne ka abhi bhi mauka hai. Just don't let it go yun hi, and don't just let it be.

अच्छा ऑटो एंड होम इंश्योरेंस के बिना तो काम चलता नहीं इफ यू हैव अ कार एंड अ हाउस, है ना। अब ऐसे में सोचिए, अगर आपके पास एक कार और एक घर है और इंश्योरेंस पर सालाना आपके 400 से 500 डॉलर्स की बचत हो जाती है, या आपके पास दो कार और एक घर है और ऑटो एंड होम इंश्योरेंस पर आपकी बचत हो सकती है अप टू 2029 डॉलर्स, तो कितना अच्छा हो, है ना। यानी कि रेट्स भी सही मिल जाए, कवरेज कॉम्प्रोमाइज ना हो एंड सेविंग्स ही सेविंग्स। तो भाई ये पॉसिबल है। कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑल स्टेट की मिसिसागा साउथ एजेंसी एट 6474535353। उनको कॉल करेंगे तो आपको और ऑप्शंस भी पता चल सकते हैं। 6474535353

0: देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com। इस बायर्स मार्केट में घर का प्राइस बहुत कम मिल रहा है और रियल्टर्स कमीशन भारी पड़ रहा है, क्या करूं?
1: स्मार्ट सेलिंग प्राइस बेशक मार्केट डिसाइड करती है, लेकिन माई रियल प्रो के सेलर एडवांटेज प्रोग्राम से आप खुद डिसाइड करते हैं सर्विस पैकेज और कमीशन भी,
0: यानी फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल दोनों मेरे हाथ में।
1: बिल्कुल, लिस्टिंग कमीशन स्टार्ट फ्रॉम 0.99%। मैं हूँ संजीव मनोचा, ब्रोकर ऑफ रेकर्ड माई रियल को। कॉल मी फॉर अ फ्री मार्केट इवैल्यूएशन एट 4168437600।
0: My property, my choice, my Realco, the real estate company. Or visit myrealco.com. Not intended to solicit buyers and sellers already under contract.
2: Genesis Markham. यहाँ मिले लग्जरी का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट डीलरशिप और आपकी अपनी लैंग्वेज में एक्सपर्ट सर्विस। लीज करें ब्यूटिफुली डिजाइन 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज करें 2026 GV70 सिर्फ 4.9% से। आज ही बुक करें टेस्ट ड्राइव। विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम। जेनेसिस मार्कम, डूइंग लग्जरी योर वे। अ प्राउड मेंबर ऑफ वेन्स ऑटो ग्रुप।
0: फायदा उठाएं स्प्रिंग स्पेशल मॉर्गेज रेट्स एंड एक्स्ट्रा प्रमोशन का विद अमित खुराना। 5 इयर्स फिक्स्ड 4.14%, 3 इयर्स फिक्स्ड 4.19%, 5 इयर्स वेरिएबल 3.55%, प्लस कैशबैक फ्रॉम बैंक एंड स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम अमित खुराना अप टू $1500। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। कॉल अमित 6473412785, 6473412785 और विजिट amitkhurana.com।
3: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
4: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन, इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
3: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
0: फॉलो अस ऑन फेसबुक, फिल्मी नुक्कड़, इट्स द फ्री टाइम।

0: एट वेन्स ऑटो ग्रुप आप हम पर रिलाई कर सकते हैं फॉर एवरीथिंग ऑटोमोटिव चाहे हो डेली कम्यूट या वीकेंड स्केप हमारा प्रॉमिस विल ऑलवेज रिमेन द सेम हर जर्नी को बनाए खास वेन्स ऑटो ग्रुप हमेशा आपके साथ ओवर 1400 डेडिकेटेड एसोसिएट्स जो बोलते हैं आपकी लैंग्वेज ऑफरिंग 9 ब्रांड्स अक्रॉस 15 डीलरशिप्स फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर Wayne's Auto Group is always there. Aaj hi visit kare waynesautogroup.com.
1: Fresh breeze, new release on CMR at 5 p.m.

right. Well, man, of course, CMR 101.3 FM पर you are with Swati and Payaswini and Time Hack Fresh Breeze ने रिलीज का तो जो गाना मैंने आज चुना है, it's a very delightful, peppy, romantic dance type का गाना है from upcoming film Triangle Love Story Again, Cocktail 2 with Kriti Sanon, Rashmika Mandanna and Shahid Kapoor. समर पार्टी, बीच पार्टी, सनशाइन लिए ये ट्रैक है, वैसी ही वाइब्स है, हाई ऑन एनर्जी है और इंटरनेशनल म्यूजिक का इसमें इस्तेमाल आप कह सकते हैं किया है. क्लब नंबर, पॉप नंबर, बॉलीवुड एंड अंतर्राष्ट्रीय भाषा का प्रयोग, ये सब इसको डिफरेंट तो बनाते ही हैं और अच्छा भी बना रहे हैं. इट्स संग बाय राघव चैतन्य एंड रुआ के. प्रीतम दा के धन है, लिरिक्स अमिताभ भट्टाचार्य के हैं जो आधे समझ नहीं आ रहे हैं क्योंकि इटालियन में भी है. मशुका बस इतना ही समझ में आ रहा है मुझे ठीक से, और जो इटालियन पार्ट है वो नहीं आ रहा ऑब्वियसली. हालांकि इटालियन पार्ट जो लिखा है एंड इवन जो गाना को कंपोज किया आप कह सकते हैं मे बी दैट पीस, वो इटालियन आर्टिस्ट महमूद ने किया है. हुक स्टेप्स बहुत अच्छे हैं इसके, डांस जिन्हें पसंद है करना उनको तो बहुत मजा आने वाला है उसको फॉलो करने में. नाउ कॉन्ट्रोवर्सी कहाँ है इसमें, वही पुरानी कि जब गाना कहीं से उठाते हैं तो भाई इसे चोरी कहा जाए या इंस्पिरेशन. प्रीतम दा डिड इट अगेन, इस बार 1993 का एक फेमस इटालियन गाना उन्होंने उठाया है बाय बीबी एंड कोको ड्यू का, ये गाना था और टाइटल था उसका कुछ ऐसे किससे सो अरबुत ना नो ना समथिंग लाइक दैट. अब मैं थोड़ा सा सैंपल आपके लिए पोर्शन इस गाने का प्ले करती हूँ ओरिजिनल वाले का और उसका पूरा गाना ये नया वाला हिंदी वाला सुनवाती हूँ आपको, माम माम माशुका वाला. आप दोनों सुन के मुझे बताना कि सैम्पलिंग इसे कहा जाए या चुरा लिया है प्रीतम ने जो धन को, ऐसा कुछ गाया जाए. टेलो टेलो मैं सुनवाती हूँ स्टूडियो के नंबर 416593 0055.

0: डॉन वैली नॉर्थ हंडे पे हो रही है जबरदस्त हंडे संडे की अल्टीमेट सेविंग सेल ऑन मई 24th। इन्वेंटोरी पर ह्यूज बोनस ऑफर्स, डील्स इतनी जबरदस्त की मिस नहीं कर सकते। संडे मई 24th को अपने कैलेंडर में मार्क कर लो। डॉन वैली नॉर्थ हंडे पर हमारी टीम बात करती है हिंदी, उर्दू, पंजाबी और तमिल में। विजिट करिए donvalleynorthhyundai.com, Woodbine Ave और Denison Street, Markham पर।
1: Doing business your way.
0: Member of Wayne's Auto Group.
2: Alright, a quick reminder. आज भी है हमारा हर मंडे की तरह Unwind Your Mind segment with a therapist, जिसमें हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे registered social worker and psychotherapist प्रशांत शोरी जी। आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, टॉपिक से रिलेटेड है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके सवाल लोगों के लिए ही ये सेगमेंट बना है। इट्स अ कम्युनिटी सेगमेंट। स्टूडियो का नंबर रहेगा ड्यूरिंग द सेगमेंट 416-593-0055। आप अपना सवाल मुझे टेक्स्ट करके भी पूछ सकते हैं एट 647-830-5042। और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे भी डीएम कर सकते हैं अपना सवाल, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, दोनों पे मेरा हैंडल रहता है आरजे स्वाति टोरंटो, बहुत आसानी से मिल जाऊंगी। पर्सनल मैसेज में अपना सवाल भेज सकते हैं। अपना नाम बताने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप नहीं चाहे तो यू कैन कीप योर नेम एज अनॉनिमस और सिर्फ सवाल पूछ सकते हैं। नोबडी नीड्स टू नो कि आप कौन हैं पूछने वाले, बस आप सवाल पूछें और जवाब आपको मिल जाएगा। स्टूडियो में जब आप कॉल करते हैं ड्यूरिंग द सेगमेंट, तो हमारा टाइम इस सेगमेंट का रहेगा हर मंडे की तरह आज भी अराउंड 5:45 to 5:50। जिन जिन को ये सेगमेंट आपको लगता है सुनना चाहिए, उन तक ये मैसेज जरूर पहुंचाइएगा। तो मिलते हैं अनवाइंड योर माइंड सेगमेंट में टुडे एट 5:45, 5:50। स्टूडियो का नंबर अगेन 4165930055 एंड माई नंबर इज 647-830-5042।

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑलस्टेट की मिसी सागर साउथ एजेंसी एट 647-453-5353. दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं. सिमरन बेंस एंड ऑलस्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स. कॉल सिमरन बेंस एट 647-453-5353. 647-453-5353. And yes, even for one car and a home, $400 to $500 ki annual savings possible. Call Simran Benz 647-453-5353.
4: It's Toyota Red Tag Days at Markville Toyota. 2026 Prius Plug-in Hybrid. Ghar le jaane ka perfect time. Receive kare up to $7,500 off. Current Toyota owners ke liye up to 1% rate reduction. Toyota Tundra Finance kare as low as 3.99% for up to 36 months. Aapke trade ke liye hum dete hain top dollar. Visit Markville.com. Ya jaye 5362 Highway 7, Markham Bay. Markville Toyota, Wayne's Auto Group ka proud member.

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
2: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, द लार्जेस्ट इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चेन इन कनाडा। फाइंड आउट मोर एट rajdhanisweets.ca।
3: यही है राइट चॉइस कनाडा,
4: CMR at 5 PM। प्ले करना तो बनता है।

टुडे इज अ नेशनल टैप डांस डे. वो कहते हैं ना, यू तो डांस फॉर्म सारे ही अच्छे लगते हैं अच्छे से किए जाए तो, पर टैप डांस इज वन सच डांस, जैसे कि कथक होता है ना, जिसमें पैरों की थाप उनसे भी एक आवाज म्यूजिकली बहुत अच्छी सी निकलती है, विच गो सो वेल विद अ फुल बॉडी डांस. वो जो टक्कर टक्कर म्यूजिकल साउंड होती है शूज की या पैर की, इट कैन मेक एनी वन इवन यू नो हियरिंग इट डांस विद शूज ऑन. और आज इस नेशनल टैप डांस डे पर मैं देख रही थी और सोचा आपसे भी शेयर करूँ कि डांस फॉर्म की शुरुआत कैसे हुई. वो कहते हैं ना कि जरूरत जो होती है वो इनोवेशंस की जननी होती है, तो बस ऐसा ही कुछ हुआ था. स्लेव कम्युनिटी जो हुआ करती थी, उनके जो ओनर्स होते थे वो उनसे इंस्ट्रूमेंट्स और ड्रम्स छीन लिया करते थे, और ऐसे में स्लेव्स के अंदर का जो आर्टिस्ट होता था, डांसर या म्यूजिशियन, वो भी क्या करता, दे स्टार्टेड टू मेक साउंड बाय फीट टैपिंग, एंड डांस एंड म्यूजिक दोनों ही उससे बन गया, है ना. और ग्रेजुअली ये डेवलप्ड इंटू ट्रेडिशनल डांस आर्ट फॉर्म, जो कि आज तक बहुत अच्छे से पॉपुलर है. बेटर टैप साउंड के लिए दे स्टार्टेड टू वियर क्लॉग्स, एंड धीरे धीरे जूते भी उसी हिसाब से हल्के फुल्के से बनने लगे, टू फैसिलिटेट बेटर टैप डांसिंग विद द साउंड ऑफ द टपर टपर, जो आप सुन देख सकते हैं, टुकर टुकर.

0: देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: He's breaking through the midfield.
2: Don Valley North Hyundai आपको दे रहा है मौका FIFA World Cup 2026 के टिकट्स जीतने का। कोई भी व्हीकल बाइकर के घर ले जाएं और पाए डबल एंट्रीज। विंटर टायर्स या एक्सटेंडेड वारंटी लें और हर एक के साथ पाए एक एक्स्ट्रा एंट्री। आज ड्राइव करें, कल जीतें। विजिट donvalleynorthhyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
3: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
4: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
5: काव्या होम्यो केयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस, हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्यो केयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 6477602779, 6477602779.
0: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट ले। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वेयर योर कार गेट्स द It deserves.
6: नटवर, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती।
7: मगर क्यों, पिताजी नहीं माने क्या?
6: वो बात नहीं है, हम जब भी घूमने जाते हैं तुम पता नहीं कौन सा रेडियो चलाते हो। ना वो गाने बजाते हैं, ना तुम अच्छा गाते हो।
7: तो आप क्या गाना भी सीखना होगा?
0: सिर्फ CMR एट 5 PM पर ट्यून इन रहना होगा। रेडियो CMR एट 5 PM, योर इवनिंग म्यूजिकल ड्राइव।

0: ये वो टाइम ऑफ द ईयर है जिसका आप वेट कर रहे थे. डेमोन्स्ट्रेटर इवेंट एट डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस मई 16 तक. लीज रेट्स एज लो एज 2.9% अप टू 24 मंथ्स. Select demo vehicles for savings up to $4,989 included. Best selection ke liye Don Valley North Lexus jaldi visit kare. Jaldi kare. Offer ends May 16th. Visit DonValleyNorthLexus.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
1: Unwind your mind with the therapist. Life sahi hai. Only on Filminukkad.

0: And here we meet again. In this segment, unwind your mind with a therapist. हमारे साथ जुड़ते हैं हमारे registered social worker and psychotherapist प्रशांत शोरी जी. बहुत लंबा अनुभव है इनका और अभी तो इस सेगमेंट में भी बहुत लंबा हम साथ चल चुके हैं. आप लोगों के साथ जुड़ते हैं इस सेगमेंट में खास. बहुत सारी समस्याएं लेने की कोशिश करते हैं, छोटी बड़ी जिंदगी से जुड़ी, हमारे इमोशन से जुड़ी, हमारी मेंटल इलनेस या मेंटल कंफ्यूजन से जुड़ी, और फिर कोशिश करते हैं कि उनका समाधान जितना यहाँ पे टिप्स की तरह बता पाएं ताकि आप अपनी तरफ से कुछ मेहनत कर सके अपने लिए तो अच्छा है, वरना नंबर हम देते ही हैं प्रशांत जी का, विच इज़ 905-425-8224-905-4050-8224. क्लिनिक का नंबर रहता है, वैसे उनकी वेबसाइट रहती है iwantpeace.org. वहाँ पे भी आप अपने सवाल छोड़ते हैं, आगे भी छोड़ते रह सकते हैं. स्टूडियो के सेगमेंट के दौरान स्टूडियो में भी आप कॉल कर सकते हैं अपने सवालों के लिए. हम किसी भी टॉपिक पे या किसी भी सवाल पे बात कर रहे हैं, पर अगर आपका कुछ अलग क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड कोई कमेंट है, कोई बात कहनी है या सवाल है तो भी आप कर सकते हैं. नंबर रहता है स्टूडियो का 416-593-0055. एंड याद दिला दूँ, आपको अपना नाम बताने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है अगर आप नहीं बताना चाहते तो. अपनी पहचान बिल्कुल एनोनिमस रख के आप अपनी बात कह सकते हैं और अपना सवाल भी पूछ सकते हैं. तो प्रशांत जी वेलकम.
1: थैंक यू सो मच स्वाति जी, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी इन दिस शो.
0: हमारे पास सवालों का पूरा पुलिंदा होता है, कोशिश करती हूँ मैं जितने ले सकूं, पर ये एक ऐसी चीज है कि इसको हम क्विकली ना तो ये सोच सकते हैं एक सवाल, दो सवाल, चार सवाल.
1: बिल्कुल.
0: जब भी मेरे पास सवाल आते हैं मैं सोचती हूँ कि जिसपे जितना विस्तार से आप बता पाए, और जो सुनने वाले हैं जिन्होंने नहीं भी पूछा ये सवाल, क्योंकि मुझे लगता है वो सवाल ऐसे होते हैं जब मैं देख रही होती हूँ ना कि हम सबकी जिंदगी में उस तरह की परिस्थितियां मिलती जुलती होती ही हैं. तो कई बार एक इंसान सवाल पूछता है और पता नहीं कितने लोगों की आप जब टिप्स देते हैं तो मदद हो जाती है. जब तक वो साइकोथेरेपिस्ट के पास जाएं ना जाएं, वो कहीं ना कहीं वो टिप्स अगर ध्यान में रखते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में तो उनकी मदद जरूर हो सकती है. तो प्लीज ये सेगमेंट ध्यान से सुने, और कोई भी सवाल है या कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछें. स्टूडियो का नंबर अगेन 416-593-0055. तो प्रशांत जी मैं पहले सवाल की तरफ चलूं.
1: जी.
0: तो पहला सवाल भी बड़ा रेगुलर क्वेश्चन रहता है, मुझे लगता है सभी के मन में बहुत सवाल आता है, खासकर मम्मियों के मन में तो बहुत ही आता है, पिताओं के मन में भी आता है ये. वो कहते हैं ये सवाल में कि आई एम अनेबल टू स्पेंड टाइम विद चिल्ड्रन ड्यू टू वर्क स्केड्यूल, जैसा भी उनकी काम का रूटीन रहता है. इस बात को लेके वो कई बार गिल्टी फील करते हैं. उन्हें ये भी पता है कि समय नहीं दे पा रहा हूँ या पा रही हूँ बच्चों को, तो उनकी ग्रोथ कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही होगी क्योंकि उनको टाइम की इम्पोर्टेंस पता है उन्हें, तो इसका गिल्ट भी होता है. बट उन्हें ये भी पता है कि अच्छी लाइफ देने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं मुझे काम तो करते रहना है, बिल्स भी पे करने हैं. तो ऐसे में कि आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है इस गिल्ट से या इस दुविधा से बहुत सारे पेरेंट्स जूझ रहे होते हैं, स्पेशली मदर्स होती हैं और उनके बच्चे छोटे घर में या डे केयर में छोड़ के जब जा रहे होते हैं. मैंने देखा है बहुत सारी मदर्स को इस चीज़ से स्ट्रगल करते हुए.
1: और जैसे आपने कहा ये मदर्स ही नहीं, फादर्स
0: को भी होता है.
1: और एक बात समझने की है कि जो भी नए इमिग्रेंट्स हैं, सो कहीं मैंने पढ़ा था, बड़ा अच्छा लिखा था कि ऑल यू हैव इज टू सूटकेसेस when you come to a new country, right?
0: So
1: you have to build your life. It's not easy. So ये एक बहुत common issue है जो नए immigrants में होता है, क्योंकि उनको अपना घर भी बनाना है, गाड़ी भी लेनी है, बच्चों के लिए भी और better resources इकट्ठे करने हैं,
0: community भी बनानी है
1: और बहुत सी अलग अलग चीज़ें और भी हैं. कुछ लोगों को तो जॉब के साथ साथ कोर्सेज भी करने होते हैं, कुछ को क्या, लगभग सभी को करने
0: पड़ते
1: हैं,
0: कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशन कर ही रहे होते हैं,
1: सर्टिफिकेशन कर रहे होते हैं, लाइसेंसिंग के लिए एग्जाम्स होते हैं, जो लाइसेंस्ड फील्ड में, रेगुलेटेड फील्ड में जो प्रोफेशनल्स हैं तो उनको तो जॉब के साथ साथ उसकी पढ़ाई भी करनी होती है. सो इट इज़ अ वेरी जेन्युइन थिंग टू हैव. और इसमें आपको ये भी लगता है कि एक तो मेरी इमोशनल अवेलेबिलिटी नहीं है बच्चे के साथ, और दूसरा क्या है कि जो क्वालिटी ऑफ कनेक्शन है वो भी कम है, ठीक है ना. तो इसमें कुछ जो अगेन एज वी ऑलवेज डिस्कस ईच एंड एवरी केस इज़ यूनिक, सो हम उस हिसाब से तो उसका आंसर दे ही सकते हैं, पर कुछ जो जनरल या कॉमन टिप्स हैं
0: जी,
1: तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि एक हमारी बेसिक आदत है जो हम इस चीज़ में भी ये गड़बड़ यहाँ भी कर सकते हैं और इन जनरल भी लाइफ में करते हैं, कि रिड्यूस ऑल और नथिंग थिंकिंग. तो एक हम में एक सोच है, उसको हम बोलते हैं ऑल और नथिंग. ऑल और नथिंग का क्या मतलब हुआ है कि अगर हम नथिंग थिंकिंग के बारे में सोच रहे हैं तो हम सोचते हैं आई वॉज नेवर देयर और आई एम नेवर देयर विद माई किड्स. आई एम फेलिंग एज अ पेरेंट, ठीक है, माई चाइल्ड विल रिजेंट मी, ठीक है, तो ये नथिंग थिंकिंग के अंडर आ गया. ऐसा कभी भी नहीं होता. आप इसको ये कहें कि जितना आप चाहते हैं उतना समय नहीं दे पा रहे हैं, तो अपनी गिल्ट से बचने के लिए तो आप इस चीज का ध्यान रखें.
0: अच्छा, ठीक है,
1: कि इसी चीज को आप थोड़ा हेल्दियर तरीके से सोचें. आप ये कहें कि आई मे नॉट ऑलवेज बी फिजिकली प्रेजेंट बट आई कैन स्टिल बी इमोशनली कनेक्टेड, ठीक है ना, तो उससे आपको एक बेटर फीलिंग आएगी. सबसे पहले आपका खुश रहना, आपको अच्छा महसूस होना जरूरी है, तभी आप बच्चे की हेल्प कर पाएंगे. दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी इसमें है जो काम आ सकती है, वो ये है कि यू हैव टू फॉलो और फोकस ऑन माइक्रो कनेक्शंस. तो अगर आप बहुत ज़्यादा समय नहीं बिता पा रहे, बहुत बड़ी चीज़ें बच्चों के साथ नहीं कर पा रहे, तो छोटी छोटी छोटी छोटी कुछ चीज़ें, माइक्रो कनेक्शन जिसको हम बोलते हैं, वो बनाए रखें. जैसे सोने से पहले 10 मिनट की अनइंटरप्टेड कॉन्वर्सेशन बच्चों के साथ, ठीक है.
0: अनइंटरप्टेड वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. सी, हम लोग कई बार वो कनेक्शन के समय भी फोन हाथ में होता है.
1: और आजकल तो मैं एक और चीज देख रहा हूँ फैमिलीज में, कि छोटा बच्चा 6 साल का 7 साल का अपने फादर को मदर को खींच खींच के बुलाना चाह रहा है और वो फोन पे है. उलट हो रहा है, बच्चा बात करना चाह रहा है और पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, उसको ज्यादा धक्का मार रहे हैं.
0: और फिर वो बड़े होने पे उल्टा होता है. आप कहते हैं बच्चा हमारे साथ बैठे,
1: बड़े होने की भी जरूरत नहीं है, 1-2 साल ही लगेंगे.
0: अब तो हमें आदत पड़ गई है.
1: सो ईटिंग एटलीस्ट 1 मील टुगेदर, ठीक है, वेन एवर पॉसिबल, ठीक है. थोड़ा सा शॉर्ट मॉर्निंग रिचुअल कोई बच्चे के साथ होना चाहिए, कोई रीडिंग टुगेदर होना चाहिए, कोई एक वीडियो कॉल कर लें, कोई प्रेयर हो, कोई बेड टाइम रूटीन हो, कुछ भी एक आधी चीज़ आप कोशिश करते रहें. एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि किड्स रिमेंबर मोर द रिचुअल देन द अमाउंट ऑफ टाइम यू स्पेंड विद देम. अगर एक बच्चे को आप 5 मिनट रोज रात को सोने से पहले कहानी सुनाते हैं, तो उसके लिए वो एक बहुत सिग्निफिकेंट और बड़ी चीज है,
0: और वो उसका इंतजार होता है.
1: हाँ, उसको उसका इंतजार होता है. तो इसके साथ ये भी एक चीज है कि डू एक्टिविटीज दैट आर प्रिडिक्टेबल टू द चाइल्ड, कि जो बच्चे को ऑलरेडी पता है पहले से ही,
0: उसके
1: वो रूटीन में है, तो इसलिए वो उसकी और हेल्प करेगा. रादर जो प्रिडिक्टेबल कनेक्शन है वो बच्चे की भी जो इनसिक्योरिटीज है उनको कम करता है. बच्चे को ये पता होता है कि चलो कोई बात नहीं, याद, हाँ हम हर शाम को तो मिलते ही हैं, ठीक है.
0: बिल्कुल ऐसा होता है, जैसे मुझे याद आ रहा है आप कह रहे हैं, तो जैसे पहले हम जब छोटे होते तो लाइट जाती थी
1: जी.
0: अब लाइट जाने के साथ एक कंडीशनिंग है,
1: बिल्कुल,
0: लाइट जाते ही सब छत पे आएंगे,
1: बिल्कुल,
0: हवा में खुले में,
1: बिल्कुल,
0: फिर वहां बैठ के अंताक्षरी खेलेंगे, फिर उसमें मम्मी बुआ पापा सब, क्योंकि खाली हो गए थोड़ी देर के लिए, तो सब खेलेंगे. तो अब लाइट जाना भी एक इवेंट बन गया.
1: इवन, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. और यहाँ तो जैसे जाती नहीं है, तो आप खुद एक अपनी तरफ से इवेंट बनाए,
0: लाइट बंद
1: कर दीजिए, ठीक है. कोई भी एक ऐसी चीज हो जो बच्चे को पता हो कि ये तो हमने आज इकट्ठे करनी ही है, तो वो थोड़ा भी बहुत लगेगा, ठीक है. इसमें एक छोटी सी चीज मैं हमेशा कहूंगा कि अपना जो गिल्ट है उसको आप अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू बेटर बनाए, ठीक है ना. आप ये मत कहें कि अपने आप को ये कहने के बजाय कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, अपने आप को ये कहिए कि मैं बहुत बार बिजी हो जाता हूँ जिस वजह से मुझे टाइम कम मिलता है, पर मैं बेसिकली, जैसे मैंने पहले कहा, इमोशनली बच्चे के साथ कनेक्टेड हूँ. और मैं बच्चे को भी ये बात कहें कि इवन इफ आई एम अवे फ्रॉम यू, आई ऑफ्टन थिंक अबाउट यू, आई ऑफ्टन थिंक अबाउट द थिंग्स दैट वी हैव प्लान्ड वी विल बी डूइंग वंस आई विल बी बैक. बहुत से पेरेंट्स इस तरह की जॉब में हैं जो एक हफ्ते बाद आते हैं.
0: हाँ,
1: हमारे बहुत से
0: दोस्त
1: टूरिंग जॉब्स में हैं, ट्रकिंग में हैं, तो आप बच्चे के साथ जरूर उस तरह से
0: कि एक बार दिन में फोन जरूर करें,
1: हाँ, कनेक्ट
0: हाँ, हाँ,
1: और एक अपने आप को भी बर्नआउट से प्रोटेक्ट करें. कई बार आप खुद ही इतने ज्यादा थके होते
0: हैं. इज दैट ऑल और नथिंग में ऑल?
1: नहीं, ये उस कैटेगरी में तो नहीं आएगा. ये तो इन जनरल कि आप अपनी जॉब से या किसी भी कारण से अगर खुद ही थके हुए हैं, खुद ही आप के न्यूट्रिशन पूरे नहीं हो रहे, आपकी स्लीप पूरी नहीं हो रही, आप काम पे
0: काम
1: आपको इनफ सपोर्ट नहीं मिल रही, कुछ भी रीजंस है, तो आप उन पे भी काम कीजिए. क्योंकि अगर वो कहते हैं ना, इफ यू आर नॉट हैप्पी हाउ कुड यू प्रोवाइड हैप्पीनेस टू अदर्स, ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान देने की जरूरत है.
0: अच्छा, ये ऑल में एक ये चीज आती है फिर क्या कि जब हम सुपर सुपर मदर या सुपर पापा बन जाते हैं कि सुपर हीरो
1: हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग
0: हेलीकॉप्टर
1: हाँ वो ऑल पेरेंटिंग में आ जाती है
0: वो ऑल में आ जाता है कि इधर यू आर नथिंग और आप दोनों गड़बड़ाए देयर हैज टू बी अ बैलेंस
1: उसमें आप रोज तीन बार पूछते हैं तुमने सोने से पहले ब्रश किया ठीक है
0: 32 times चू किया
1: हाँ 32 times चू किया और जाने से पहले दिखाओ कितने कपड़े पहने ठंड बहुत है या उस हिसाब से तो वो इट इज टू मच तो वो भी बच्चे पसंद नहीं करते
0: तो अभी हमें टिप्स में ये समझ में आया छोटी छोटी जो टिप्स दी गई हैं यहाँ पर कि ऑल और नथिंग वाली चीज से आप बचेंगे बैलेंस में थोड़ा रहेंगे और वो कैसे बच सकते हैं उसके लिए क्या किया जा सकता है वो भी छोटी छोटी टिप्स प्रशांति जी ने इस वक्त यहाँ पे दी हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ चलते हैं विल बी बैक विद मोर आई हैव मोर क्वेश्चंस अगर आपको कुछ कहना है अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है विच हैज़ वर्कड फॉर यू और नॉट आप स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं 4165930055

0: Wayne's Auto Group, आप हम पर रिलाई कर सकते हैं फॉर एवरीथिंग ऑटोमोटिव, चाहे हो डेली कम्यूट या वीकेंड स्केप, हमारा प्रॉमिस विल ऑलवेज रिमेन द सेम, हर जर्नी को बनाए खास। Wayne's Auto Group, हमेशा आपके साथ, ओवर 1400 डेडिकेटेड एसोसिएट्स जो बोलते हैं आपकी लैंग्वेज, ऑफरिंग 9 ब्रांड्स अक्रॉस 15 डीलरशिप्स, फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर, Wayne's Auto Group is always there. Aaj hi visit kare waynesautogroup.com.
1: Unwind your mind with the therapist. Life sahi hai only on Film Nukkad.

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं फिल्मी नुक्कड़ सीएमआर 101.3 एफएम पर स्वाति पायस्विनी और प्रशांत जी के साथ। सेगमेंट है इस वक्त अनवाइंड योर माइंड विद थेरेपिस्ट। हमारे थेरेपिस्ट प्रशांत शौरी जी हमारे साथ जुड़ते हैं एवरी मंडे। इस सेगमेंट में हमें कुछ कुछ छोटी छोटी टिप्स देते हुए जिससे अपनी जिंदगी हम बेहतर बना सकते हैं, और जो भी हमारे दिमाग में डाउट्स होते हैं अबाउट थेरेपी से रिलेटेड जो होते हैं मेंटल इमोशनल, वो सारे भी हम क्लियर करने की कोशिश इसमें करते हैं। इट्स अ कम्युनिटी सेगमेंट। स्टूडियो का नंबर आपके सवालों के लिए 416-593-0055, या प्रशांत जी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं उनके क्लिनिक के नंबर पर 905-405-8226। अच्छा प्रशांत जी, मैं
1: 8224,
0: हाँ मैं आजकल गड़बड़ बहुत करने लगी, 8224। अच्छा मैं सोच रही थी कि जब हम कहते हैं कि लाइफ सही है, टेंशन नहीं है, अब इस चीज में ना थोड़ा सा ही फर्क है एटीट्यूड का, क्योंकि वही जिंदगी देखा जाए तो सबकी जिंदगी में झोल है।
1: बिल्कुल।
0: अब फिर भी हमने दिखता है कि कुछ लोग उसमें मस्त मौला जिंदगी बिता पाते हैं, कुछ लोग पूरे टाइम क्रिप करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: कई बार सिचुएशन होती है उदास वाली या क्रिप वाली, लेकिन कुछ लोग उसमें भी कहते हैं ना हंसी ढूंढ लेते हैं, कुछ लोग हंसी में भी कुछ दुख ढूंढ ही लेते हैं, तो डिफरेंस एटीट्यूड का हो ही जाता है कहीं ना कहीं। बट मदद अगर आपको चाहिए तो उस सेगमेंट में आपको मिल सकती है, मैं यहाँ पे ये जरूर बता सकती हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मुझे लगता है इट इज अ लॉट अबाउट एटीट्यूड। ये साहब कहते हैं कि पता नहीं मुझे साहब हैं या हैं, पर क्योंकि इट इज़ जस्ट रिटन आई गॉट इंजर्ड एट वर्क, और वो कहते हैं कई महीने हो चुके हैं इस बात को, उन्हें चोट लगे, ईआई पे हैं वो और काम पे नहीं जा पा रहे हैं
1: जी।
0: ठीक है, और बहुत टाइम तक लगता है अभी आगे भी नहीं जा पाएंगे। अब वो कहते हैं ऐसे में मुझे बहुत अपने को लेके यूजलेस फील होता है, अपने को लेके और अपने को लेके, और ऐसा लगता है कि मैं परिवार पे फाइनेंशियल बर्डन बन चुका हूँ या बन चुकी हूँ। तो ये जो फीलिंग्स होती हैं जिसमें कि आप

0: को यूजलेस फील करते हो और ऐसा लगता है दूसरों के एहसान तले आप जी रहे हो, आप बोझ बन गए हो, ये अच्छी तो होती ही नहीं है ऑब्वियसली. मतलब हम कोई भी नहीं चाहता, सब लोग ये कहते हैं कि जब हम दुनिया से जाएं हाथ पैर चलते हुए जाएं.
1: बिल्कुल. तो इसमें एक बहुत अच्छा मुझे एग्जांपल याद आ रहा है जो हमारे मेंटोर थे एक पहले, बहुत पहले, उन्होंने हमें सुनाया था कि एक एथलीट इंजर्ड हो गया किसी गेम में, तो उसके बाद उसके प्लास्टर लगाया लेग पे, और जब वो 6 महीने बाद ठीक हुआ तो चलने लगा तो रोने लगा, तो कहता मैं तो बहुत स्लो हो गया हूँ. तो उसको किसी ने कहा कि इट इज़ नॉट फेयर फॉर यू टू कंपेयर यूर सेल्फ विद योर प्रीवियस सेल्फ. ठीक है ना, तो वो चोट के पहले था, अब चोट के बाद है, तो गिव योर सेल्फ सम टाइम, सो इट इज़ अनफेयर. तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप इस तरह की सिचुएशन में हैं तो जो भी फिजिकल पेन, जो भी इंजरी से आप गुजर रहे हैं वो तो है ही, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं. अब अगैन इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट इटसेल्फ कि वो अभी, मैं तो बिकॉज अगैन इट इज़ अ जनरल आंसर सो आई विल ट्राई टू लिस्ट ऑल ऑफ देम, सो इसमें से कौन सी उनको तंग कर रही है, उसमें से कैसे निकला जा सकता है, ये फिर एक काउंसलिंग सेशन वाली बात हो जाएगी. तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको तंग कर सकती हैं. सबसे पहले लॉस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है ना, कि मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि वन शुड हैव मल्टीपल आइडेंटिटीज, सो ये बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा था. फॉर एग्जाम्पल आप रेडियो शो होस्ट करती हैं, अगर आपकी सिर्फ और सिर्फ यही आइडेंटिटी है तो जिस दिन ये छिन जाएगा उस दिन आपको लगेगा कि मेरा तो लाइफ का पर्पज ही नहीं है कुछ, ठीक है ना. लेकिन अगर इसके साथ आप एक सिंगर भी हैं, इसके साथ आप म्यूजिक भी सीख रही हैं, इसके साथ आप कुछ कोई आर्ट फॉर्म भी सीख रही हैं और कुछ वॉलंटियरिंग भी कर रही हैं,
0: कुछ पढ़ाई भी कर रही हैं,
1: तो अगर आप 6 चीजें कर रही हैं तो उसमें से एक चली भी जाएगी तो फिर भी बाकी 5 के सहारे आप जी सकती हैं.
0: बिल्कुल ठीक बात.
1: तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव मल्टीपल आइडेंटिटीज. So that is why
0: that's
1: I
0: my takeaway from today's session. मुझे लगता है आज का कहते ना हमारे लाइफ के लिए टेकअवे हो जाता है कई बार एक छोटी सी बात.
1: तभी जो हम बल्कि ग्रीफ की काउंसलिंग भी करते हैं उसमें भी यही देखने में आता है कि जब कोई आपका जिसको आप चाहते हैं वो नहीं रहता तो जो ज़्यादा लोग ग्रीफ में जाते हैं वो भी इसीलिए जाते हैं क्योंकि वो सब कुछ ही उस पर्सन के साथ होता है उनका, ठीक है. उसके अलावा सारी आइडेंटिटी, सारी अटैचमेंट, सारा व्यवहार, सारी डीलिंग, सारा रिलेशनशिप, सब कुछ एक पे ही होता है. तो उस एक के ना रहने से सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है. तो इट इज नॉट गुड, ठीक है. आप अपने
0: एक
1: इंडिविजुअल है तो आप अपने को थोड़ा थोड़ा बांटिए ताकि उसमें से एक अगर ना भी रहे, छिन भी जाए तो आप जी सकें. तो एनीवेज, तो इसमें लॉस ऑफ आइडेंटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. द अदर इज इंडिपेंडेंस. तो अगर आप, इन्होंने लिखा है कि जैसे मैं इंजर्ड हूँ तो डेफिनेटली हो सकता है आपको बार बार कहना पड़ता हो भाई कोई पानी दे दो, है ना, या मुझे वॉशरूम जाने के लिए हेल्प चाहिए. तो वो भी एक बहुत ज्यादा अजीब सी फीलिंग आती है जब आप अपनी इंडिपेंडेंस लूज करते हैं. और आप अपने रूटीन को जब लूज करते हैं वो एक बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है. आपको लगता है ये मैं क्या हो गया एकदम खाली खाली. और मुझे तो कनाडा में एक ऐसा भी लगता है कि जिस दिन, मान लीजिए किसी दिन मंडे या ट्यूसडे को वीक डे पे आपको कहा जाए घर रहो, आपको घबराहट शुरू हो जाएगी अकेले बैठे बैठे. ऐसा लगने लगेगा कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ.
0: करें क्या?
1: हाँ, कि नहीं कुछ गलत कर रही हूँ कि आज तो मुझे जॉब पे होना चाहिए. ये क्या हो रहा है?
0: इतनी आदत हो गई भागने की.
1: एग्जैक्टली उस रूटीन की. तो आप अपना कॉन्फिडेंस भी लूज करते हैं. तो इसमें ये भी एक बहुत बड़ी बात है. और फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो डेफिनेटली, बिकॉज आई कुड बी मिस्टेकन बट आई थिंक ऑन ईआई यू गेट 55% ऑफ व्हाट यू वर मेकिंग एंड देयर इज ऑल्सो अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 1800 और समथिंग लाइक दैट, विच कुड बी अ डिफरेंट फिगर एनीवेज. पर उसमें मतलब आपको डेफिनेटली कम पैसे मिलते हैं तो आपको फाइनेंशियली भी बर्डन लगने लगता है. एक गिल्ट लगती है इस सारा कुछ के बाद. एक शेम भी लगती है, ठीक है ना, कि स्पेशली इफ दिस क्वेश्चन इज asked by a male, तो उसमें male is considered to be a breadwinner,
0: ठीक है ना, क्योंकि हमारी सोसाइटी का वैसे ही कल्चर है.
1: वैसे ही कल्चर है तो उसको लगता है कि नहीं, मैं तो प्रोवाइडर था, मैं तो ब्रेडविनर था, मैं ही बैठा हूँ, ठीक है. और उससे एक हेल्पलेसनेस की फीलिंग आती है.
0: बिल्कुल.
1: और फ्यूचर के बारे में फियर भी आता है, ठीक है ना. और इन सब कुछ की वजह से इवेंचुअली एंगर भी आता है, पेशेंस भी लूज होती है. तो वो सारी चीजें होती हैं.
0: तो वो जो लोग हमारी केयर कर रहे होते हैं इसमें या हमें सपोर्ट कर रहे हैं, कई बार वो भी ऐसा फील करने लगते हैं कि वी आर नॉट इनफ, ये तो हम तो इतना कर रहे हैं, ये क्योंकि आप आपकी फ्रस्ट्रेशन अपने को लेके है, लेकिन वो निकलती उन पर है।
1: बिल्कुल, दूसरों पे निकल रही है। तो बेसिकली काउंसलिंग में हमारे यही गोल्स होते हैं इस केस में, कि हम कैसे रिड्यूस करें उनकी शेम को, उनके सेल्फ क्रिटिसिज्म को, और कैसे उनको नॉर्मलाइज करें कि ये जो हो रहा है इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है ना। और अगर उससे रिलेटेड कोई एंग्जाइटी या डिप्रेशन है उसको कैसे हम उसमें कैसे उनकी हेल्प करें, ठीक है। और उनको जो कोपिंग मैकेनिज्म है या जो इमोशनल स्टेबिलिटी है, इमोशन रेगुलेशन भी बोलते हैं हम उसको, तो वो उसको उनको कैसे प्रोवाइड करें।
0: तो बेसिकली जितनी चीजें आपने लिस्ट करी है कि ये हो सकती हैं, उनमें से
1: एक और उससे ज्यादा हो सकते
0: हैं, एक या उससे ज्यादा भी है, तो उनमें उसमें एक एक को पकड़ पकड़ के उसके हिसाब से
1: उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे। जी, उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे फिर, क्योंकि अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट थेरेपी इज नॉट अ मिरेकल। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आंसर्स आर इन योर सेल्फ, you know the answer. So a therapist is a person who will help you to uncomplex the complex emotions that you are going through, ठीक है ना, उनको अनवीव करके, जैसे खोल के एक गुलझन नहीं आ जाती, हम उसको सुलझाते हैं, तो उस तरह से भी बहुत बार काम करती है। मतलब ये भी एक थेरेपी का बहुत बड़ा कॉम्पोनेंट है, उसके अलावा कुछ लाइफ स्किल्स, कुछ स्ट्रेटजीज और भी सिखाई जाती हैं। लेकिन जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि आई एम यूजलेस, तो कम्युनिकेशन इज वेरी बिग इन लाइफ, इन रिलेशनशिप, even related to mental health. What you convince to yourself, it affects your thinking, it affects your mood, it affects how you feel, it affects your day, it affects your life, it affects your relationship, everything.
0: And I would say communication and the right communication.
1: तो इसी को हम I am useless को या I am a burden, एक ही बात है। तो उसी को balanced thought या balanced communication क्या है, क्योंकि पहले तो थॉट आएगा ना, वर्ड तो थॉट का रिप्रेजेंटेशन है। तो आई एम अ बर्डन, उसकी जगह आप कहेंगे आई एम टेम्पररीली नीडिंग सपोर्ट व्हाइल रिकवरिंग। देखिए कितना फर्क पड़ गया,
0: इसमें बोलने में एक उम्मीद है।
1: हाँ, एक उम्मीद है कि तो मैं जब तक ठीक नहीं हो रहा तब तक सपोर्ट ले रहा हूँ, ठीक है। आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग नथिंग, अब ये एक नेगेटिव फिर कम्युनिकेशन है। सो माई वैल्यू इज बिगर देन माई पे चेक।
0: Oh wow, and it is actually घर में हम कई बार सोचते हैं कि कोई bedridden family member होता है, कई बार हमें मतलब हम सोच रहे थे बस ये है हमारे लिए, ये कितनी बड़ी बात है।
1: और जो homemakers हैं, जो mothers हैं, जो बच्चों का ध्यान रखती हैं, ये it has been discussed multiple times कि उनकी job $80,000 or $100,000 से कम नहीं है पर ये
0: सही बात है,
1: जितने hours वो लगाती हैं
0: बिल्कुल ठीक
1: है, वो सारा volunteering में ही जा रहा है, ठीक है ना। सो आई शुड बी वर्किंग, ये चीज आप बोल रहे हैं अपने आप को या मन में सोच रहे हैं। सो आप उसके लिए उसकी जगह ये कहेंगे माय बॉडी इज रिकवरिंग फ्रॉम अ रियल इंजरी, ठीक है ना, कि मैं कोई जानबूझ के नहीं बैठा हूँ। तो इस तरह से आप अपनी कम्युनिकेशन को ठीक करके अपनी भावनाओं को, अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने डिसगस्ट को, अपने गिल्ट को, अपनी शेम को कम कर सकते हैं।
0: बेसिकली ट्रेन योर ब्रेन, तो थॉट्स राइट होंगे तो वो कहते हैं ना हम वो बन जाते हैं जो हमारे विचार होते हैं। तो विचारों को पहले सही करें, और सही करेंगे तो वही बोलेंगे, वही बोलेंगे तो वही आपके हाव भाव और व्यवहार में आएगा, वो सही हो जाएगा तो सब सही हो जाएगा। वेरी ट्रू, और मुझे लगता है बहुत अच्छी टिप आपने दी है। जिनका ये सवाल है उन्हें कुछ टेक अवे जरूर रहा होगा इसमें से। बाकी मैं फिर से ये कहूंगी कि अगर अपने आप ये जो टिप्स आप यहाँ पे लेते हैं छोटी छोटी, उन्हें आप जीवन में उतारें। अगर जो वो टिप्स यूज़ करके कॉन्शियसली आपका ठीक नहीं होता, आपको लगता है इट्स नॉट वर्किंग, देन यू माइट लाइक टू कॉन्टेक्ट प्रशांत जी और सम साइकोथेरेपिस्ट डायरेक्टली। और प्रशांत जी के क्लिनिक का नंबर अगेन 9054058224। आप इनकी वेबसाइट पर भी अपना सवाल या कोई भी बात छोड़ सकते हैं, विच इज़ आई वॉन्ट peace.org। कहते हैं ना कोई आपको हेल्प मिली हुई है उसको यूज जरूर करें। मैं हेल्प पे भी एक बात और करूंगी प्रशांत जी, जस्ट आफ्टर दिस ब्रेक।
1: श्योर।

0: That's studio number 416593055. Thank you for all your appreciation and questions. आप ऐसे ही भेजते रह करें, हम कोशिश करेंगे जितने ले पाते हैं हम लेंगे इस सेगमेंट में एवरी मंडे. प्रशांत जी, अभी ये भी एक सवाल उठ के आता है कई बार कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जब एक बार थेरेपी स्टार्ट हो जाए, अगर पहले तो तैयार नहीं होते अभी भी लोग. मैंने ऐसा देखा है कि उन्हें ये तो समझ में आने लगा है कई बार पढ़ के या जैसे ये सेगमेंट है सुन के या किसी ऐसे से मिलके कि इट इज हेल्पफुल थेरेपी, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि नो नो, आई एम नॉट द पर्सन हु नीड्स दिस. कहते ना, दूसरे को सफाई करने की जरूरत है, मैं कूड़ा बाहर फेंक सकता हूँ,
1: बिल्कुल ठीक,
0: तो मुझे जरूरत नहीं है कभी भी,
1: बिल्कुल ठीक.
0: मेरे बच्चे को हो सकती है, मेरी बीवी को हो सकती है, या मेरे पति को हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल, मैं ठीक हूँ.
1: जिसको जरूरत होती है वो सबसे बाद में आता है.
0: तो ये जो एक तो ये चीज की कैसे पता चले कि मुझे एक्चुअली जरूरत है. दूसरी चीज ये जब हम, ये एक बहुत बड़ा एक नोशन है शायद कि एक बार थेरेपी में जाना शुरू करेंगे तो हम तो इस चक्रव्यूह में फंस गए और लेबल अलग हो जाएंगे कि हम तो थेरेपी लेते हैं जी. तो इस चक्रव्यूह, ये चक्रव्यूह नहीं है क्या, कि इसको कैसे देखा जाता है और इसमें फंस जाता है एक बार आदमी तो क्या हमेशा के लिए कदम दवाई खाती रहनी पड़ेगी क्या?
1: तो पहले सवाल का जवाब तो ये है कि इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसको स्ट्रेस ना हो,
0: जहाँ में ऐसा कौन है जिसके जिसको गम मिला नहीं.
1: हाँ, जिसको गम मिला नहीं. एक और भी बहुत अच्छा गाना था शायद राजेश खन्ना जी का, कि औरों का गम देखा तो
0: मैं अपना गम भूल गया,
1: दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम.
0: ऐसे अप्रोच तो बहुत कम उन्हें पता होता है, लेकिन कहते मान जब हम दुखी होते हैं तो
1: नहीं, तब हम सोचते हैं दुनिया में गम कम है और मेरा गम ज्यादा,
0: मेरा गम ज्यादा है.
1: तो अगर तो आपका गम कम है और आप उसको मैनेज कर पा रहे हैं, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और सब किसी ना किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं. लाइफ सबकी टफ है, सब ने बिल्स देने हैं, रेंट देना है, मॉर्गेजेस देनी है, बच्चों को
0: पढ़ाना है. दिस इज नॉर्मल. और तो नॉर्मल को हम टफ नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ये नॉर्मल है.
1: हाँ, जब तक आप उसको
0: खुद ही टफ ना महसूस करें,
1: नहीं, जब तक आप उसको झेल रहे हैं बिना किसी बड़े सिम्टम के. अब वो सिम्टम्स क्या है, जब आपको पता लगेगा कि आपको हेल्प चाहिए, जब आपकी कोई भी चीज कॉन्स्टेंटली पिछले कई दिनों से, वो यूजली से अप टू 2 वीक्स, आप देखें कि पिछले 2 हफ्ते से, 14 दिनों से, 16 दिनों से आपको रात को नींद नहीं आ रही, ठीक है, या पिछले 14, 15, 16 दिन से आपका किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा, या पिछले 15, 16 दिन से आपका खाना खाने को दिल नहीं कर रहा, ठीक है, या आपका किसी पार्टी में जाने का, किसी का फोन उठाने का मन नहीं कर रहा, ठीक है, तो That is something wrong. जो बेसिकली आपके एक रूटीन को, आपकी बैलेंस्ड लाइफ को अगर इम्बैलेंस कर रही है कोई चीज, और वो भी पिछले 15-20 दिन से, देन इट इज टाइम टू सीक सम हेल्प. और उसमें भी आई ऑलवेज एडवाइज पीपल के टॉक टू योर क्लोज फैमिली मेंबर फर्स्ट. आप अपने हस्बैंड से, वाइफ से, अपने फादर से, जो भी, अपने अंकल से, मम्मा से, जिससे भी बात करें,
0: बड़ी बहन भाई, बड़े अच्छे भाई,
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप उनसे बात करें, किसी बहुत अच्छे फ्रेंड से बात करें, ठीक है, जिसमें आपको पता हो कि आपको जज नहीं किया जाएगा.
0: हाँ, कई बार कोई मेंटर होते हैं.
1: हाँ, क्योंकि आपको तो बहुत ज्यादा यही डर लगा रहता है कि मुझे जज किया जाएगा. हाँ, और इसीलिए लोग बहुत लेट हो जाते हैं. और उसमें क्या है फिर, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपके. और जो सेकंड क्वेश्चन आपने पूछा कि अगर हम चले गए
0: तो चक्रव्यूह में तो
1: चक्रव्यूह में तो नहीं पड़ गए. पहली बात तो जाना कैसे है.
0: हाँ,
1: वो भी समझना पड़ेगा. कुछ लोग तो डायरेक्टली साइकोथेरापिस्ट, सोशल वर्कर्स, साइकोलॉजिस्ट, इनको कांटेक्ट करते हैं, लेकिन ये बात समझने की है कि ये लोग आपकी जॉब के बेनिफिट्स होते हैं यूजुअली, उनके थ्रू दे चार्ज यू, सो दे आर नॉट कवर्ड अंडर ओहिप, अंडर हेल्थ कार्ड. सो बट समटाइम्स इफ थिंग्स गो वेरी वेरी बैड, इट्स ऑल्सो अ गुड आइडिया टू गो एंड सीक एडवाइस फ्रॉम योर फैमिली डॉक्टर. सो फैमिली डॉक्टर इज ऑफ कोर्स अंडर ओहिप, एंड many times family doctors send their patients to us.
0: Okay.
1: तो doctors को कई बार लगता है कि ये जो patient है ये सिर्फ therapy से ही ठीक हो जाएगा. So, और कई बार patient doctor को बोलता है कि मुझे अभी आप कोई medication मत दें, मुझे पहले therapy try करने दें.
0: Right.
1: और कई बार doctor और patient दोनों आपस में mutual consent से ये decide करते हैं कि नहीं, therapy भी लो और साथ में थोड़ी दवाई भी ले लो.
0: अच्छा, ठीक है.
1: और कई बार ऐसा भी होता है डॉक्टर को ऐसा लगता है कि इतना एक्यूट है और पेशेंट बहुत रिलक्टेंट है थेरेपी में जाने के, तो डॉक्टर कहता है भाई तुम सिर्फ दवाई ले लो। और चौथा केस है कई बार डॉक्टर को लगता है कि ये तो स्पेशलिस्ट के पास भेजना चाहिए, देन डॉक्टर विल रेफर यू टू अ साइकियाट्रिस्ट, बट अनफॉर्चुनेटली द वेट इज फ्रॉम 6 to 12 मंथ्स।
0: ठीक है ना, साइकियाट्रिस्ट में अगर जो करते हैं तो
1: साइकियाट्रिस्ट इज अ डॉक्टर हु कैन प्रोवाइड थेरेपी एज वेल एज हु कैन प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, बट अनफॉर्चुनेटली इन ओंटारियो साइकियाट्रिस्ट्स आर सो ओवरवेलम्ड दैट the appointments are hard to get and they are usually unable to spend too many sessions or too much time with the patients. Okay. They mainly focus more on medication. ठीक है ना, तो ये एक unfortunate fact है, तो इसलिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये सोचना बिल्कुल गलत है कि मैं एक बार इसमें फंस जाऊंगा। तो ये तो वही बात होगी कि आपके पेट में दर्द हुआ तो आपको किसने कहा ये दवाई खा लो, आप उसको ये थोड़ी कहते हैं कि तुम्हें सारी उम्र खानी पड़ेगी। हाँ ये बात लेकिन सच है कि जो मेंटल हेल्थ रिलेटेड मेडिकेशन है, अगेन आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई हैव टू मेंशन इट फर्स्ट, बट ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस वर्किंग विद डॉक्टर्स एंड विद पेशेंट्स आई कैन जस्ट tell something that these medications you have to take for longer period of time.
0: Longer.
1: Yes, and it could be maximum up to maybe a couple of years sometimes. Yeah. And ऐसा नहीं है कि आप एक हफ्ता खा के छोड़ देंगे या 10 दिन बाद छोड़ देंगे और उसके बाद प्रॉपर उसकी टेपरिंग होती है। ठीक है, आप मान लीजिए कोई चीज 100 mg की ले रहे थे, फिर 50 की लेंगे, फिर 25 की लेंगे, फिर एक दिन छोड़ के लेंगे, ऐसे धीरे धीरे करके एक दो महीने में वो छूटती है,
0: वो छूट जाएगी।
1: हाँ, तो आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को खराब करें और आप उस एंजाइटी में, उस पैनिक में, उस डिप्रेशन में, उस ग्रीफ में मर मर के जिए, उससे बेटर आप अगर काउंसलिंग से या एक गोली लेकर कुछ महीनों के लिए
0: आपकी क्वालिटी
1: ऑफ लाइफ बेटर होती हो,
0: व्हाई नॉट।
1: हाँ, तो ये इस चीज को समझने की जरूरत है और इस पे हम और भी बातें करते रहेंगे क्योंकि इट इज वेरी हार्ड to convince our community to come for therapy and first to talk about it. Yes.
0: Therapy pe aana to baat ki baat hai, pehle to acceptance ke
1: exactly
0: ke it I is need okay help. Yeah, someone needs a help in the family and it is okay to go and see. It's just jaise aap doctor ke paas jaate hain, kuch khana hai to aap grocery mein food lene jaate hain, to it's just like that, you need some help, you need some kind of service and you go to that service.
1: And it is something which is very intangible. Ye koi aisa koi jaise aapke knife laga sabzi kaatte hue to wo tangible hai, aapko blood dikh raha hai, aapko cut दिख रहा है, ठीक है, आपको फटाफट हेल्प चाहिए, सो दिस इज समथिंग विच इज नॉट विजिबल लाइक दैट, तो ये धीरे धीरे धीरे आपका नुकसान करती रहती है और आपको पता भी नहीं चलता
0: कि कभी बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। फिर कई बार होता है कि अरे अब तो ये इतना फैल गया रहता कि फिर समेटना मुश्किल है, तो कई बार कहते हैं ना छोटे कट को ही संभाल लें, उसे बड़ा ना बनने दें।
1: क्या है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन,
0: वेरी वेरी ट्रू। चलिए, थैंक यू सो मच प्रशांत जी, आई हैव मोर क्वेश्चंस बट अब अगली बार लेंगे क्वेश्चंस को, और बाकी सबका शुक्रिया अपने सवाल भेजने के लिए, हमें भेजते रह सकते हैं। स्टूडियो का नंबर रहता है 4165930055। आप हमें सोशल मीडिया पे भी अपने सवाल ड्रॉप कर सकते हैं या फिर प्रशांत जी को आप उनकी वेबसाइट पे भी अपना सवाल छोड़ सकते हैं, विच इज़ iwantpeace.org।

0: Genesis Markham, यहाँ मिले लग्जरी का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट डीलरशिप और आपकी अपनी लैंग्वेज में एक्सपर्ट सर्विस. लीज करें ब्यूटिफुली डिजाइन 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज करें 2026 GV70 सिर्फ 4.9% से. आज ही बुक करें टेस्ट ड्राइव. विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम. Genesis Markham, doing luxury your way. A proud member of Wayne's Auto Group.
1: And if you are not sure ke hum mein kitna geeky geek hai, to main aapko kuch science zarur bataungi, lekin usse pehle ye bataungi ki main kyun bataungi. Aaj jo din hai na, wo geek ke liye celebration wala din hota hai, jisme hum geeks ko celebrate karte hain. Aur अगर जैसे कि मैंने कहा फ्यू साइंस क्या होते हैं, कि अगर साइंस फिक्शन पे दिमाग टिका खोया रहता है आपका, तो आप समझ लें कि आप गीक हो सकते हैं. एंड देन अगर सब जानने को आप जिज्ञासु रहते हैं, तो आप गीक हो सकते हैं, यानी कि क्यूरियस जॉर्ज आपके अंदर बहुत सारा भर भर के भरा हुआ है. और अगर दूसरों को पॉइंट ऑफ व्यू समझने में आपको थोड़ी परेशानी हो जाती है कई बार, तो आप गीक हो सकते हैं कि यू नो इट्स नॉट बाय सेल्फिश वाली चीज, बट पल्ले नहीं पड़ता, कोशिश करते हैं फिर भी नहीं पड़ता. तो थिक एंड थिन में, यानी कि अच्छे बुरे वक्त में भी, अगर आप अपनी पसंद से लॉयल रहते हैं, तो आप गीक हो सकते हैं. या इफ यू आर कंफर्टेबल ओनली इन स्मॉल स्पेसिफिक सोशल ग्रुप्स, तो आप गीक हो सकते हैं. वैसे तो कहते हैं ना, बी नाइस टू गीक्स, यू प्रोबेबली एंड अप वर्किंग फॉर वन, वो कोट मैंने अक्सर पढ़ा है. पर ये भी है कि नाइस तो खैर सबसे ही रहना चाहिए, गीक और नो गीक. पर जो हम सबके अंदर गीक एक छुपा होता है, उस गीकीनेस को आप आज के दिन खास सेलिब्रेट जरूर कर सकते हैं. इट्स अ गीक प्राइड डे टूडे, रिमाइंडिंग एवरीवन कि गीक can also dance a la

0: Haan, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo fettis, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: विंटर्स में हमारे व्हीकल्स थोड़ी एक्स्ट्रा केयर और मेंटेनेंस मांगते हैं और उसके लिए गो टू माय मैकेनिक ऑटो एंड टायर सभी तरह की मैकेनिकल रिपेयर्स और टायर सर्विसेज के लिए आप वहाँ किसी भी ऑयल चेंज और सर्विसेज के साथ गेट अ कॉम्प्लीमेंट्री विंटर मेंटेनेंस इंस्पेक्शन एट अ $20 ऑफ ऑन ऑल सिंथेटिक ऑयल चेंज सर्विसेज मिशलिन टायर्स के ऑथराइज डीलर है ये एंड यू कैन गेट अप टू $150 रिबेट जब आप चार नए टायर्स खरीदते हैं इंश्योरेंस से ये डायरेक्ट डील करते हैं विजिट देयर मार्कम स्टोर एट मिडलैंड एंड स्टील्स और स्कारबोरो स्टोर मिडलैंड एंड एल्समियर पर For details, visit mymechanicauto.ca.
4: Music charts पर ये हैं on top. Private studio से नुक्कड़

0: अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: फायदा उठाएं स्प्रिंग स्पेशल मॉर्गेज रेट्स एंड एक्स्ट्रा प्रमोशन का विद अमित खुराना। 5 ईयर्स फिक्स 4.14%, 3 ईयर्स फिक्स 4.19%, 5 ईयर्स वेरिएबल 3.55%, प्लस कैश बैक फ्रॉम बैंक एंड स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम अमित खुराना अप टू $1,500। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। कॉल अमित 6473412785, 6473412785 और विजिट amitkhurana.com।
2: ये वो टाइम ऑफ द ईयर है जिसका आप वेट कर रहे थे। डेमोन्स्ट्रेटर इवेंट एट डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस, मई 16 तक। लीज रेट्स एज लो एज 2.9% अप टू 24 मंथ्स। सेलेक्ट डेमो व्हीकल्स पर सेविंग्स अप टू $4,989 इंक्लूडेड। बेस्ट सिलेक्शन के लिए डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस जल्दी विजिट करें। जल्दी करें, ऑफर एंड्स मई 16th। विजिट donvalleynorthlexus.com टुडे। अ प्राउड मेंबर ऑफ वेन्स ऑटो ग्रुप।
3: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑलस्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 6474535353। दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं। सिमरन बेंस एंड ऑलस्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स। कॉल सिमरन बेंस एट 6474535353, 6474535353. And yes, even for one car and a home, $400 to $500 की annual savings possible. Call Simran Benz 6474535353.
4: घर कहीं भी लेना।

And we wish a very happy birthday to the man who gave us classics, romantic wali, friendship wali, family wali, ultimate music wali, one after the other. Karan Johar ki baat kar rahi hu. And now to even Hindi viewers of Bahubali can even say ke record breaking mythological VFX effects wali classics bhi unhone de dali hain. All we would like to say to him today is a very happy birthday. And yes, saath mein ye ki movie se kabhi अलविदा ना कहना, क्योंकि इनकी फिल्में देखकर एक्चुअली मोर खुशी लेस कम होता है और साथ में कुछ कुछ भी होता है, इतनी कि इनकी फिल्में देखने से खुद को रोक पाना ए दिल है मुश्किल. फिलहाल ये गाना कभी खुशी कभी गम से.

0: attitude, huh?
1: To advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time. मेरी रेगुलर किराया देने से प्रॉपर्टी मेरे लैंडलॉर्ड की मॉर्गेज फ्री हुई और मेरे अपने घर का सपना वो सपना ही रह गया।
2: अब वक्त है अपने घर का सपना साकार करने का। मैं हूँ संजीव मनोचा, ब्रोकर ऑफ रेकर्ड माई रियल को, द रियल एस्टेट कंपनी। पिछले 20 सालों में मैंने सैकड़ों फर्स्ट टाइम बायर्स को उनके बजट और जरूरत के हिसाब से घर खरीदने में हेल्प की है। अब बारी आपकी। कॉल मी नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एंड स्मार्ट बायर्स रिवॉर्ड प्रोग्राम एट 416-843-7600।
1: दैट्स 416-843-7600 और विजिट माई रियल को .com.
3: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
4: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
3: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
5: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
6: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.

0: राजधानी राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी राजधानी
2: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, द लार्जेस्ट इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चेन इन कनाडा। फाइंड आउट मोर एट rajdhanisweets.ca।
3: Don Valley North Hyundai आपको दे रहा है मौका FIFA World Cup 2026 के टिकट्स जीतने का। कोई भी व्हीकल बाइकर के घर ले जाएं और पाएं डबल एंट्रीज, विंटर टायर्स या एक्सटेंडेड वारंटी लें और हर एक के साथ पाएं एक एक्स्ट्रा एंट्री। आज ड्राइव करें, कल जीतें। विजिट donvalleynorthhyundai.com today। A proud member of Vane's Auto Group।
4: You are tuned into CMR at 5 p.m. with RJ Swati on Filmy Nukkad. It's the free time.
5: Ek main hoon, ek tu hai.

0: And today marks the death anniversary of लक्ष्मीकांत प्यारेलाल डियो म्यूजिक कंपोजर्स के लक्ष्मीकांत जी,
1: क्योंकि दिवाली पे पैदा हुए थे लक्ष्मी पूजा वाले दिन, तो नाम पड़ गया लक्ष्मीकांत। फिर म्यूजिक मैंडोलिन से उनका शुरू हुआ छोटेपन में ही, और फिर वॉयलिन आया, फिर कॉन्सर्ट्स में बजाने के मौके मिले, और फिर प्यारे लाल जी से मुलाकात और दोस्ती, जिसे एक और एक किसी उनकी जोड़ी बन गई। कहते हैं लक्ष्मीकांत जी वोकल्स देखते थे एंड प्यारे लाल जी ऑर्केस्ट्रेशन, और दोनों की वो जो बैलेंस्ड जुगलबंदी होती थी काम में, खूबसूरत सी कॉम्पोजिशंस दे जाती थी, फ्रॉम सेमी क्लासिकल टू फोक, जो कि पुरानी फिल्मों में था अक्सर, देन शाकिट में जैसे रॉक एंड रोल टाइप का म्यूजिक दिया, एंड देन कर्ज में एक अलग ही डिस्को टाइप का म्यूजिक, अच्छी सी कॉम्पोजिशंस होती थी। इनफैक्ट बिना का गीतमाला जो प्रोग्राम आता था ना तब रेडियो पर, कहते हैं 16 में से 13 गाने जैसे इन्हीं के होते थे एज टॉप नंबर्स। आरडी बर्मन से भी इनकी दोस्ती एक्चुअली बहुत अच्छी थी, इतनी कि पंचम प्लेड माउथ ऑर्गन फॉर ऑल द सॉन्ग्स ऑफ दोस्ती व्हेन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल स्टार्टेड देयर इंडिपेंडेंट म्यूजिक। एंड ऐसे ही जब तेरी कसम में वो गाना था ना, दिल की बात कहीं लप्पे ना आ जाए, तब पंचम का म्यूजिक था फिल्म में, पर लक्ष्मीकांत जी मेड अ गेस्ट अपीयरेंस एज अ कंपोजर प्लेइंग हिमसेल्फ ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर सॉन्ग। सो ऑन दिस किस्सा फुल नोट, दिस इज स्वाति साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, लीविंग यू विद दिस जैम ऑफ हिज टैलेंट। मिलते हैं फिर कल।

0: FM.
1: न्यूज के लिए हमें दावत दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट. फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861 6472957861.
2: पेश खिदमत है आज की अहम खबरें. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ अमरीका का मुजवजा माहिदा अभी मुकम्मल तौर पर तय नहीं पाया, ताहम इस हवाले से अच्छी खबर ही सामने आएगी क्योंकि वो बुरी डील नहीं करते. उनका कहना था कि अपने नुमाइंदों को माहिदे के लिए मैंने जल्दबाजी न करने की हिदायत की है. दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, मिस्र, उर्दून और तुर्किया समेत तमाम मुसलमान ममालिक से इब्राहिमी माहिदे पर दस्तखत करने का मुतालबा कर दिया. उधर मुंजमद असासों की बहाली और माहिदे के इम्कान पर बातचीत के लिए ईरानी पार्लियामेंट की स्पीकर बाकर कालिबाफ और वजीर खारजा अब्बास अराकजी कतर पहुँच गए. ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि अमरीका के साथ कई निकात पर फैसला हो चुका है लेकिन

0: के मोहम्मद सलमान।
1: मॉर्गेज हो तो वही जो आपके लिए हो सही,
0: मॉर्गेज वही जो आपके लिए सही।
2: कॉल मोहम्मद सलमान एट 437-237-8888। इट्स 437-237-8888। लाइसेंस नंबर 12458। Bride of Mississauga Barbecue Tonight Restaurant, 35 Dundas Street West, Highway 10 और Dundas के intersection Mississauga में। Barbecue का असली मजा Barbecue Tonight पर। चरगा, लाहौरी फिश, चपली कबाब, कड़ाही गोश्त, चिकन टिक्का मसाला, चिकन बिरयानी, सीख कबाब, रेशमी कबाब, चिकन बोटी, चिकन टिक्का, बिहारी कबाब, लैम चॉप्स, अफगानी टिक्का, निहारी और बहुत कुछ। खूबसूरत कुशादा पैटियो Barbecue Tonight Restaurant, 9052680088। It's 9052680088। टन और डंडास के इंटरसेक्शन में सिसागा।
3: खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157।
4: जी हाँ, 416-570-0157 अंजुम कुरैशी साहब के नाम का नंबर है। खुदा खास्ता आपका कार एक्सीडेंट हो जाए, आप गिर जाएं, आपको टिकट मिल जाए, बिल्कुल परेशान ना हों। फॉर द वेरी लॉन्ग लॉन्ग टाइम इसी प्रोफेशन में हैं, वेरी रिनाउंड लॉ फर्म है जिसके साथ बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, आपके अपनी ज़ुबान में बात करते हैं, कहीं भी खुदा न खास्ता ट्रैफिक एक्सीडेंट में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, बिल्कुल परेशान ना हो। नंबर अपने पास महफूज रखें, 416-570-0157। अंजुम कुरैशी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, खुश आमदीद कहेंगे। अंजुम कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम सलाम, और तमाम सुनने वालों को आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। और रेडियो टोरंटो पे आने का मकसद ये होता है कि बार बार आपको ये रिमाइंडर दिया जाए कि बगैर इंश्योरेंस के आपने गाड़ी नहीं चलानी। अगर आपके घर में कोई ऐसा ड्राइवर है जिसको आपने रजिस्टर नहीं कराया है, तो उसको गाड़ी मत चलाने दें, क्योंकि अगर कभी ऐसा कोई कार एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें आपका कोई बच्चा गाड़ी चला रहा है या जिसका नाम इंश्योरेंस में नहीं है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। और खास तौर पे बाज़ वक़्त इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि आपने एग्जेम्पशन साइन करना है, यानी अगर आपके घर में कोई 18 साल से बड़ा बच्चा है तो आप साइन करके दो कि ये गाड़ी को हाथ नहीं लगाएगा। और आप उस तरह से साइन करके दे देते हैं, लेकिन बाद में भूल जाते हैं, बच्चे जिद करते हैं कि थोड़ी सी देर के लिए गाड़ी ले जाएं, एक दिन के लिए ले जाएं, स्कूल चले जाएं, और उस वक्त आप बच्चों को गाड़ी दे देते हैं। और फिर अगर खुदा ना करे कोई कार एक्सीडेंट हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी आपकी गाड़ी का भी पैसा नहीं देती और आपके सेटलमेंट का भी पैसा नहीं देती, और उनके पास राइट होता है कि वो आपकी इंश्योरेंस को टर्मिनेट कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो उनसे वादा किया वो पूरा नहीं किया। जबकि हम इंश्योरेंस से जो वादा लेते हैं वो ये लेते हैं कि हम अपने पैसे हर वक्त अपने प्रीमियम का बिल्कुल वक्त पे भरेंगे, और अगर हमारा कोई कार एक्सीडेंट हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी के वादे के तहत गाड़ी का पैसा, रेंटल कार का पैसा, टोइंग का पैसा, और फिर पर्सनल इंजरी में लमसम सेटलमेंट जाके आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपको देती है। लेकिन एक झूठ तमाम पूरे केस को खत्म कर देता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी एक्सक्यूजेस ढूंढ रही होती है, और इंश्योरेंस कंपनी इस बात के लिए आपको बहुत ज्यादा पाबंद करती है कि जो आप कहेंगे वही करेंगे, उसके अलावा आप कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे कि आपने उनसे झूठ बोला या मिसरिप्रेजेंट किया अपने आप को। तो इन बातों को याद रखें, कोई भी कार एक्सीडेंट होता है, हमने हमेशा आपसे कहा कि हमारे पास टीम ऑफ लॉयर मौजूद है जो न सिर्फ आपके क्लेम को डील करते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी, कोई भी कार एक्सीडेंट हुआ है आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपके सुनहरियों पे आपको बैठ के सारा कुछ बताया जाता है, लॉयर्स आपसे बात करते हैं और देखते हैं कि आप कहाँ खड़े हैं, आपको किन किन चीजों की जरूरत है। और फिर जब ये केस जो होता है ये एक दो दिन का नहीं होता, जाहिर है साल तक चलता है, आपको गाहे बगाहे जरूरत होती है, आपको हर चीज में लॉयर की गाइडलाइंस की जरूरत होती है। तो ये बेहतरीन तरीका है कि आपको कोई फीस भी नहीं देने पड़े और आपका क्लेम भी आपको मिल जाए। 416-570-0157, किसी भी कार एक्सीडेंट में आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया,
4: थैंक यू वेरी मच अंजुम कुरैशी साहब, फ्राइडे इंशाल्लाह आपसे भी बात करते हैं। थैंक यू, नंबर नोट कीजिए, 416-570-0157, 416-570-0157। अमरीकी डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत कई इस्लामी ममालिक से मुतालबा किया है कि वो इब्राहिम अकॉर्ड में शामिल हो जाएं, इसराइल को तस्लीम कर लें। इसराइल से ताल्लुक मामूल पर लाने के लिए सऊदी अरब ने एक वाज शर्त का ऐलान किया है, क्या है शर्त, इस पर बात करेंगे थोड़ी देर में। इस वक्त आपको लिए चलते हैं आज के शायरी के सेगमेंट की तरफ।
6: नए कपड़े बदल कर जाऊं कहां और बाल बनाऊं किसके लिए, वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया मैं बाहर जाऊं किसके लिए। जिस धूप के दिल में ठंडक थी वो धूप उसी के साथ गई, इन जलती बलती गलियों में अब खाक उड़ाऊं किसके लिए। वो शहर में था तो उसके लिए औरों से भी मिलना पड़ता था, अब ऐसे वैसे लोगों के मैं नाज उठाऊं किसके लिए। अब शहर में उसका बदल ही नहीं, कोई वैसा जाने गजल ही नहीं, ऐवान गजल में लफ्जों के गुलदान सजाऊं किसके लिए। मुद्दत से कोई आया न गया, सुनसान पड़ी है घर की फजा, इन खाली कमरों में नासिर अब शमा जलाऊं किसके लिए। नए कपड़े बदल कर जाऊं कहां और बाल बनाऊं किसके लिए। वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, मैं बाहर जाऊं किसके लिए।

0: नए कपड़े बदल कर जाऊँ कहाँ। वैसे मेरे ख्याल कभी कभी कुछ ना कुछ लोग किसी के लिए नए कपड़े पहनते ज़रूर हैं, उसका फ़ायदा होता है नहीं ये हम नहीं कुछ कह सकते, क्योंकि इस वक्त हो चला है वक्त आपको ले चलने का कनेडियन इंग्लिश हेडलाइंस की तरफ, जो आपके लिए पेश करती हैं वानी।
1: न्यूज के लिए मैदान दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट, फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861 6472957861।
2: गुड इवनिंग, यू आर लिसनिंग टू रेडियो पाकिस्तान टोरंटो, दिस इज मी इवानी विद लोकल अपडेट्स। Toronto police working to identify a man found dead in parking garage over the weekend after the death was ruled a homicide. Navdeep Bains has officially entered the race to be the next leader of Ontario Liberal Party. The former federal cabinet minister filed his paperwork with Election Ontario over the weekend. A cyclist has been airlifted to hospital after a collision with a vehicle in Stouffville. Foreign Affairs Minister Anita Anand says Israel's mistreatment of Canadians participating in a flotilla trying to reach Gaza violated the Vienna Convention. After a grey and rainy weekend, Toronto and the GTA is being rewarded with a warm and sunny week. Temperatures will be summer-like on Tuesday with a high of 27 degrees Celsius, but it will feel like 31 with the humidity with mostly sunny skies. Olivia Chow registers to run for re-election as Toronto Mayor, says she has unfinished business as Toronto Mayor. Caroline Mulroney resigns from Ford Governments for personal reasons. Concerns in Markham after a second person has been bitten by a coyote in less than a week leaves the residents fearful. Local officials in the Democratic Republic of Congo says 18 patients with suspected Ebola fled after the treatment tent they were in was set ablaze over the weekend. Prime Minister Mark Carney warned separation referenda used as leverage for future talks sometimes become a very dangerous bluff. One Alberta MP says Mark Carney's tone was not responsible, accusing the PM of spreading fear. Ontario considers highway license plate cameras to crack down on rising retail theft. Stay tuned on Radio Pakistan Toronto for more such updates. Good night.
0: Radio Pakistan Toronto, CMR 101.3 FM. Students, meet up at number 416-593-0003. Because of Donald Trump, ne tamam Muslim mamalik se Ibrahimi Mohide Ibrahim record par दस्तखत करने का मुतालबा किया। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने इसराइल से ताल्लुक मामूल पर लाने की वाज़ह शर्त पेश कर दी है। सीएनएन को एक इंटरव्यू दे रहे थे और उनका कहना था कि सऊदी अरब सिर्फ उसी सूरत में इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने पर तैयार हो सकता है अगर एक फ़लस्तीनी रियासत तख्लीक करने का अमल शुरू किया जाए और वह ऐसा अमल हो जिससे वापसी भी ना हो सके। और तमाम मुस्लिम मालिक का अक्सर का, शायद कुछ नहीं, अक्सर का यही मुतालबा है कि फ़लस्तीन की अलहदा से रियासत हो और उसको मुकम्मल तौर पर इंडिपेंडेंटली अपने काम करने की इजाज़त होनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो यकीनन ये एक तो फ़लस्तीन के लिए बहुत अच्छा और खित्ते के लिए बहुत अच्छा होगा और शायद उसके बाद मुस्लिम ममालिक के इसराइल से ताल्लुकात भी बेहतर हो सकते हैं। 416-593-0003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम। इकरा सेंटर के ज़ेर एहतमाम ईद उल अज़हा की प्रेयर वेंसडे मे 27th, पहली नमाज 8 बजे, दूसरी 10 बजे मेराज बैंक्वेट हॉल एंड कन्वेंशन सेंटर 1917 एलबीएन रोड एटोबिको में अदा की जाएगी। और बच्चों के लिए इसमें कैंडीज और बलून्स भी होंगे, फ्री पार्किंग है। आप इस करीब वहाँ रहते हैं तो ज़रूर तशरीफ़ ले जाइए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल 416-744-2099 416-744-2099। बोल्टन में रहने वालों के लिए खुलफाए राशिदीन इस्लामिक सेंटर के ज़रिए तमाम इस्लामिक सोसाइटी ऑफ बोल्टन कैलेडन ईद उल अज़हा की प्रेयर जो है वेंसडे 27th ऑफ मे को एल्बियन बोल्टन कम्युनिटी सेंटर 150 क्वीन स्ट्रीट साउथ बोल्टन में अदा की जाएगी। पहली नमाज 8 बजे, दूसरी 10 बजे। बहुत सी पार्किंग स्पेस अवेलेबल है, बलून्स एंड कैंडीज फॉर द किड्स, रिफ्रेशमेंट का भी इंतजाम है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल 6474008004। रिकॉर्डेड कमर्शियल ब्रेक लेंगे, प्रोग्राम में वापस आते हैं, स्टे ट्यून।
3: You are listening to Radio Pakistan Toronto.

0: तलावट्टी को कॉल मिला।
1: तलावट 6472957861 Reconstruction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. तलावट 6472957861
0: को कॉल मिला।
1: तलावट 6472957861।
2: सिटी ऑफ ब्रम्पटन शहरियों को 7 जून दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक गेज पार्क ब्रम्पटन में ईद की खुशियों में शामिल होने की दावत देती है। इस फैमिली फ्रेंडली तकरीब में बच्चों के लिए फ्री एक्टिविटीज, लाइव कल्चरल परफॉर्मेंसेज, दिलचस्प खेल और हलाल फूड के स्टॉल्स होंगे। मेहमानों से गुजारिश है कि वो मकामी तंजीमों की सपोर्ट के लिए नॉन पेरिशेबल फूड आइटम्स या नए अनरैप्ड खिलौने लेकर आए। मजीद मालूमात के लिए brampton.ca/eid पर लॉगिन हो।
3: याद रखें, अगर आप किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में चार्ज हो गए हैं या आपको कोई भी फैमिली लॉ का मसला है, जैसे कि प्रॉपर्टी डिवीजन, स्पाउसल सपोर्ट, चाइल्ड कस्टडी एंड एक्सेस, या आपका कोई सिविल लिटिगेशन का मामला है, कम्युनिटी के जाने पहचाने और तजुर्बेकार लॉयर ताहिर मजीद से राब्ता कीजिए 6478384773। कानूनी मामलात के लिए उनसे राब्ते कीजिए जो कानून को मुकम्मल तौर पर जानते हैं। फॉर ऑल योर लीगल मैटर्स कॉल ताहिर मजीद 6478384773।
4: बहुत खुशबू आ रही है खाने में, ऐसा लग रहा है जैसे घर के पिसे हुए मसालों से बना हो।
5: अरे खुशबू कैसी नहीं होगी, ये हांडी के मसालों का कमाल है जो चुन चुन के इकट्ठे किए गए हैं खास हमारे लिए, ताकि ये लज्जत और स्वाद हमें मिल सके।
6: हांडी मसाले, बिल्कुल घर जैसा स्वाद।
7: फॉर होलसेल इंक्वायरी कॉल 4167465550
2: बटकड़ाही की पिकरिंग लोकेशन में आपके लिए 6 जून से हलवा पूरी का स्पेशल नाश्ता, ऐसा जायका जो आपने पहले कभी चखा ही ना हो। इसके अलावा बटकड़ाही की रिवायती कड़ाही, गोट पाए, निहारी, खोए वाले चने, स्मोकी कीमा, बटर और सेसमी नान, लस्सी और बेशुमार आइटम्स। केटरिंग के लिए स्मॉल और लार्ज ट्रेज अवेलेबल है जिसमें आपके पसंद की बेशुमार डिशेज। रेस्टोरेंट के साथ 150 लोगों तक की पार्टी के लिए बैंक्वेट हॉल जिसमें मेहंदी, बर्थडे, वेडिंग, फैमिली या कॉर्पोरेट इवेंट्स अरेंज किए जा सकते हैं। बुकिंग के लिए अभी कॉल कर लें बटकड़ाही 820 किंगस्टन रोड पिकरिंग 9058390002 बटकड़ाही, जहां 6 जून से हलवा पूरी का स्पेशल नाश्ता। कर्ज इंसान का ज़हनी सुकून छीन लेता है, अगर आप कर्ज के बोझ से परेशान हैं तो ऑल डेट सॉल्यूशन के एम सिद्दीक से राबिता कीजिए 4166710577। जीटी भर में 4 लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, मुकम्मल राजदारी और फीस आपके केस के सेटल होने के बाद लेते हैं। केस देखने के बाद मुकम्मल गारंटी के साथ आपको बताएंगे कि कितने फीसद तक कर्ज माफ हो सकता है और फिर सूद से पाक आसान अकसात में आप अदायगी कर सकेंगे। कलेक्शन कॉल आना हो जाएंगी बंद और आपकी परेशानियां हो जाएंगी खत्म। अभी एतमाद के साथ कॉल कीजिए 4166710577। अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो शहबाज अकबर उनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम आपको मुकम्मल कंसल्टेंसी फराहम करेंगे। अगर आप रिफ्यूजी क्लेम करना चाहते हैं या इमिग्रेशन रिफ्यूजी बोर्ड में किसी भी किस्म के अपील करना चाहते हैं, बिजनेस इमिग्रेशन अप्लाई करना हो, स्किल्ड वर्कर क्लास हो, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, स्टूडेंट वीजा या सुपर वीजा अप्लाई करना चाहते हो या फिर फैमिली स्पॉन्सरशिप, तो हमारी एक्सपर्ट टीम आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेगी। 2 लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, ईस्ट में मार्कम एंड शेपर्ड, वेस्ट में हाईवे 10 और स्टील्स का इंटरसेक्शन। अभी कीजिए 4168559464। शहबाज अकबर साहब के रابطے के नंबर 4168559464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन।
8: अपने मकान की नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
9: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, जहाँ स्पेशल सेल चल रही है, टीवी, फ्रिज, वॉशर ड्रायर, किचन रेंज हुड, माइक्रोवेव, सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
8: सेल तो अब चल रही है पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
9: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
8: दैट्स वंडरफुल।
9: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा।
8: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
9: ऑन बोवे, जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलन, टेलीफोन 905-450-2828 और विजिट brampton appliances.ca।
2: The best gourmet pizza with best prices. Pizza Pop, 3075 Ridgeway Drive, Mississauga, or visit pizzapop.ca. Family ke saath dine in karein ya take out. Bachchon aur badon sabhi ki pehli choice Pizza Pop. Laziz aur mazedar tandoori chicken pizza, cheese steak pizza, chicken shawarma pizza. Exclusive family offer: large tandoori chicken pizza, large cheese pizza, two dipping sauce, three cans of pop for $24.99 only. For more information and take out order, call 905-828-0985. It's 905-828-0985. Pizza Pop, 3075 Ridgeway Drive, Mississauga. कनाडा में आए हर खानदान का ख्वाब होता है कि उनका एक अपना प्यारा सा घर हो या कारोबार हो, लेकिन मॉर्गेज के बढ़ते रेट्स और घरों की बढ़ती कीमतें अगर आपके ख्वाब को पूरा नहीं होने दे रही तो रॉयल फाइनेंशियल ग्रुप के शिराज हुसैन से राब्ता कीजिए। शिराज हुसैन और उनकी टीम 100 से ज्यादा लेंडर्स के साथ काम करते हैं। इनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम अपनी सर्विसेज में एक्सपर्ट हैं। मॉर्गेज चाहे घर की हो या कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, प्राइवेट, या आपको चाहिए इक्विटी लाइन ऑफ लोन, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन, 100% गारंटीड अप्रूवल। कॉल शिराज हुसैन 647-271-4147। लोग तो मॉर्गेज का वादा करते हैं, लेकिन हम आपसे किया हुआ वादा पूरा करते हैं। कॉल शिराज हुसैन 647-271-4147।
10: जी हाँ, 647-271-4147 ये शिराज हुसैन साहब का डायरेक्ट नंबर है, और ईस्ट में भी और वेस्ट में दोनों में इनके ऑफिस हैं, रॉयल फाइनेंशियल ग्रुप। मॉर्गेज के हवाले से अगर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए, लोन चाहिए, बिजनेस लोन चाहिए, रियल स्टेट के कोई मैटर्स हों, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। 647-271-4147 हमारे साथ मौजूद है, खुश आमदीद कहेंगे। शिराज साहब अस्सलाम वालेकुम।
11: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं?
10: बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आजकल क्या सूरत हाल है मॉर्गेज की, आसानी से मिल रही है या मुश्किल है, या आपके थ्रू आसानी से मिल जाती है?
11: बात आसानी है, मुश्किल के लिए बात यह है कि आप डील को लेके कैसे प्रेजेंट कैसे करते हैं। मेन चीज है डील को रेडी करना।
10: ठीक है,
11: बहुत ऐसे हमारे पास क्लाइंट आ रहे हैं अभी भी, आप देखें कि जो न्यू फर्स्ट टाइम बायर्स है ना, यकीन करें उनको किसी चीज का नॉलेज नहीं है, उनको इतना नहीं पता होता कि नोटिस ऑफ असेसमेंट क्या है, T1 क्या है, फर्स्ट टाइम बायर है, तो वो जब ऐसे ही पकड़ के किसी कहीं चले जाते हैं ना तो डील खराब कर देते हैं। हम क्या करते हैं कि हम उनको पहले पूरा गाइड करते हैं, यार ये चीजें होती क्या है, आप कर क्या रहे हैं, तो उनकी पूरी फाइल को हम रेडी करते हैं, उनको गाइड करते हैं कि ये चीजें आप बैंक की रिक्वायरमेंट है, ये चीजें ऐसे चाहिए, तो वो पूरा हम उसको रेडी करने के बाद जब बैंक में फाइल भेजते हैं ना, तो शुक्र अल्लाह का कि अभी तक जितनी डील कर रहे हैं हम उनको क्लोज कर रहे हैं। आगे से फर्स्ट टाइम बार जो नए आ रहे हैं उनके लिए उनको हम गाइड करते हैं, एक एक चीज समझाते हैं, तो वो इजी हो जाता है फिर अप्रूवल लेना बैंक से।
10: सही, अभी HST में कुछ रिबेट मिल रहा है, फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए तो काफी रिबेट्स हैं, लेकिन मसला सिर्फ क्वालिफिकेशन का आता है, तो क्या कम डाउन पे भी क्वालिफाई हो जाते हैं फर्स्ट टाइम होम बायर?
11: बिल्कुल, फर्स्ट टाइम हम 5% पे डील्स क्लोज कर रहे हैं, बहुत हमारी डील्स है जो 5% पे जा रही है फर्स्ट टाइम बायर के लिए, और बिल्कुल, और हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, बैंक के भी प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें फर्स्ट टाइम बायर है उनको हम क्वालिफाई करते हैं। आपके पास मल्टी प्रॉपर्टीज है, आपके पास कॉर्पोरेशन के प्रॉपर्टीज है, तो बहुत ऐसी चीजें हैं, अगेन वही नॉलेज के बैंक ऑफर क्या करता है, बहुत ऐसी चीजें हैं जो आम लोगों को पता ही नहीं है बैंकिंग के बारे में कि बैंक कर क्या रहा है,
10: ठीक है,
11: तो वो हम उनको फिर गाइड करते हैं।
10: 647-271-4147 647-271-4147 शिराज साहब के रब्ते के नंबर। अच्छा, बहुत से लोगों की रिन्यूअल आने इस साल, बहुत से लोगों की जो है रिन्यूअल होगी मॉर्गेज की, एक तो ये बताएं बहुत से लोग थे जो किसी प्रॉब्लम में बी लेंडर के पास प्राइवेट उन्होंने मॉर्गेज ली हुई थी, क्या उनके लिए कोई हेल्प हो सकती है कि वो ए लेंडर पे चले जाएं, और क्या जरूरी है कि 2-3 महीने पहले आपसे रब्ता करें ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व किया जा सके?
11: बिल्कुल, ऐसी तो हम बहुत डील्स कर रहे हैं, आपको पता है जो हालात चल रहे हैं, जो प्रीवियस व्यू है तो पहले भी चल रहे थे ऐसे पास में, तो लोगों ने सेकंड मॉर्गेजेस ली हुई है, क्रेडिट कार्ड मैक्स कर चुके हुए हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट मैक्स कर चुके हुए हैं, और हम उनको क्या करते हैं, वो जब हमारे पास आते हैं हम उनका वो सब कुछ पे ऑफ करा रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि जिसकी रिन्यूअल आ रही है वो हमसे कम से कम 1 महीना हमें पहले कॉल करें, कॉल करके हमें बताया हमारी रिन्यूअल आ रही है, तो हम उनकी उनको अगर बी साइड पे हैं तो उनको ए साइड में लेके आते हैं, अगर प्राइवेट मॉर्गेज है तो उसको पे ऑफ कर रहे हैं। आप देखेंगे कि बहुत ऐसे लोग हैं जो सेकंड मॉर्गेज को पे ऑफ नहीं कर पा रहे, उनके घर पावर ऑफ सेल पे जा रहे हैं, मेरे पास लोग ऐसे आते हैं, ये कहते हैं यार ये घर पड़ा हुआ क्लोज नहीं कर पाते, तो हम कहते हैं यार आप छोड़ो ना, ऐसे जो घर है आपका चल रहा है उसको जाया ना करो, तो हम उनकी हेल्प करके उनके जितने मैटर मसले चल रहे हैं उसको हम क्लियर करते हैं और मॉर्गेज करा के दे रहे हैं।
10: वेरी राइट, 6472714147। बिजनेसेस भी बड़े इफेक्ट हुए हैं और बाज़ औक़ात उनको कुछ पैसे चाहिए होते हैं थोड़ा सा चीज़ें बेहतर करने के लिए, तो ये बिजनेस लोन या लाइन ऑफ क्रेडिट के हवाले से आप किस तरह से हेल्प कर सकते हैं?
11: बिजनेस लोन तो हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं न्यू बिजनेस के लिए, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, कोई फ्रेंचाइज बाय करना चाह रहा है, कोई ब्रांड न्यू लोकेशन ओपन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए तो हम बैंक से लोन करा के दे रहे हैं अप टू $500,000 का। बिजनेस लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए अगर आपकी बिजनेस रनिंग पे है तो उनको हम ऑपरेटिंग लाइन ऑफ क्रेडिट करा के दे रहे हैं, पर्सनल लाइन ऑफ क्रेडिट है, कुछ लोन्स भी बिजनेसेस के लिए अवेलेबल है हमारे पास, तो हमें कॉल करें अगर किसी भी तरह की इनको हेल्प चाहिए लोन में लाइन में, तो हम इनकी हेल्प कर सकते हैं।
10: 6472714147 रबते के नंबर है। माशाल्लाह से आप इवेंट ऑर्गेनाइज भी करते हैं, प्रमोटर भी हैं, इस हवाले से आपका एक और शो मैंने सुना है, बिलाल सईद साहब आ रहे हैं 29 अगस्त को, मैं चाहूँगा थोड़ा सा इस हवाले से भी बता दीजिए हमारे सुनने वालों को।
11: बिल्कुल, बिलाल सईद का हम शो कर रहे हैं 29 को और राइट आफ्टर 10 दिन बाद एक और शो कर रहे हैं, तो बैक टू बैक दो शो है हमारे।
10: जबरदस्त,
11: तो अभी बिलाल सईद का हमने अनाउंस किया है, नेक्स्ट वाला हम नेक्स्ट वीक करेंगे अनाउंस। तो बिलाल सईद के लिए हमने टिकट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, सेल पे आ चुकी है इवेंट ब्राइट आर्ट सी ए पे। तो बिलाल सईद आपको पता हमारे पाकिस्तानी पंजाबी रैपर भी हैं, तो उनके गाने बड़े फेमस हैं, उन्होंने बड़े बड़े बड़ी फिल्मों में गाने दिए हैं, तो उनका हम शो कर रहे हैं। आपको पता साल में एक दो शो तो साल
10: करते हैं, बिल्कुल सही।
11: तो एंटरटेनमेंट कम्युनिटी के लिए इतनी स्ट्रेस है, तो ये थोड़ा सा स्ट्रेस इधर आके ना वो रिलैक्स हो जाते हैं लोग।
10: बिल्कुल ठीक है जनाब, आप उस हवाले से भी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए इनसे, कुछ स्पॉन्सर करना चाहें शो को तब भी आप 6472714147 6472714147 पर रब्ता कर सकते हैं। शिराज भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर बात करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। नंबर नोट कीजिए, शिराज हुसैन, रॉयल फाइनेंशियल ग्रुप, 6472714147 6472714147 स्कार्बो वेस्ट, स्कार्बो साउथ वेस्ट का जो नॉमिनेशन कलेक्शन था, जो कि एरिक्सन स्मिथ जो के लिबरल पार्टी के लीडरशिप के नॉमिनेशन के उम्मीदवार भी थे, पिछली दफ़ा भी रह गए थे, तो उनके हवाले से बड़ा ख्याल था। नवदीप बैन साहब अब लिबरल लीडरशिप की रेस में शामिल हो गए हैं, इलेक्शन कनाडा में उन्होंने जो है रजिस्ट्रेशन भी करवा दी है, शायद वो भी इंतज़ार कर रहे थे कि इसका रिजल्ट आए तो फिर सूरत बने, क्योंकि उनकी अपील भी जो है वो खारिज हो गई और जो उन्होंने अपील की थी, लेकिन जो कमेटी है उन्होंने हफीज साहब को ही जो है वो कहते जनरली वही इसको जीते हैं, नंबर वन वही रहे हैं। तो उसके बाद आज नवदीप बैन साहब ने, जो कि मिनिस्टर भी रहे हैं ट्रूडो साहब की गवर्नमेंट में और वेरी पॉपुलर इन साउथ एशियन कम्युनिटी, और उसके बाद वो सियासत से थोड़ा सा अलग हो गए थे, एक कॉर्पोरेट मिखल सर्विस में चले गए थे। अब कितने वो इम्पोर्टेंट उम्मीदवार होंगे, उन्होंने मुख्तलिफ दोस्तों से, मुख्तलिफ जो इन्फ्लुएंशियल लिबरल के जो लीडर्स थे उनके साथ मुलाकातें भी रही हैं उनकी, और साउथ एशियन कम्युनिटी से भी उनका ताल्लुक गहरा है। अब क्या दोबारा जो हमारी बॉनी क्रॉम्बी जो कि जीत भी गई थी लेकिन उसके बाद द लीडरशिप रेस, क्या वो भी इसमें शामिल होंगे या कौन लोग शामिल होंगे? एक इम्पॉर्टेंट नाम है नवदीप बैन साहब का, और ठीक है लोग उन पर कुछ तनकीद भी करते होंगे, लेकिन उनके आने से लिबरल को, प्रोविंशियल लिबरल को कितना फ़ायदा हो सकता है, ये एक अहम सवाल है। लेकिन वो इम्पॉर्टेंट लीडर हैं और वो जीत सकते हैं, वो लिबरल की लीडरशिप रेस जो है अगर उनके जो कनेक्शंस हैं और थोड़ा काम अगर करेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट और अहम उम्मीदवार हो सकते हैं इस रेस के, जिसको जीत भी सकते हैं। और उसके बाद अगर लीडर की लीडरशिप रेस जीत जाते हैं, उसके बाद जाहिर है मेंबर पार्लियामेंट बनने के लिए कोशिश भी होगी उनकी प्रोविंशियल, क्योंकि अभी इलेक्शन तो थोड़ा दूर है, लेकिन एक दिलचस्प इंटरेस्टिंग उनकी जो है वो नॉमिने या कह लीजिए कि उनकी आमद हुई है, उनकी एंट्री हुई है लिबरल की प्रोविंशियल साइड पे, और लोग इसको बड़े गहरी नज़र से देख रहे हैं। 416-593-0003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM में आपका होस्ट दोस्त अर्शद भट्टी हूँ।

0: रानी राजधानी। राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आईकॉट इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कॉर्पोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए 3 खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन, 6887 डिक्सी रोड में सिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 4374252500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रॉम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600। क्वींस मैनर इवेंट सेंटर।
3: Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.

0: It's a saga. No tickets, free parking. Enjoy the shopping player, clothing, jewelry, mehndi, churiyan, food, entertainment, and much more. Call Shaheen Khan or Matanat Khan at 416-825-9275.
1: Dr. Fayaz Ahmed Qureshi and Associates of Mississauga ke baad Scarborough Main 2155 Lawrence Avenue East Lawrence or Bridgemount ka intersection 416-757-9999 Daanton ki koi bhi bimari ho aap aitmaad ke saath Dr. Fayaz Ahmed Qureshi aur unki tajrubakar team ki professional services ka fayda uthaiye tamam insurance plan accept karte hain insurance na rakhne walon ke liye special discount root canal treatment aur retreatment ke specialist hain Mississauga location 1110 Bloor Street East Bloor or Dixie ke intersection 905-232-567
2: Vishal Trivedi wahi jana pehchana naam life insurance portfolio specialist ab Vishal se hi lijiye guaranteed cash value life insurance mortgage insurance critical illness insurance income replacement insurance super visa insurance travel insurance visitors to Canada insurance compare with Vishal and get the best possible discounts on visitors and super visa insurance call Vishal Trivedi at 647-767-9852 that's 647-767-9852 Vishal Trivedi
1: SSR Auto Service 921 Pape Avenue Southeast Corner of Pape and Martimore Har kisim ki gaadiyon ki journal aur electrical repair ke liye tashreef laiye Oil change, tire change, lights repair, brakes, suspension, muffler service, engine services Iske alawa safety inspection, 3D laser alignment ke saath saath new aur used tires bhi available hain Drive-through maintenance aur namaz ki sahulat bhi Mia Ashraf sahab ya Nabil Ashraf sahab se raabta kijiye 416-466-8782 Toronto mein 23 saal se 24/7 khulne wali wahid shop SSR Auto Service 921 Pape Avenue
3: Radio Pakistan Toronto CMR 101.3 FM 24 ghante mein nishat Radio Pakistan dot FM pe sun sakte hain hamara television channel hai Toronto 360 TV Radio Pakistan Toronto ke nishat ab aap Toronto 360 TV pe bhi barah rast 2 ghante 7 se 9 baje live dekh sakte hain Reset ke wale se koi service chahiye team bhatti se raabta kijiye call tala bhatti 647-295-7861 Brantford mein ek detached house 4 bedroom 2 and a half washroom 719,000 इसकी प्राइस है डिटेच हाउस है अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कॉल कर सकते हैं 647-295-7861 लिए चलेंगे आपको न्यूज की तरफ चुपेश करने जनाब जुबैरुद्दीन साहब
4: You're listening to CMR FM 101.3
1: न्यूज के लिए हमें तावन दिया है अंजुम कुरैशी साहबा ने
5: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूं और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है आज ही मुझे कॉल करें आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है 416-570-0157
1: न्यूज के लिए हम तावन देते हैं आइकॉन इवेंट स्पेस 6887 डिक्सी रोड मिसागा डिक्सी डेरी के इंटरसेक्शन तीन खूबसूरत हाल 1200 तक अफराद की गुंजाइश एम्पल पार्किंग अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाइए आइकॉन इवेंट स्पेस के साथ मजीद मालूमात के लिए कॉल कीजिए 437-425-2500 इट्स 437-425-2500 आइकॉन इवेंट स्पेस न्यूज के लिए हमें दावत दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 647-295-7861 647-295-7861
6: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम ये रेडियो पाकिस्तान टोरंटो है अब आप जुबैरुद्दीन से खबरें सुनिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ माहिदा या तो शानदार और बामानी होगा या फिर सिरे से कोई माहिदा नहीं होगा सदर ट्रंप ने ईरान से मुजाकरात पर तनकीद करने वाले खा वो डेमोक्रेट हों या रिपब्लिकन उनको सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्हें अहमक करार दिया और कहा कि वो ईरान के साथ मुमकिन माहिदे के बारे में कुछ नहीं जानते अमरीकी सदर का कहना था कि मुजाकरात मुनज्जम और तामीरी अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने मुजाकरात